मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948, भाद्रपद मास की तिथि दूसरी, तदनुसार 24 अगस्त 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य

0: सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाज़ों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: मिस्टर मोदी स्टेटेड दिस ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद द सीईओज एंड फाउंडर्स ऑफ 20 स्पेस स्टार्टअप्स रिसेंटली। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंटरेक्शन व्हिच वाज रिलीज्ड ऑन नेशनल स्पेस डे यस्टरडे, प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो हाइलाइटेड इंडियाज कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन लॉन्चिंग स्पेस वेंचर्स। During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. The Ministry of Tribal Affairs will organize a three-day national conclave on tribal languages and museums from today till Wednesday in Mysuru, Karnataka. The conclave will bring together a national dialogue on documentation, preservation and revitalization of tribal languages. The event will strengthen tribal museums and tribal freedom fighter museums across the country. The national conclave advances the Prime Minister's roadmap for a Viksit Bharat 2047, under which reviving India's traditional knowledge systems and ensuring no community is left behind remain key pillars of inclusive national development. The conclave will be inaugurated by Union Minister of State for Tribal Affairs, Durga Das Uike. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar reached Moscow on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. The Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR,

नरेंद्र चंचल और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे अनूप जलोटा और साथियों की आवाज़ में। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ये भक्ति रचना।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जीवन की सरलता पर, स्वामी अशोक भारती से।
1: जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, और रोशनी भी उसी की है जो शमा को जलाना जानता है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे यूं तो चारों तरफ है, लेकिन ईश्वर उसी का है जो सर को झुकाना जानता है। जीवन में सफल होना हो तो एक चीज बहुत अति आवश्यक है, वो है आपकी इनोसेंसी, आपकी सरलता। ये सरलता हमारे पास थी बचपन में, इसे हमने अपनी समझदारी में खो दिया है। इसे फिर से रिबिल्ड करो, इसे फिर से खोजो। क्या कभी आपने ख्याल किया, और अब तो ये डेटा प्रूफ हो चुका है, आइंस्टीन भी कहता है कि आदमी अपने जीवन का महत्वपूर्ण सारा ज्ञान 80% 7 साल की उम्र तक सीख लेता है। 7 साल के बाद पूरे जीवन भर आप सिर्फ 20% सीखते हो, ये अब डेटा प्रूफ हो गया है। 7 वर्ष की उम्र तक आप 80% सीख लेते हो। आओ समझे कैसे। आपने जब बोलना सीखा था वो कब सीखा था? 7 साल में सीखा था। जब आप 7 वर्ष की उम्र तक थे तो आपने बोलना सीख लिया था। आपने चलना कब सीखा था? जब आपकी उम्र 7 वर्ष की थी। आपने अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को पहचानना कब सीख लिया था? जब आपकी उम्र 7 वर्ष की थी। जीवन के महत्वपूर्ण बातों को आपने 7 साल में पूरा कर लिया। चलना सीख लिया, बहुत बड़ी बात है। अगर आप चल ना पाते तो जीवन में, बोल ना पाते हो, आप किसी को पहचान ना सकते तो। जीवन की अति महत्वपूर्ण बातों को आपने अपने 7 वर्ष में पूरा किया। कि ये ज्ञान आपने 7 वर्ष की उम्र तक हासिल जो किया, ये आपने ज्ञान में किया या सरलता में किया? सरलता में सीखा, जब आप बहुत सरल थे, आपको इसका एहसास भी नहीं था कि आप सीख रहे हैं। और अब लोग पढ़ लिख गए, पीछे पीएचडी की पूछ लटक गई, तो लोग सड़क पर अकड़ के चलते हैं क्योंकि पीछे पूछ लटकी है पीएचडी की। लेकिन सरलता खो गई, और जैसे ही सरलता खोती है जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। याद करो, लौटो अपने बचपन में कि हम किन किन चीजों से खुश होते थे। हम जाते थे रेल की पटरी के पास, 5 पैसे का सिक्का पटरी पर रखते थे और घंटों इंतजार करते थे रेल के आने का। और जैसे ही रेल गुजरती थी 5 पैसे के सिक्के पर, वो गरम गरम सिक्का हम हाथ में लेते थे और झूम उठते थे खुशी से। देखो मेरा सिक्का पिचक गया, झूम जाते थे हम। गोली खेलने के कंचे हम देख देख के कितना खुश होते थे। कोई पतंग कट जाए उसका धागा लूटने में कितनी खुशी मिलती थी, जैसे संसार की दौलत मिल गई हो। और कभी गलती से, भूल से, आपका शिक्षक आपकी कॉपी में अगर गुड लिख दे, आपने जो प्रश्नोत्तर लिखा शिक्षक ने पढ़ा, और अगर शिक्षक आपकी कॉपी में राइट करके गुड लिख दे, तो पूरे मोहल्ले को दिखाते फिरते थे कि मेरे को गुड मिला है। उस समय हमने अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया है, छोटी छोटी खुशियों को हम उसमें इन्वॉल्व हुए। हमने अपनी जरा जरा छोटी छोटी खुशियों को कितना सेलिब्रेट किया। मां से पूछते थे, मां चांद कहां है, चांद लाओ, मैं चांद को पाना चाहता हूं। मां ले जाती थी आपको छत पर, थाली में पानी डालती थी, आपका हाथ पकड़ती थी और आप कहती, बेटा ये रहा चांद। हम छपाक से चांद पकड़ते थे, कितने खुश होते थे कि हमने चांद को पकड़ लिया। कितनी खुशियां थी, कितनी प्रसन्नता थी हमारे भीतर। वो सब खो गई, सब नष्ट हो गई। और जब ये छोटी छोटी चीजें जीवन की जो आपको उपहार में मिली थी निशुल्क, इसको आपने अपनी समझदारी से खो दिया है, इसलिए लाओ से

0: का परम सूत्र है कि बुद्धिमत्ता को छोड़ो और ज्ञान को हटाओ और तुम 100 गुना लाभान्वित होंगे। ये सूत्र का कारण नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है प्लस इनोसेंसी है तो आप सफल है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन जीवन में सरलता पर स्वामी अशोक भारती से। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीहारा वास्ते। जानकारी का विषय रहेगा कृषि में नीम का महत्व। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 344। सुप्रभात कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:30। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे पश्चाताप से पवित्रता प्राप्त करें, परनिंदा से बचें और परोपकार का भाव। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। कलाकार होंगे भगत धर्मपाल भारती। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कुछ युगल गीत फिल्म संगीत में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार आप सुनेंगे सुबह 10:00। आपकी फरमाइश पर आधारित गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 11:00 अनुरोध गीत। दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दिन के 12:30 पर आप सुनेंगे चंद गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। खेत खलिहान कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 12:50। जानकारी का विषय रहेगा मृदा में जैविक कार्बन का महत्व। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे महिला जगत। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे जीवन की सांझ में जोश और जज्बा बनाए रखें, वर्षा जल संरक्षण का महत्व, कमर दर्द के लिए घरेलू उपाय और हेल्दी स्नैक्स रेसिपीज। दिन के 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे युवा जीवन में संयम, मौलिक कर्तव्य, जीवन में संघर्ष का महत्व, उस्ताद योजना और आज का इतिहास। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विशेष भेंट वार्ता, स्क्रीन बनाम स्कूल बदलती तकनीक के साथ पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता, वार्ताकार प्रवीण भाटिया से नवीन सिसोदिया की बातचीत। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे सिराई की चौपाल। कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:00। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नरमे कपास की फसल में सिंचाई व्यवस्था, ग्वार की फसल में सामयिक कार्य, फसल में पोषक तत्वों का महत्व, मौसम और बाजार भाव की जानकारी। रात्रि 8:00

0: बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत एक ही फिल्म से। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रिमर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निज क्षेत्रम् अंतरिक्षानुसंधान क्षेत्रे प्रवर्तितुं प्रेरितवान्, येन नवोन्मेषस्य वैश्विक वातावरणस्य निर्माणं भवेत्, तथा च विश्वस्य सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुम् इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्।
2: हमें ऐसा एक और खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: श्री मोदी एतत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य 20 नवोद्यमानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः संस्थापकैः च सह संवादावधौ उक्तवान्। राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे ह्यः प्रकाशितस्य संवादस्य प्रतिलेखानुसारं प्रधानमन्त्री अन्तरिक्षक्षेत्रे उद्यमान् प्रारम्भं कर्तुं भारतस्य व्ययसम्बद्धप्रतिस्पर्धात्मकक्षमताम् अपि प्रकाशितवान्। संवादावधौ श्रीमोदी अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यमान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुं समर्थं सुदृढं अन्तरिक्षक्षेत्रीयं परितन्त्रं निर्मातुं च प्रेरितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः रूसदेशस्य द्विदिवसीयायै आधिकारिकयात्रायै मॉस्कोनगरं प्राप्तवान्। यात्रावधौ विदेशमन्त्री व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोग चेत्यादिषु विषयेषु भारत रूस अन्तः प्रशासकीय आयोगस्य 27वें अधिवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। असौ रूसस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह अपि मेलनं करिष्यति, तथा क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 27 पर्यन्तं जापानस्य 4-दिवसीय यात्रायां भविष्यति। असौ टोक्यो, नागोया, ओसाका चेत्येतेषां स्थलानां यात्रां करिष्यति, अथ च जापानं प्रति भारतस्य अद्यावधि बृहत्तमस्य व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। अस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले 200+ व्यापार प्रतिनिधयः सम्मिलिताः सन्ति। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयेन उक्तं यत् एषा यात्रा उभयोः देशयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिं प्रति विद्यमानं महत्वाकांक्षायाः व्यापकतां दर्शयति। इयं यात्रा तस्मिन् समये भवति यदा भारतं जापानं च व्यापार निवेश सम्बन्धान् महत्वपूर्णतया सुदृढीकर्तुं प्रयतमानौ स्तः। ब्रिक्स क्रीडामन्त्रिणाम् उपवेशनं ह्यः आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनं नगरे क्रीडासम्बद्ध संयुक्त घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्ना। घोषणापत्रे सदस्यदेशैः संवादेन, पारस्परिक सम्मानेन अथ सर्वसमावेशभावेन क्रीडाक्षेत्रे सहयोगं सुदृढं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनरुक्ता। एतत् उपवेशनं अस्मिन् वर्षे भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः अन्तर्गतम् आयोजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य एलुरु जनपदस्य मुसुनुरु ग्रामं गमिष्यति। स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः मुसुनुरु ग्रामे भारतस्य प्रथमस्य अनुवांशिकरूपेण असंशोधितस्य उच्चविस्तारक्षमतायुक्तस्य पॉपकॉर्न मेज इत्यस्य संकर बीजस्य शुभारंभं करिष्यति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनूर गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनूर में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। वे आज रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को फिर दोहराया है। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। भारत आज कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 300 रन पर 5 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल शाम स्टंप्स तक ध्रुव जुरेल और सारांश जैन नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाया। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के

सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Against host Sri Lanka in the second and final test in Colombo today. Earlier, Dhruv Jurel and Saransh Jain remained unbeaten when stumps were drawn yesterday evening. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेतिहारा वास्ते। जानकारी का विषय है कृषि में नीम का महत्व।
2: किसान भाइयों, राम राम। आपने जीवन के माँ किसान भाइयों, वृक्ष को बड़ो महत्व है। और जितना भी आपा वृक्ष लगावा, चाहे वह छायादार हो चाहे वह फलदार हो, तो मंगो अपने जीवन में बड़ो महत्व है। और इनके साथ साथ जगह भी आपा वृक्ष लगावा, तो बंगी अपने सार संभाल सावचेत करनी बहुत ही जरूरी है। इन तरह ही एक वृक्ष नीम है, तो बिंगो भी अपने जीवन में भी बहुत महत्व है। और भी नीम में कई औषधीय गुण होने के कारण वो अपनी जैविक खेती में भी बिंगो बहुत अच्छो उपयोग है। और वर्तमान में अपने कैसे भी ज्यादातर महत्वपूर्ण वृक्ष है जो को मान्यो गयो है। इनके साथ साथ नीम की देख लो के निमोली है, पत्ता है, छाल है, ये सारी की सारी बिंगी अपने औषधीय गुणों के कारण हरेक तरीके से मांग काम आवे। और यह केस का भी अब जो को ये टाइम अपने वो वृक्ष है जो को बड़ो ही महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है। नीम का जका वृक्ष है वह ज्यादा में ज्यादा जका लगाना चाहिए। और औषधीय गुण होने के कारण इनको अपने जीवन में बड़ो ही महत्व है। इनके साथ साथ विशेष तौर जो कि आप खेती पाती करा बी में भी इनको बड़ो महत्व है। तो इन खातर आपने ज्यादा में ज्यादा नीम का वृक्ष जका लगाना चाहिए और बाकी सार संभाल जकी करनी चाहिए। तो सारों पहल पोता है कि जितनी भी आप खेती पाती करा, चाहे सावणी की हो चाहे हाड़ी की हो, वह मैं टेम टेम सारू आप देखभाल करता रहा। जब भी मैं कोई हारी बीमारी कीड़ो कांटो लगे, तो भी मैं विशेष तौर जका नीम का कीटनाशक है बांगो आपने उपयोग जको करना चाहिए। जे आप टेम सारू नीम का कीटनाशक से उपयोग करा, तो बांशु आप रोकथाम कर सका। तो एक तो है सस्ता हुआ है, आंशु अपने वातावरण जो को दूषित कोनी हुआ। तो जहाँ नीम की सर्वाधिक उपयोगी जो की नीम गिरी निम्बोली का बाव है, भी मैं तेल की मात्रा 40-50% तय हुआ। अजा डिरेक्टिन 0.3-0.35% तय हुआ। निम्बिडिन 1.2-1.6% तय हुआ। और निम्बिन 0.1% तय हुआ। विपिनिन 0.15% तय हुआ। आम सारों ज्यादा उपयोगी अजा डिरेक्टिन नामक रसायन है। और नीम की निम्बोली की गिरी 40-45% ताई और आवरण 55-60% ताई जो को हुआ। किसान भाई, नीम के महत्व की बात करा, वो एक बहु उपयोगी वृक्ष है। इंगा प्रत्येक भाग पत्ती फूल फल जड़ तना को उपयोग जो को करो जे। नीम मनुष्य की अनेक बीमारियां जिया कैंसर है, खाज है, खुजली है, चरम रोग है, रक्त अल्पता, हृदय रोग, पीलिया अन्य रोकने में भी मददकारी है। इनके अलावा शरीर में इनके उपयोग से कोलेस्ट्रॉल में कमी आवे। नीम में पाए जाने वाले रसायनों में से वर्तमान में दंत मंजन है, सौंदर्य प्रसाधन, शैंपू, औषधियां, कीटनाशक रसायन, जैविक खाद, व्यावसायिक उत्पाद जका तैयार कर जाए। जैविक खेती में नीम को विशेष महत्व है। किसान भाइयों, इस प्राप्त रसायन शू विभिन्न प्रकार का कीटनाशक रसायन तैयार कर जाए, जके शू के फसलों पर छिड़काव कर पर्यावरण और मनुष्य को नुकसान से भी बचाया जाए। किसान भाई, नीम का खेती के में महत्व की बात करा, तो नीम की निमोली ने पीस कर 100 ग्राम पाउडर पौधे के चारों तरफ 3 इंच गहराई में डालने से भूमिगत हानिकारक कीटों को नियंत्रण हो जाए। किसान भाई, 5 लीटर देसी गाय के छाछ में 5 किलो नीम का पत्ता डाल के 10 दिन तक आपने सड़ाना चाहिए। बिंग बाद में पत्तियां ने निचोड़ के अच्छी तरह बिंग रस से जो निकाल लेना चाहिए। बिन मिश्रण ने छान के 150 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ आपने छिड़काव करना चाहिए, जैसे चूंकि कीटांगो नियंत्रण हो जाए। किसान भाई, 5 किलो नीम का पत्ता 3 लीटर पानी में घाल के अपने उबालना चाहिए। जब अधो रह जावे तो बिना छान के 150 लीटर पानी में घोल तैयार करके बिमे 2 लीटर गोमूत्र मिला के ई मिश्रण ने 1 एकड़ में फसल पर कीटांग नियंत्रण खतरा पा छिड़काव जो को कर सका। किसान भाइयों, नीम बीज की निम्बोली पाउडर 1.25 किलोग्राम ने जे आपा 100 किलोग्राम गेहूं बीज में मिला देवा, तो वो लगभग यहाँ केस का भी अपने काफी टाइम तक जो को सुरक्षित रह सके। भी में कोई हरी बीमारी कीड़ो कांटो जो को लागे को नहीं। नीम बीज का 9 ग्राम पाउडर ने 9 लीटर पानी में घोल बना के प्रतिशत सांद्रता को घोल बना के छिड़काव कर

ये लोक भजन आप सुन रहे थे सोहन प्रकाश राव की आवाज़ में। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 344।

रावण ने अपनी नाभि में अमृत छिपा रखा था। उसका वध करने के लिए श्री राम ने काल सर्पों के समान 31 वाण छोड़े। एक वाण ने उसकी नाभि का अमृत सोख लिया तथा बाकी 30 ने उसके सिर और भुजाएं काट डालीं। बिना सिर और भुजाओं वाले धड़ को प्रचंड वेग से दौड़ते देख श्री राम ने एक और वाण से उस रुंड के 2 टुकड़े कर दिए जो जाकर मंदोदरी के सामने आ गिरे।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान। लंका कांड में आप सुन रहे थे भाग संख्या 344। आवाजें थी रविंद्र साठे, शोभना राव और कविता कृष्णमूर्ति की। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक है। कभी हम किसी को कुछ बुरा भला कह देते हैं, किसी को दुख पहुंचा देते हैं, कभी क्रोध में कोई गलत फैसला ले लेते हैं जिसका बाद में हमें अफसोस होता है। दोस्तों, गलती होना इंसान की कमजोरी हो सकता है, लेकिन गलती को स्वीकार न करना उससे भी बड़ी कमजोरी है। पश्चाताप का अर्थ केवल पछतावा करना नहीं है। सच्चा पश्चाताप वह है जब इंसान अपनी गलती को पहचानता है, उसे स्वीकार करता है और उसे दोबारा न दोहराने का संकल्प लेता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, गलती हमें गिराती जरूर है, लेकिन उसका एहसास हमें फिर से उठना सिखाता है। इसलिए अपने बीते हुए कल को लेकर हमेशा खुद को दोषी ठहराते हुए रहना उचित नहीं। अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए, जिसे दुख पहुंचाया है उससे माफी मांगिए और फिर अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख हमारे आने वाले समय को ज़रूर बदल सकती है।

0: एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को। संगीत था शंकर जयकिशन का, गीत के बोल थे हसरत जयपुरी के। कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: दोस्तों, कभी कभी हमारे अंदर एक अहंकार होता है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं। लेकिन याद रखिए, माफ़ी मांगना छोटा होना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार से बड़ा होना है। और किसी को दिल से माफ़ कर देना बहुत बड़ी खूबसूरती है। जीवन में हर व्यक्ति गलती करता है। कभी हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो कभी कोई और हमें दुख पहुंचाता है। ऐसे में अगर हम अपनी गलती को स्वीकार कर लें और दूसरों की गलतियों पर उन्हें माफ़ कर दें तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। इसीलिए आज ये संकल्प लें। कि हमें दूसरों को माफ़ करना है। और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या कोई ऐसी बात है जिसका मुझे पश्चाताप

प्रताप है? अगर हां तो उसे अपने मन पर बोझ बनाकर मत रखिए, माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता।

ये गीत आप सुन रहे थे हरिहरन और साथियों की आवाज़ में। संगीत था विशाल का, गीत के बोल थे गुलजार के, फिल्म का नाम था माचिस। और अब रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, अभी आते हैं।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो बहुत आसानी से हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है, पर निंदा। किसी तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके बारे में बुरा कहना, उसकी कमियां गिनाना या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली बातें करना पर निंदा कहलाती है। अक्सर हमें लगता है कि हम तो केवल बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति की गैर मौजूदगी में हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं, क्या हम उसके सामने भी वही बातें कह पाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो शायद हमें वह बात कहनी ही नहीं चाहिए। पर निंदा से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन हमारे अपने मन की शांति जरूर प्रभावित होती है, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की कमियां खोजता रहता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर की अच्छाइयों को देखना भूल जाता है।

बातों बातों में इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले, अमित कुमार और साथियों को। संगीत था राजेश रोशन का, गीत के बोल थे योगेश की। दोस्तों, परोपकार का अर्थ केवल किसी को बड़ी आर्थिक सहायता देना नहीं है। परोपकार बहुत छोटी छोटी चीज़ों में छिपा हो सकता है। किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन लेना, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा देना, किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता करना, किसी भूखे को भोजन देना, या किसी दुखी इंसान को दो शब्द हौसले के कह देना, ये सब परोपकार के ही रूप हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास दूसरों की मदद करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि मदद करने के लिए हमेशा धन नहीं, कभी कभी केवल एक संवेदनशील दिल होना चाहिए। आपके पास मुस्कान है, ये बांट सकते हैं। आपके पास समय है, दे सकते हैं। आपके पास ज्ञान है, साझा कर सकते हैं। आपके पास अनुभव है, किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं। यही परोपकार है।

ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में फिल्म मनचली से। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के। दोस्तों, सुबह की इस बेला में जाते जाते आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, अपने बीते कल की गलतियों से सीखिए, अपने आज को परनिंदा से बचाइए और अपने आने वाले कल को परोपकार से सुंदर बनाइए। किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग लीजिए, किसी की बुराई सुन रहे हैं तो बातचीत का विषय बदल दीजिए, और कोई ज़रूरतमंद आपके सामने आए तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि जीवन बहुत लंबा नहीं है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि जब हम किसी की ज़िंदगी से गुज़रें तो उसके मन में हमारे लिए शिकायत नहीं, एक अच्छी याद रह जाए।

आशा करते हैं आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो और प्रेम करुणा तथा सद्भाव से भरा हो। इसी गीत के साथ सुप्रभात कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम से अपने दोस्त गुलशन को दें इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार प्रभात। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक और खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोफ से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026

0: कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
1: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: हर हर महादेव।
3: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोकसत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जाती और मैकेनिकी मुजाकरात होते रहे हैं ताकि मुस्तकिल तौर पर मुजाकरात को यकीनी बनाया जा सके और ताउन की सरगर्मियों को आगे बढ़ाया जा सके। दिल्ली से यशस्वी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: 18वीं ब्रिक्स तालीमी मुजाकरात कल लखनऊ में शुरू हो गए। भारत की ब्रिक्स सदारत के हिस्से के तौर पर ये तालीमी मुजाकरात मंगल तक जारी रहेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
0: तरक्की पजीर मुल्कों के लिए तहकीक और इत्तला के निज़ाम RIS और लखनऊ यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन फोरम के कन्वीनर्स हैं। लचक, इख्तिरा और पायदारी को कायम करने के मौजू के तहत ये फोरम ब्रिक्स मुल्कों के माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन, माहिरीन और पॉलिसी साजों को यकजा कर सकेगा ताकि अहम आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जा सके और ताउन को मुस्तहकम करने के लिए अमली पॉलिसी से मुतालिक तौर तरीकों पर भी बहस व मुबाहसा किया जा सकेगा। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन आज आंध्र प्रदेश के इलूरू ज़िले में वाकई गांव मुसनूरू का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया मुसनूरू में भारत के पहले गैर जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा आला तोसी मकई के हाइब्रिड बीज का इफ्तिताह करेंगे। वो किसानों की हौसला अफजाई करेंगे और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद और दीगर शुरका से खिताब भी करेंगे। बिहार सरकार ने रियासत के इम्तिहान के निज़ाम में जामे इस्लाहात के लिए 5 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के कोई मौजूदा या रिटायर्ड जज करेंगे। ये कमेटी 3 माह के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात रियासती हुकूमत को पेश करेगी। कमेटी पेपर लीक, पेपर की नकल, इम्तिहानी मराकज पर बदउनवानी, जवाबी कापियों में छेड़छाड़ और नतायज में गैर मजाज मुदाखलत को रोकने के लिए इकदामात की सिफारिश करेगी। ये कमेटी इम्तिहान के निज़ाम अवकात, सवाल नामे की हिफाजत, जवाबी कापियों की जांच और नतायज के ऐलान के अमल को मजीद शफाफ और मुकर्रा वक्त के अंदर मुकम्मल करने पर भी तवज्जो मरकूज करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, केरलम, माहे, वस्ती महाराष्ट्र और जनूबी कर्नाटक में कहीं कहीं अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, मगरबी मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरक के इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। शुमाली खलीज बंगाल और मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के मुलहक़ा साहली इलाकों के ऊपर बनने वाला हवा के दबाव का हल्का शुमाल मगरब की जानी बढ़ रहा है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इसके गंगा के मैदानी इलाकों से गुजरते हुए शिमाली उड़ीसा की जानिब बढ़ने का इम्कान है। इसके नतीजे में आज झाड़ग्राम और पुरुलिया ज़िलों में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मशरकी मिदनापुर और जनूबी 24 परगना ज़िलों में गरज चमक और बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलने की पेशगोई की गई है। माहीगीरों को आज समंदर में ना जाने का मशवरा दिया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज़ से गुजरने वाले मजाज मुल्कों के जहाज़ों को अब तेहरान को सर्विस फीस अदा करना होगी। ईरान के कौमी सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रिजाई ने बताया कि ये फीस बहरी माहौलियाती और लॉजिस्टिक शिकों का अहाता करेगी। सरकारी नशरे के मुताबिक तर्जुमान ने मजीद बताया कि अदायगी का तरीक़ेकार नर्म माली शर्तों के साथ डिज़ाइन किया गया है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई ने बताया कि आबनाए हुरमुज़ बंद है और उस वक्त तक दोबारा नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान के अपने वादों को पूरा नहीं करता। और ईरान और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाता। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तासुर देते हुए कि आबनाए हुरमुज़ अमरीका का नया इलाका है, इस अहम आबी गुजरगाह पर अमरीकी कंट्रोल का दावा दोहराया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से इस माह की 27वीं तारीख तक जापान के 4 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वो टोक्यो, नागोया और ओकासा जाएंगे। जापान जाने वाला भारत का ये सबसे बड़ा कारोबारी वफद होगा। इस वफद में मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, साफ तवानाई, माली खिदमात, हिफ्जान सेहत और स्टार्टअप्स, स्टील और ऑटोमेटिव शोबों के 200 से ज़्यादा कारोबारी नुमाइंदे शामिल होंगे। आज पवित्र सावन महीने के आखिरी सोमवार के मौके पर झारखंड में बड़े पैमाने पर मजहबी तकरीबात जारी हैं। अकीदतमंद बड़े शिव मंदिरों में बड़ी तादाद में जमा

0: हो रहे हैं, जहां वो बोलबम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में हजारों कांवड़िए सुल्तानगंज से पवित्र गंगा नदी का पानी लेकर जमा हुए हैं। अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए इंतजामिया ने खसूस इंतजाम किए हैं, जिनमें ड्रोन के जरिए निगरानी, AI कैमरों और एक डिजिटल हेल्पलाइन का इंतजाम शामिल है। दुमका के बाबा बसुकीनाथ मंदिर में भी सावन के मेले के आखिरी सोमवार के दिन वसी सिक्योरिटी और भीड़ पर काबू पाने के इंतजाम किए गए हैं। रांची में अकीदतमंद दरमियानी शब से तारीखी पहाड़ी मंदिर का रुख कर रहे हैं। ग्रीटी के झारखंड धाम और रियासत भर के दिगर शिव मंदिरों में भी इसी तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। जल अभिषेक को पुरमन और महफूज तरीके से मुकम्मल कराने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। रांची से महफिज रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: तिब्बी तहकीक के भारतीय कौंसिल ICMR ने वजाहत की है कि H1N1, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, कि किसी नई किस्म की निशानदेही नहीं हुई है, लिहाजा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौंसिल ने यकीन दिलाया है कि मौजूदा वैक्सीन अभी मौसर है। ICMR के सीनियर साइंसदानों के मुताबिक ये वायरस साल 2025 से गर्दिश में है। ICMR के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुंजा बशमूल H1N1 ज़्यादातर खुद को महदूद रखते हैं। कबायली उमूर की वजारत कर्नाटक के मैसूरू में आज से बुध के रोज़ तक कबायली ज़ुबानों और म्यूज़ियम से मुतालिक एक 3 रोज़ा कौमी कॉन्क्लेव का एहतमाम करेगी। ये कॉन्क्लेव कबायली ज़ुबान की हिफाजत और महफूज रखने के साथ साथ उनके दस्तावेजी सबूत बरकरार रखने से मुतालिक कौमी मुज़ाकरात को यकजा करेगी। शतरंज में भारत के 19 साल ग्रैंड मास्टर परनेश एम हंगरी के नाग कांजिसा शहर में पुरवकार कांजिसा ओपन 2026 में चैंपियन के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के नतीजे में ग्रुप ए का खिताब हासिल किया है। परनेश ने सफ़ेद मोहरों के साथ खेलते हुए टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में जर्मनी के वेदिम पेत्रोविस्की को शिकस्त दी। हंगरी में भारत के सफारतखाने ने परनेश की शानदार कामयाबी पर उनकी सताइश की है और उन्हें मुबारकबाद दी है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने खलाई स्टार्टअप्स के बानियों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात को सफाई अव्वल पर शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि भारत का खला से मुतालिक शोबा नुमाया तौर पर वसी हुआ है और ये सेक्टर जामे इको निज़ाम तश्कील देने का अहल है। रोजनामा प्रताप ने भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर के इस बयान को नुमाया किया कि भारत अमेरिका आज़ाद तजारती माहदा FTA हतमी मरहले में, भारत हमारे लिए इंतहाई अहम मुल्क है। इसी अखबार की एक और खबर है, तजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल 200 अरकान पर मुश्तमिल तजारती वफद के साथ जापान जाएंगे। ये दो दौरा तिजारत और सनत, मैनुफैक्चरिंग और सेहत खिदमात के लिहाज से इंतहाई अहम होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जंगी जहाज़ों, बहरी कश्तियों और उससे मुतालिका शोबों में खुद इनसारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई अहम करार दिया है।
0: और अब आखिर में ख़ास ख़ास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के खलाई शोबे से एक इको निज़ाम तश्कील देने की अपील की है, जिससे दुनिया भर से बासलाहियत और होनहार अफराद भारत की तरफ रागिब हो सकेंगे। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर AJ शंकर आज मॉस्को में तजारत, मीशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में ताउन से मुतलक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरक सदारत करेंगे। ईरान ने आबनाए हुरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर सर्विस फीस आयद करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर परनेश एम ने हंगरी में कंजिसा ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार तरंग। समाचार तरंग हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

मैं हूं आपके साथ सालेहा। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, बाजार से जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे

0: लिए उसकी कीमत के साथ साथ उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आखिर किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता के मानक क्या होते हैं? हम कैसे सुनिश्चित करें कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो निर्धारित मानकों के अनुरूप है? और ख़ास तौर पर जब हम सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं तो हॉलमार्क को लेकर उपभोक्ताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। और आपको बता दें, हमारे साथ हैं भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर ब्रांच ऑफिस के निदेशक श्री आदित्य दास। सर नमस्कार, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार सालिया जी, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको यहाँ पे इनवाइट किया। जैसे कि आपने कहा, भारतीय मानक ब्यूरो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के ऊपर काफ़ी काम करता है, जो कि एक कॉमन कंज्यूमर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और एक देश में एक क्वालिटी इकोसिस्टम तैयार करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है।
0: सर, हम चाहेंगे कि आप बहुत ही आसान से शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है और ये क्यों ज़रूरी है।
1: सबसे पहले तो मैं थोड़ी इतिहास बताना चाहूँगा संस्था के बारे में। तो हमारी संस्था 1947 में एस्टैब्लिश हुई थी। हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया है इतना ही पुराना है जितना हमारा इंस्टीट्यूशन है। शुरू में इसका नाम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन था। ISI मार्क काफ़ी पॉपुलर एक इंडिकेटर रहा है हमारा। बाद में 1986 में इसका नाम बदल कर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या भारतीय मानक ब्यूरो रख दिया। और 2016 में हमारे ब्यूरो को एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी, राष्ट्रीय मानक इकाई का दर्जा दिया। हमारा जो ओवरऑल गोल है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये है कि देश में एक ऐसा क्वालिटी इकोसिस्टम क्रिएट करें जो कि मानकों पे, स्टैंडर्ड्स पे आधारित हो और देश की जो विकास है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करें। क्योंकि किसी भी आप विकसित देश को देख लीजिए, स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। टेक्नोलॉजी मान लीजिए या कंज्यूमर गुड्स मान लीजिए, किसी भी इस एस्पेक्ट में अच्छा क्वालिटी लाने के लिए स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी होते हैं।
0: सर, अक्सर ऐसा होता है हम उत्पादों पर ISI मार्क का देखते हैं। अब आप ये बताइए कि ये मार्क वास्तव में क्या दर्शाता है और खरीदारी करते समय उपभोक्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स पे ISI मार्क होना ज़रूरी होता है, पर काफ़ी पे ज़रूरी नहीं भी होता है। पर अच्छा प्रैक्टिस है कंज्यूमर्स के लिए कि पहले तो वो जब कोई चीज़ खरीद रहे हैं प्रॉपरली उसका जो लेबलिंग मार्किंग रिक्वायरमेंट है, स्पेशली अगर कोई आप खाने की चीज़ खरीद रहे हैं, एक्सपायरी डेट देखें, बैच नंबर देखें, ये देखें कि किसने बनाया है, किसने बेचा है। अगर कोई स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में जानें, और ISI मार्क अगर उसमें लगा है तो आप उसको भी जांचें। हमारे लिए इसके लिए एक हमने एक बहुत अच्छा टूल बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, BISCARE ऐप उसका नाम है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जो ISI मार्क देख रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो आप उस ऐप का इस्तेमाल करके ये जांच सकते हैं कि ये ISI मार्क ऑथेंटिक है कि नहीं, सही है कि नहीं। हमारा सर्टिफिकेशन स्कीम्स BIS रन करता है। हमारा एक काम तो स्टैंडर्ड बनाना है, मानक बनाना है, साथ साथ में उन मानकों के अनुसार ये चेक भी करना है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में है या जो सर्विस मार्केट में है वो उनको मीट करता है कि नहीं। तो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन हमारे काफ़ी स्कीम्स हैं। एक तो ऑफकोर्स ISI मार्क के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं, चाहे वो टॉयज हो या आपकी पानी की बॉटल हो या
0: घर में कोई बिजली के उपकरण हो,
1: चाहे सिलेंडर हो या स्टोव हो, हाँ, सब में ही आप देखेंगे ISI
0: स्टील, सीमेंट, भवन निर्माण सामग्री से जुड़ी हुई चीजें भी। जी,
1: 1400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कि वो कंज्यूमर गुड्स भी हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स भी हैं, जिन पे ISI मार्क मिलता है।
0: क्या ये हॉलमार्किंग और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के साथ साथ BIS क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रमोशंस के लिए भी काम करता है?
1: बिल्कुल ज़रूर, हम प्रमोशन के लिए काफ़ी काम करते हैं। जैसा कि आज बैठे हैं हम प्रमोट करने के लिए कि BIS किस तरीके की गतिविधियाँ करता है, साथ साथ में हम इंडस्ट्री, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी इंगेज करते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के साथ इंगेज करते हैं। हमारा एक मेजर स्टेक होल्डर ग्रुप है एकेडेमिया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हैं, इनके साथ हमने 100 से भी ज़्यादा MOUs साइन किए हैं और इनकी जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं इनको भी यूज़ करके हम स्टैंडर्ड्स को और बेहतर बनाते हैं। तो जिस भी स्टेक होल्डर ग्रुप को आप मान लें, सबके साथ ही हम जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट जो हमारे स्टैंडर्ड्स बनते हैं उनकी भी प्रणाली के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें, तो कोई भी स्टैंडर्ड जब बनता है तो एक कमिटी उसे बनाती है।

0: मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लोग रहते हैं, उसमें गवर्नमेंट से लोग रहते हैं, रेगुलेटर्स रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरी से लोग रहते हैं, और ये सब मिलके स्टैंडर्ड बनाते हैं. तो हम जब कहते हैं स्टैंडर्ड्स को एक डिस्टिल्ड विजडम भी कहते हैं, कि सबकी जो नॉलेज है, सबका जो
1: जी
0: एक्सपीरियंस है, उसको मिल मिला के जो एक दस्तावेज़ तैयार होता है, जिसमें लिखा होता है कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी सेफ्टी परफॉर्मेंस क्या है, क्या टेस्ट होना चाहिए, कैसे टेस्ट होना चाहिए, क्या आना चाहिए उसमें, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसी को हम मानक कहते हैं,
1: तो
0: उससे
1: सर,
0: उसकी क्वालिटी
1: आम
0: डिटरमाइन होती है.
1: उपभोक्ता को किन प्रमुख उत्पादों पर BIS मानक चिन्ह अवश्य देखना चाहिए?
0: सरकार की तरफ से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू करे गए हैं.
1: जी
0: तकरीबन 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहा है, चाहे वो इंडिया में बन रहा हो या बाहर से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा हो, उस पे ISI मार्क होना ज़रूरी है. तो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं सारे तो नहीं ले पाऊंगा नाम, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैंने
1: रोजमर्रा
0: नाम
1: की
0: लिया.
1: चीजें। हाँ
0: जैसे मैंने नाम लिया LPG सिलेंडर का, आपने नाम लिया सीमेंट का, हेलमेट्स हैं और टॉयज़ हैं, और काफ़ी अभी रिसेंटली हमने फर्नीचर प्रोडक्ट्स पे, जैसे टेबल, चेयर, डेस्क, इस पे भी एक
1: ओके
0: लागू किया है सरकार
1: जी
0: ने, तो इस पे भी ISI मार्क देखने को मिलेगा आगे.
1: सर, अब हम बात करते हैं खास तौर पर हॉलमार्किंग की, क्योंकि सोने चांदी के आभूषण हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महिलाओं का खास तौर पर जुड़ाव रहता है। तो ये हॉलमार्किंग क्या है और क्यों जरूरी है?
0: जो हॉलमार्किंग स्कीम है, हमसे हमारी सबसे पुरानी स्कीमों में से एक है, ये भी एक सर्टिफिकेशन स्कीम जैसी ही है. पर हॉलमार्किंग स्कीम के तहत ये होता है कि कोई भी ज्वेलर अगर एक आभूषण बेच रहा है, तो उस पर एक प्योरिटी चेक होता है. कुछ सेंटर्स हैं, उनको हम असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स बोलते हैं.
1: जी
0: उनके पास प्रणाली होती है कि वो उसको टेस्ट कर पाएँ, चेक कर पाएँ कि कितना प्योर है, और उसके बाद वो उस पर मार्क करते हैं एक ID, जिसका नाम HUID है. अगर आपने नाम सुना हो, HUID मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये एक
1: जी
0: 6-डिजिट नंबर है, जो कि हर एक यूनिक नंबर है, हर एक
1: हाँ,
0: ज्वेलरी
1: आमतौर पर
0: आर्टिकल
1: सोने के
0: के अंदर है.
1: आभूषणों पर
0: सोने
1: जब
0: और
1: बात चलती है तो
0: हाँ
1: इसकी चर्चा होती है।
0: बिल्कुल.
1: जी
0: तो भारत सरकार ने इसमें भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अनिवार्य कर दिया है कि HUID हॉलमार्क ज्वेलरी ही बिकेगी. इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप ये खरीदते हैं, और इसको भी आप BIS केयर ऐप से चेक कर सकते हैं कि HUID सही है कि नहीं है, और अगर वो सही होती है तो आपको एक अश्योरेंस है BIS की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि वो प्योर होगा. अगर आपको मिलता है कि वो ठीक नहीं है, अगर आप बेचने जाते हैं तब पता लगता है कि जो प्योरिटी कही गई है उससे कम आ रही है, तो आपको राइट है दिखाने के कि ये मेरे को कंप्लेंट है, इसको रिड्रेस करें. कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदा जाए, बहुत ज़रूरी है कि आप उसका प्रॉपर बिल लें.
1: सर, ये बताइए कि कभी अगर मिलावट की या कम शुद्धता की बात सामने आती है, या उपभोक्ता को बाद में पता चलता है कि हॉलमार्क वाले आभूषण पर जो अंकित है शुद्धता, उससे कम है, तो उपभोक्ता के पास क्या अधिकार है और वो कहाँ शिकायत कर सकता है?
0: कोई अगर प्रॉब्लम आती है, सिर्फ हॉलमार्किंग में नहीं, कोई भी प्रोडक्ट जो आपने ISI मार्क
1: जी
0: या हॉलमार्क या इवन CRS मार्क होता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे, और आपको लगता है कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है, उसमें कुछ कमी रह गई है, तो ऐप के माध्यम से ही आप एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं. BIS उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करता है, और अगर पाया जाता है कि ये जेन्युइन कंप्लेंट है, तो भरपाई की, रिप्लेसमेंट की, दोनों की हमारे पास प्रोविजंस हैं. साथ साथ में जिसने भी गलत पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट आपको सप्लाई किया होता है, उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है.
1: ये तो आपने बताया कि ऐप के जरिए घर बैठे ही उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा कभी अगर BIS मार्क जो है, कई बार उसका नकली इस्तेमाल अगर हो रहा है, तो ऐसे में उपभोक्ता क्या कर सकता है?
0: कोई मार्क, जैसे अगर हम ISI मार्क की बात करें, ISI मार्क के एलिमेंट्स की बात करें, तो ISI मार्क देखा तो सभी ने है, उस पे ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है, और नीचे एक नंबर लिखा होता है जो कि CML नंबर कहते हैं उसको, जो कि एक आइडेंटिफिकेशन है कि उस किसका मैन्युफैक्चरर कौन है. तो वो CML नंबर अगर आप एंटर करें BIS केयर ऐप में, तो आपको दिखता है कि ये मैन्युफैक्चरर कौन है. तो अगर वो ऑथेंटिक होगा तो मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स आएंगी. ये सेम चीज़ हॉलमार्किंग HUID पे भी अप्लाई करता है, CRS पे भी. तो आपको अगर दिखता है कि वो फेक है, जैसे मैंने कहा, आप उसी ऐप के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये ISI मार्क सही नहीं है, या CRS मार्क सही नहीं है, या ये HUID सही नहीं है, और BIS वहाँ पे एक्शन लेगा.
1: सर, राजस्थान को आप हेड करते हैं, राजस्थान बड़ा भूभाग है और यहाँ पर जाहिर सी बात है BIS की भूमिका भी काफ़ी व्यापक है, तो आपकी क्या जनता को जागरूक करने के लिए

0: मुख्य गतिविधियां रहती हैं।
1: जनता जागरूकता हमने बहुत ग्रास रूट से करी है यहाँ पे, तो स्कूलों में एक हमारा इनिशिएटिव है स्टैंडर्ड्स क्लब्स, तो 500 से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स क्लब्स हमने राजस्थान में शुरू किए हैं, जहाँ पे स्कूली बच्चों को स्टैंडर्ड्स का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। बहुत एक्टिविटीज़ कराते हैं हम, क्विजेस कराते हैं और एक्सपोजर विजिट्स कराते हैं, डिबेट्स कराते हैं, ताकि बचपन से ही स्कूली बच्चों को स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और वो अपने फैमिली को बताएंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे। साथ साथ में कॉलेजेस में भी हमने सिमिलरली स्टूडेंट चैप्टर शुरू किए हैं। कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस है राजस्थान के जहाँ पे हमने MOU साइन किया है इंस्टीट्यूशंस के साथ, और वहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर्स उनके स्टूडेंट्स के साथ हमने शुरू किए हैं, वहाँ भी स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ साथ में अब शहरों में RWAs सोसाइटीज़ में हम इंफॉर्मेशन जाहिर करते हैं, कंज्यूमर्स के लिए हम अलग से अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, इंडस्ट्री के लिए करते हैं, तो इवन जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनके लिए भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। तो सारे जो स्टेक होल्डर ग्रुप्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि सबको ही कवर करके स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, सर्टिफिकेशन, सबके बारे में पूरी पूरी जानकारी।
0: सर, ये तो बात हुई जागरूकता गतिविधियों की, अभी आपने इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया, तो उद्योग या MSME या छोटे जो भी उद्योग हैं, उन इकाइयों के लिए BIS प्रमाणन किस प्रकार काम करता है, और आपको क्या लगता है कि इससे बाजार ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनता है, ज़्यादा विश्वसनीय बनता है?
1: जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा क्वालिटी बेटर होगा, यही देखा गया है रिसर्च में ही। और MSMEs के लिए स्पेशली BIS बहुत स्टेप्स ले चुका है, ले रहा है। एक मेजर जो हमने काम किया है, जो सर्टिफिकेशन के हमारे चार्जेस होते हैं, अप टू 80% हम डिस्काउंट देते हैं MSMEs को, ताकि वो और इनकरेज हों कि वो आएँ सर्टिफिकेशन लें। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप फैक्ट्री में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करनी है, तो काफ़ी टाइम पे MSMEs के पास फाइनेंशियल या लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होती हैं कि वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं लगा पाते, तो उसके लिए भी हम रिलैक्सेशन देते हैं कि वो दूसरे लेबोरेटरीज़ को यूज़ करके वो टेस्टिंग करें, वो हम परमिट करते हैं।
0: सर, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक कोई महत्वपूर्ण संदेश दें जो उन्हें खरीदारी करते वक्त हर समय याद रखना चाहिए।
1: सबसे बड़ा संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि अब क्वालिटी को एक आदत बनाइए, ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आप प्राइस को देखते हैं, जैसे कि आप अच्छी पैकेजिंग को देखते हैं, उसी तरह क्वालिटी को भी आप उतना ही इम्पोर्टेंस दें। कोई आप चीज़ खरीदते हैं तो जैसे हमने कहा कि उसका लेबलिंग ठीक से पढ़ें, उसके बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट बिफोर डेट को देखें, और डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या खरीद रहे हैं, ISI मार्क को देखें, उसको ठीक से जांचें, CRS मार्क को देखें, अगर आप गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आप हॉलमार्क को देखें, HUID वेरीफाई करें, तो आपकी जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दोनों के बारे में आप पूरी तरह वाकिफ हों, मेरा यही मैसेज रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे श्रोताओं को बहुत ही सरल शब्दों में इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए, उन्हें गुणवत्ता मानकों, BIS प्रमाणन, ऑल हॉलमार्किंग तथा अन्य उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, किसी भी वस्तु को खरीदते समय केवल कीमत पर ही नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी, सुरक्षा और प्रामाणिकता पर ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी है। सही जानकारी जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी ताकत है। इसी संदेश के साथ सालेहा को दीजिए अनुमति। श्रोताओं, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा साहिल और मानवेंद्र प्रताप, संपादन ऋतिका गुप्ता और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।
2: आप सुन रहे थे समाचार तरंग। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर आज से

0: तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कई स्थानों पर कार्रवाई कर मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट करवाए गए। और सावन मास के अंतिम सोमवार पर आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कांवड़ियों में खासा उत्साह। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। दो दिवसीय ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। 3 दिन का ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में आदिवासी संग्रहालयों और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के रोड मैप को आगे बढ़ाता है, जिसके तहत भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी समुदाय पीछे ना छूटे। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके करेंगे। इस सम्मेलन में चैटबॉट का शुभारंभ होगा और आदिवाणी प्लेटफॉर्म में एक बड़ा अपडेट किया जाएगा। इसमें नई iOS एप्लीकेशन, 5 नई भाषाओं का समावेश और प्लेटफॉर्म पर कई नई सुविधाएं शामिल हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के तहत जयपुर नगर निगम के सभी वार्डों में रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को निर्धारित वार्डों के नामांकन पत्र प्राप्त करने और नामांकन प्राप्ति के बाद निर्वाचन संबंधी सभी कार्रवाई संपादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने निर्धारित नामांकन प्राप्ति स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इस बीच जयपुर नगर निगम के चुनावों में मतगणना स्थल में बदलाव किया गया है। निगम के 150 वार्डों की मतगणना JLN मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज परिसर की बजाय सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन परिसर में होगी। 14 सितम्बर को मतगणना वाले दिन गणेश चतुर्थी होने के कारण मोती डूंगरी मंदिर में आयोजित होने वाले मेले और JLN मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से सघन निरीक्षण

0: और कार्रवाई की जा रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए दूध, मावा, मिठाई, पनीर, घी और अन्य खाद्य पदार्थों की विशेष निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर मुख्यालय की केंद्रीय टीम ने झोटवाड़ा स्थित एक डेयरी का निरीक्षण किया। मौके पर जांच कर करीब 300 किलो पनीर नष्ट कराया गया। वहीं फलौदी के गांव खीचन में अवैध वनस्पति फैट निर्माण इकाई पर छापामार कार्रवाई की गई। टीम ने वहां करीब 690 किलो वनस्पति फैट जब्त कर फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया। उधर धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में एक डेयरी से मिश्रित दूध और एक मिष्ठान भंडार से घेवर के नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा है कि जन स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। राजस्थान पुलिस के आरएसी और एमबीसी कैडर से चयनित 25 महिला पुलिस कार्मिकों का आज से हरियाणा के मानेसर में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। 13 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में ये पुलिस कार्मिक गहन कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। प्रशिक्षण के लिए रवाना होने से पहले कल इन महिला कार्मिकों को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्म्स बटालियंस रूपेंद्र सिंह ने ब्रीफ किया। उन्होंने महिला जवानों को प्रशिक्षण के दौरान कड़े अनुशासन, अत्याधुनिक हथियार तकनीक और जीरो एरर की नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। जयपुर ग्रामीण जिले के आंधी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कल शाम तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर पर घास काट रही तीन महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर जोधपुर में एक खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से तीन बच्चों की मृत्यु हो गई। घटना बोरुंदा थाना क्षेत्र के चौकड़ी गांव में हुई। सावन मास के अंतिम सोमवार पर आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया जा रहा है। बाड़मेर जिले के कपालेश्वर, हरपालेश्वर और जसदेव तालाब स्थित शिव शक्ति धाम तथा सफेद आंकड़ा महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पाली के परशुराम महादेव मंदिर में मेला भरा है। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे से जिले के प्रसिद्ध हरणी महादेव मंदिर तक विशाल कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। भरतपुर में कावड़िये पवित्र सरोवर से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। वहीं सवाईमाधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं।
1: श्रावण मास के सोमवार के चलते जिले के शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए भक्तों के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शिवाड़ स्थित श्री घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ भारी संख्या में भक्त भोलेनाथ को जल, दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक कराकर आग, धतूरा, बिलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहां आज भी सहस्त्रघाट और रुद्राभिषेक के आयोजन होंगे। वहीं शाम को भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के अन्य शिवालयों में भी पूजा अर्चना अभिषेक के साथ साथ पवित्र सरोवर से कावड़िये जल लाकर अभिषेक कर रहे हैं। अंतिम सोमवार के चलते भक्तों में आस्था और श्रद्धा का उल्लास देखने को मिल रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौवां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर आज से तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कई स्थानों पर कार्रवाई कर मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट करवाए गए। और सावन मास के अंतिम सोमवार पर आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कांवड़ियों में खासा उत्साह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल।
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल

सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं भगत धर्मपाल भारती।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल अब यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे थे भगत धर्मपाल भारती को। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको सुनवाते हैं कुछ युगल गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और फिल्म का नाम था 20 साल बाद।

ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में फिल्म बेटा से। संगीत था आनंद मिलिंद का, गीत के बोल थे समीर के।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म साजन से। आवाज़ें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। संगीत था नदीम श्रवण का, गीत के बोल थे समीर के। युगल गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में, फिल्म सड़क से। संगीत था नदीम श्रवण का, गीत के बोल थे समीर के।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फिल्म संगीत में आप सुन रहे थे कुछ युगल गीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के फनकार।

नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। कार्यक्रम आज के फनकार में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका दोस्त गुलशन। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही कोई एक गीत नहीं बल्कि यादों की पूरी दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। ऐसा ही एक नाम है कल्याण जी आनंद जी। दो भाई, दो संगीतकार, लेकिन संगीत के मैदान में एक ऐसी जोड़ी जिसने हिंदी सिनेमा को न जाने कितने यादगार गीत दिए। दोस्तों, आज के फनकार के इस कार्यक्रम में हम आपको कल्याण जी आनंद जी के संगीतबद्ध कुछ सदाबहार नगमे सुनवाएंगे। आज का दिन कुछ खास है। आज ही के दिन यानी 24 अगस्त सन 2000 में इस जोड़ी में से कल्याण जी वीर जी शाह का निधन हो गया था।

उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं उनकी बनाई धुनों के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हैं सरस्वती चंद्र फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज है मुकेश की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने।

0: सादगी, मिठास और भारतीय संगीत की खुशबू से भरी ये धुन कल्याण जी आनंद जी की संगीत शैली की एक बेहतरीन मिसाल है। कल्याण जी वीरजी शाह और उनके छोटे भाई आनंद जी वीरजी शाह मूल रूप से कच्छ, गुजरात से जुड़े हुए हैं। उनके पिता मुंबई आकर व्यवसाय करने लगे थे। संगीत की दुनिया में आने से पहले इनका जीवन बिल्कुल अलग था, लेकिन शायद संगीत ने इन्हें चुन लिया था। कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी आते हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: इतनी रात में SMS? KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
4: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, गीत के बोल थे गुलशन बावरा के ही।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: मिस सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन

0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1 लाख दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
6: RBI कहता है, OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
7: दोस्तों, 1960 के दशक में हिंदी फिल्म संगीत पर पहले से ही बड़े बड़े संगीतकारों का दबदबा था। SD बर्मन, मदन मोहन, नौशाद, OP नैयर, शंकर जयकिशन जैसे दिग्गजों के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन कल्याण जी और आनंद जी ने अपनी अलग राह चुनी। कल्याण जी को फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त से संगीतकार के रूप में पहला बड़ा अवसर मिला। इसके बाद आनंद जी भी पूरी तरह से इनके साथ जुड़ गए और बनी वह जोड़ी जिसे दुनिया ने नाम दिया कल्याण जी आनंद जी।

0: ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम था अपराध। इस गीत के बोल लिखे थे इंदीवर ने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने। फिल्म का नाम था विश्वास।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर

0: 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म उपासना से। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, गीत के बोल थे राजेंद्र कृष्ण के।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, गीत के बोल थे।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गीत से। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीतबद्ध कुछ सदाबहार नगमे।

0: ये गीत आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज़ में फिल्म रफू चक्कर से। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, गीत के बोल थे गुलशन बावरा के।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, गीत के बोल इंदिवर के, और फिल्म का नाम था पारस।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार थे महान संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 11 बज चुके हैं, अब सुने कार्यक्रम अनुरोध गीत।

अनुरोध गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से। दोस्तों, आपने अभी ये बहुत ही खूबसूरत धुन सुनी। ये धुन बनाई महान संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने। कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के महान संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह की आज बरसी है, आप सभी जानते हैं। और

आपने अपने संदेशों और ख़तों में इनके खूबसूरत गानों की फरमाइश की है। तो कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं इन्हीं के एक बहुत ही प्यारे से संगीतबद्ध किए हुए गाने के साथ।

कार्यक्रम के आगाज में दोस्तों आपको सुनवाते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना समझौता फिल्म से।

आपके संदेश मिले हैं, आप हमारे साथी हैं जो इस गाने को पसंद करेंगे, आपके संदेश हम पढ़ते हैं। आप हैं रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी, मुरादाबाद दूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक, बलवीर सिंह, मजनू काटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, खोखरा वाली से विनोद बाराशाह, विशाल बाराशाह, विकास रोशनी, शगुन बाराशाह, हीरावाली फाजिलका से आप लिखते हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनी राम, रणजीत राम किरोड़ीवाल और सुरेंद्र भादु। आप हैं नाईवाला हनुमानगढ़ से हमारे साथी वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, ये संदेश मिला है। नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर की तरफ से हनुमानगढ़। रूपनगर से आप लिखते हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान और शहनाज, और ये संदेश हमें मिला है फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, संबलपुर कांकेर से आप लिखते हैं, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर मान, हरविंदर मान और राजप्रीत सिंह मान की तरफ से संदेश मिला है। और आप हैं हमारे साथी चकचौदह पी एस बी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह और मनराज वीरक की तरफ से संदेश मिल चुका है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और आपके साथ में हैं डब्बू। और आप हैं राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल और बेबी लक्ष्य है। आप लिखते हैं गोपी खीरिया, दतिया एमपी से, और आप हैं हमारे साथी सादुल शहर से रामकुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड। आप सभी साथियों के लिए हम सुनवाते हैं दोस्ती प्यार मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत गाना। आकाशवाणी परिवार के साथ आप सभी अजीज साथियों की जो दोस्ती है, जो प्यार मोहब्बत है, उसी के नाम आपके लिए आ रहा है ये खूबसूरत गाना। सुनिए।

दोस्तों, अनुरोध गीत कार्यक्रम के आगाज़ में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में ये खूबसूरत गाना आपने सुना समझौता फिल्म से। अगले गाने के लिए हमें कुछ संदेश और ख़त मिले हैं। पहले कुछ ख़त आपके शामिल करते हैं। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से आप लिखते हैं, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक। मुक्सर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन करण और वंश बत्ता। यह खत मिला है मसीता डबवाली से, दर्शन लोट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लोट, सारिका और निहारिका की तरफ से। मालवा रेडियो श्रोता संघ रतलाम से आप लिखते हैं, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। दौलतपुरा से खत मिला है, शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित, हेमंत और अंजू बेनीवाल की तरफ से। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता और कुलदीप गांधी। ये खत है गिदड़बाहा पंजाब से, मंजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल और बेबी हिनासा की तरफ से। पदमपुर से पवन तनेजा, योगेश तनेजा और आपके बहुत से साथी। और यह खत मिला है।

0: मंडी डब वाली से जेके बकोलिया, संजय अनिल और मीनू बकोलिया, सुनीता बकोलिया की तरफ से। संदेश हैं, सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका की तरफ से। सिद्धार्थ नगर बाबली दरियापुर से गजानंद येले, नवदीप विश्वदीप और अशोक येले, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़। आप लिखते हैं पींगा वाला चौक गुराया जालंधर से। ये संदेश मिला है स्वर्ण सिंह का, गांव दोले वाला मोगा से। और आप हैं श्रीगंगानगर से नेकी राम बंसीवाल, जोनी बंसीवाल, धनराज बंसीवाल। और मुंगीसापुर से संदेश मिला है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सविस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी की तरफ से। 22NTR नोहर से आप लिखते हैं पवन सुथार, अमरजीत सुथार, मोहन सुनील और विष्णु सुथार। आप हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साईं गायकवाड़ की तरफ से संदेश मिल चुका है। धनोरी तेलीवाला से लिखते हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। और यह संदेश है अनिल मानसी, गौरव कविता अरोड़ा इनकी तरफ से। इन्होंने लिखा है मोती नगर दिल्ली से। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, परल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो और आपके बहुत से साथी। और आप हैं हमारे साथी चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। आप सभी साथियों के लिए आ रहा है ये बहुत ही प्यारा सा गाना, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। आप सुन के देखिए। बलफ मास्टर फिल्म का ये गाना है और ये खूबसूरत आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। सुनते हैं।
1: अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछ नहाल। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछ नहाल। प्यार

दोस्तों आप सुन रहे थे बलफ मास्टर फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा दो गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं संदेश, लेकिन उससे पहले कुछ ख़त आपके हमारे पास हैं। फरमाइश करने वाले हमारे साथी हैं मंडी गोलवाला से ब्रिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान फाजिल्का रोड मलोट पंजाब से, कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमनदीप गिल, बलजीत गिल, दिशा मौला और जगतार जग्गा, मक्खू फिरोजपुर से, बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और मुनीश बजाज, और आप हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और बेबी गविया के साथ भाई सुच्चा सिंह पाठक। ये खत मिला है बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग की तरफ से, और मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपी धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधू, महावीर संधू और गुरचरण ग्रोवर के साथ आप हैं रमेश मिगलानी। आपके संदेश हैं 7 DBN भादुवाली ढाणी से आप लिखते हैं, टेक चंद चारण, संतोष देवी, सत्य प्रिय चारण, जय सिंह, योगेश्री, रणजीत सिंह सुथार, गुरदेव सिंह और हरनेक सिंह भगाणिया, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की तरफ से संदेश मिला है। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, प्राग टेलर, पूना राम और कृष्णा देवांगन, आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और सायना शर्मा के साथ निवान शर्मा। MLB रोड ग्वालियर से लिखते हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरब खुराना और SK पप्पी। आप हमारे साथी हैं कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्षा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अनूप शहर से लिखते हैं गजानंद सारस्वत, ताराचंद, सोनू, अशोक कुमार, उपेश कुमार, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल, महावीर लोहरा और विद्याधर सारस्वत। ये संदेश मिला है टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रेम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी की तरफ से। सूरतगढ़ से आप लिखते हैं लेखराज शाक्य, पवन कुमार, सुरजीत सिंह, रवि कुमार, कुंदन लाल शाक्य, जीवराज सिंह, उदय सिंह और आपके बहुत से साथी, और हमारे नियमित साथी हैं हांडी खेड़ा सिरसा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप लिखते हैं हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू और चंपा साहू। आप हमारे साथी फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। गोविंदपुरा सीकर से है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और आपके साथ हैं राजा। और ये संदेश हमें मिला है चक 15 PS से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह।

जोसन, आदर्श पाल जोसन मेलबर्न, रोबिन सिंह जोसन वैंकूवर, और आपके साथ हैं सेवक सिंह, संजू नायक और गोपीराम रोज। आप सभी साथियों को सुनवाते हैं हम ये बहुत ही प्यारा सा गाना, सुनिए। महान संगीतकार कल्याण जी की बरसी पर कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुने, तीन बहुरानिया फिल्म से।

0: bam, chica, bam, bam.
1: तीन बहुरानिया फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत दो गाना हम आपको सुनवा रहे थे, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। अगले गाने के लिए हमारे बहुत से साथियों के संदेश हमें मिल चुके हैं, पढ़ते हैं हम। ये संदेश हमें मिला है औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञ घोड़के, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, धुंधाड़ा ओसिया जोधपुर से आप लिखते हैं, गणेश मेघवाल, चंपा मधुबाला, विवेक और पीयूषा। ये संदेश है सादेवाला सिरसा से रामेश्वर माहर, परमेश्वरी माहर, जिगर और जानवी की तरफ से। और आप हैं कवाई सालपुरा जिला बारा से सतीश श्रीवास्तु, प्रेमलता, हिमानी हर्षिता और आपके साथ हैं अभिषेक श्रीवास्तव। लखुवाली हेड से लिखते हैं मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकनाराम। और आप हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी।

गोविंद चुगटोनी दीवान लव दीवान राधे भाविक दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास और आशा देवी। साबुआना फाजिलका से लिखते हैं करण कंबोज चरण कंबोज रियांश मानव और परीश कंबोज। सनावत से शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बोड़ाना। मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग अंजना रानी रवि।

सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और मायल परिवार भोपालगढ़ राजस्थान से हैं। धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार की तरफ से ये संदेश मिला है और आपके कुछ खत भी हम अगले गीत के साथ में शामिल करते हैं। आप हैं हमारे साथी खत लिखने वाले, गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह और धर्मवीर झोरड़, राजपुरा पंचायत से आप लिखते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य और आपके बहुत से साथी पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित भी आपके साथ में हैं। और आप हैं श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा। दिल्ली शहर मोरीगेट से लिखते हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। और आप हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, अनीता पुरी, ममता पुरी, मेघा पुरी, पूजा पुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालशा कपूर, रमा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीश पुरी, सतीश पुरी, राकेश पुरी, विनोद पुरी, पाली पुरी, डीसी पुरी, अरुण पुरी, नेहा पुरी, एकता पुरी, शम्मी पुरी, बोधी पुरी, सुनील पुरी, बीके पुरी, आरएस पुरी और बाकी परिवार के सारे बचे हुए पुरी। आप सभी को हम सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना।

अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही खूबसूरत गाना हमने आपको सुनवाया कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। अगले गाने के लिए हमें खत मिले हैं कोटवा नारायणपुर से, बाबा पट्टी बलिया से हैं आप। ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबेहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। यह खत मिला है गोविंदपुरा 18 जी जी से, खुशी राम रणवा, ब्रिजलाल, पाला राम पूनिया, मोहन महला, काना राम, दिलीप नाथ, ऋतिका रणवा और कोटला कलां पंजाब से, यादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह, गुरजोत सिंह, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। अरायण से आप लिखते हैं रणजीत सोलंकी, परमजीत कौर सोलंकी, विष्णुदेव, राजकुमार सोलंकी, रमन राठौड़ और जस्सू परिवार इनका, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वीरेंद्र, सिमरन एकम दमन और अभिजोत आप लिखते हैं करणवीर हाउस भुच्चो कैंचियाँ बठिंडा से। हमारे बहुत से साथियों के संदेश भी हमें प्राप्त हुए हैं, इसी गीत के साथ में आपके कुछ संदेश भी हम शामिल करते हैं। आप हमें संदेश भेजते हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, आप लिखते हैं गंज ढुंडवारा से, रायसिंह नगर से सोहन लाल जांगीड़, सुनील जांगीड़, शिव प्रकाश, चेतन राम सारस्वत, धनराज भांभू, नरसी राम, नरसी कुमार, भंवर लाल और पवन कुमार शर्मा आपके साथ हैं। बदायूं से गनगोला से आप लिखते हैं इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान। और आप हमारे साथी हैं उज्जैन से भेरू लाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश वाकतरिया और प्रतीक वाकतरिया। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, साइन फातमा, अदनान खान, फैज़ान खान और अन्नू खान की तरफ से ये संदेश हमें मिला है। मंडी बुलढाणा से आप लिखते हैं सबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा, आयजा आनम और मुदसीर हुसैन। संगरिया से गोवर्धन दास, कृष्णा देवी, माही, केदार, चित्रा, युवांशी और आपके साथ हैं बदरा बदरा परिवार। बिलासगढ़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ उच्च भट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आसी सिवन्या और अनु गोस्वामी की तरफ से ये संदेश हमें मिला है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां आप लिखते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और हीरावाली फाजिलका से हजारी लाल पुरोहित, मोनी पारीक, भूपेंद्र पारीक, जगत मंडावरा, राजू मंडावरा और आपके बहुत से साथी। कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, सुनील मोहन, भजन लाल, कैलाश लक्षिता सुथार,

और आप हैं गंज टुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और आपके साथ हैं शमसुल भाई। लिवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानकपुरी, राजा दास मानकपुरी और रानी मानकपुरी। राजकोट से जेमिनी कुमार जैन और हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन। गुरमीत सिंह मीता लिखते हैं साउथ दिल्ली से, और आप हमारे साथी मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापति और आपके बहुत से साथी। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गाना।

दोस्तों अनुरोध गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी भाई।

की बरसी पर उनको याद करते हुए उन्हीं की फिल्मों के बहुत ही खूबसूरत गाने जो आपने अपनी फरमाइश में लिखे हैं। अगला गाना हम सुनवाना चाहते हैं आप सभी साथियों को, संदेश मिले हैं घमंडिया से, जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, अमना, साइना, शिवम और बेबी ईवा धारणिया की तरफ से संदेश है। पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। हिंगड़ी आलोड से आप लिखते हैं जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ आप हैं। जालूखाट संगरिया से जगदीश चंद्र प्रजापति, बिमला प्रजापति, मोनू राजेंद्र प्रजापति और हरिश्चंद्र पूनिया। और ये संदेश हमें मिला है लोगढ़ ठाकुरवाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह की तरफ से। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। नई आबादी हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र, कपिल देव, हिमानी जाखड़। पटेल नगर मलोड़ से आप लिखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और आपके साथ हैं गुड्डू। ढाणी लाल खान और से जावेद खान, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान और आपके साथी। मंडी केसरी सिंहपुर से श्यामलाल राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार, चिमन लाल। गांधीनगर गुजरात से लिखते हैं जी के परिमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष परमार, दीपल परमार। यही गाना हम आप साथियों को भी सुनाना चाहते हैं। विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, भावेश कुमार, परमिला भावसार, सन्नी भावसार। लखनादौन एमपी से आप लिखते हैं लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे। व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही और आप हैं राजश्री और साथ में गौरव शाही। ओल्ड लिसनर ग्रुप इंडिया से आप लिखते हैं महेंद्र रविंदर और आपके साथी। गोवर्धन कॉलोनी, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना। बोरखेड़ा पित्रामल से हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूणत। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। गोंदूर धूलिया से आप लिखते हैं मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता। ये संदेश मिला है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब की तरफ से। गणेश चौक जोधपुर से लिखते हैं नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी। यही गाना हम आप साथियों को भी सुनवाना चाहते हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा से आप लिखते हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप और आपके बहुत से साथी। आप सभी साथी सुने रखवाला फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे रखवाला फिल्म का ये गाना। और अगले गाने के लिए हमें संदेश मिले हैं 58 NP रायसिंह नगर से, सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरबंस लाल, बनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी मलखट, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन का दोबारा मैसेज आ गया है। और आप हैं दूलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, खरगोन सनावत से आप लिखते हैं, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा और आपके बहुत से साथी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी की तरफ से संदेश है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम कुमार सुरलकर और आपके बहुत से साथी। आप हैं राजू टुटेजा खुश दिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू, मन्नू शिव सेठू सेठी, करणपुरी, पाल मिस्त्री, स्माइल टुटेजा, पवन गुजर, आप सब साथी लिखते हैं। गोविंदगढ़ माजीवाला से, सुल्तानपुर यूपी से यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह और आपके बहुत से साथी। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा और भालूराम जी। आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन, परवीन, मायरा नूर, आपने लिखा है। उत्तराखंड जसपुर से, सुदामा नगर खंडवा से आप लिखते हैं, लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप। ये संदेश मिला है फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से, सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया और चौरसिया परिवार की तरफ से, सीताराम कागड़ा, बबीता बोत, निखिल कागड़ा, तन्वी बोत, अंकित कागड़ा, आप लिखते हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से, श्री करणपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया और आपके बहुत से साथी। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, निकिता, ऋषिता और आपके बहुत से साथी। GTV मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से आप लिखते हैं, मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, समा, हिना, शकीला, जस्मीन, रजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी और सुराज, मोहम्मद जावेद अंसारी। बहलोल नगर से हरी शहरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर, अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख, आप लिखते हैं। जत शहर सांगली से और बांडीवाला फाजिलका से आप हमारे साथी हैं, ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। आप सभी साथियों के लिए हम सुनवाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गाना, आइए सुने।
1: हाँ तो नैनों में
2: बिंदिया है,
1: माथे पे
2: बिंदिया है,

दोस्तों, जोरू का गुलाम इस फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम का आखिरी गाना हम आप सभी साथियों को सुनवाते हैं। संदेश मिले हैं विजय पाटिल, पद्माबाई पाटिल, चिरंजीव, तेजस्विनी और आपके साथी जालना महाराष्ट्र से। आप लिखते हैं, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और आपके बहुत से साथी। मारहारा दरवाज़ा एटा से आप लिखते हैं, नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यसफ अब्बासी, रसीद वारसी और आपके बहुत से साथी। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कोसर और बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया। ये संदेश मिला है रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी। आप लिखते हैं, आकली दीवान एमपी से, वड़िंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। तेलंगाना से आप लिखते हैं, शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख और आपके बहुत से साथी। संगरिया से हमारे साथी हैं सुमन मिढ्ढा और श्याम मिढ्ढा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय और आपके साथी। आपका खत भी आ चुका था। और आप हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। और अब हमारे कुछ साथियों के हमें खत भी मिले हैं, वो भी हम शामिल करते हैं। नोहर से नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार, कालू मिस्त्री, मोहन सुथार, चंद्रशेखर पेंटर, राम प्रताप सिंवर और आपके बहुत से साथी। और ये खत हमें मिला है मोहम्मदपुर सोतर बुक फार्म रतिया से। आप लिखते हैं, जीवन सिंह बुक, शंटी बुक, सिमरन बुक, कौशल्या बुक, मनकीरत बुक, जशन बुक, भूषण खेड़ा, गुरछिंदर बुक और आपका सारा बुक परिवार साथ में है। और ये खत है बोरसरा नेला से।

0: मोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांश साहू की तरफ से आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं बंधन फिल्म का ये गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। आप सुनिए ये आखिरी गाना और नरेश वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: जाना है तो जाओ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12 बज चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनिएगा 12:05 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद खूबसूरत गाने। 12:30 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे चंद गज़लें। 12:50 पर कार्यक्रम होगा खेत खलिहान जानकारी का, विषय रहेगा मृदा में जैविक कार्बन का महत्व। 1 बजे आकाशवाणी जयपुर से आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। 1:05 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम महिला जगत। जानकारी के विषय रहेंगे जीवन की सांझ में भी जोश और जज्बा बनाए रखें, वर्षा जल संरक्षण का महत्व, कमर दर्द के लिए उपाय, और इसके साथ ही आप चंद बहुत ही खूबसूरत गाने सुनेंगे। 2 बजे आप सुनिएगा मिड डे न्यूज़। 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, और 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे चंद खूबसूरत गानों के साथ। 3 बजे आप सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस का प्रसारण।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी, जानकारी के विषय युवा जीवन में संयम, मौलिक कर्तव्य, उस्ताद योजना, इसके अलावा आज का इतिहास और चंद खूबसूरत गाने और एक भेंट वार्ता आप सुनेंगे स्क्रीन बनाम स्कूल बदलती तकनीक के साथ पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, प्रवीण भाटिया की ये भेंट वार्ता आप सुनेंगे, भेंट करेंगे नवीन सिसोदिया। 6 बजे सुनिएगा आप कार्यक्रम

6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में समाचार। 7 बजे कार्यक्रम होगा चौपाल, जानकारी के विषय रहेंगे नरमे कपास की फसल में सिंचाई व्यवस्था, ग्वार की फसल में समसामयिक कार्य, इसके अलावा फसल में पोषक तत्वों का महत्व और गीत भजन भी आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे। 8 बजे फिल्म संगीत के अंतर्गत एक ही फिल्म के गाने आप सुनेंगे। 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से और साथ ही 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे News 8:09 भी आप दिल्ली से सुनेंगे। रात 9:15 पर सुगम संगीत में आप चंद गजलें सुनेंगे। 9:30 पर कार्यक्रम होगा पब्लिक स्पीक। 10 बजे खेल जगत आकाशवाणी जयपुर से और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 11 बजे सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। 11:10 पर हमारी सभा समाप्ति उद्घोषणा होगी। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम में हमारे तमाम फौजी भाइयों और हमारे श्रोताओं का स्वागत है। खूबसूरत गाने आप सुने, पहला गाना सुने अमृत फिल्म से।

श्रोताओं, सैनिकों के लिए कार्यक्रम के आगाज़ में आप सुन रहे थे ये बहुत ही खूबसूरत दो गाना, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने ये बोल लिखे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और यह है कार्यक्रम की अगली पेशकश। घायल फिल्म का ये प्यारा सा गाना आप सुनिए, लता मंगेशकर और पंकज उधास की आवाज में। अनजान ने ये गाना लिखा है, संगीत बप्पी लहरी का है, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आपने घायल फिल्म का ये गाना सुना लता मंगेशकर और पंकज उधास की आवाज़ों में, और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये फिल्म है राधा का संगम, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, हसरत का गाना है संगीत अनु मलिक का। आइए सुनें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:30 हो चुके हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनिए चंद मिली जुली गज़लें। पहली गज़ल जसवंत सिंह की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे जसवंत सिंह की आवाज में ये गजल।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और ये है कार्यक्रम की अगली गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये गजल।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्हों

0: अटकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: और अब कार्यक्रम की आखिरी गजल आप सुने चंदनदास की आवाज में।

0: चंदन दास की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:50 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम खेत खलिहान। खेत खलिहान में आज की जानकारी का विषय है मृदा में जैविक कार्बन का महत्व। आइए सुनते हैं ये जानकारी। जानकारी आपको दे रहे हैं सुनील शर्मा। आइए सुने।
1: खेत खलियान सुननी है सगले श्रोतावान ने सुनील भाई की ओर से मोकली मोकली राम राम। श्रोताओं आज बात करा अपने माटी को जो स्वास्थ्य है बिंगे वास्ते जैविक जो कार्बन है बिंगो के महत्व है। जैविक कार्बन जो है वो आपने जो की माटी है इनकी गुणवत्ता बढ़ाने खातर बहुत जरूरी है। और वो माटी को एक तरीके से किए हृदय भी मान्य जावे। माटी में जो मौजूद सड़ा गड़ा पौधा है पत्तियां हैं फसल है मांग अवशेष है गोबर है सूक्ष्म जीव है अंग है अपघटन से वो बने। ईशु की माटी की जिसकी उर्वरता बढ़े और जद जलवायु मान लो परिवर्तन हुए तो बिंगो प्रभाव भी कम करने में वो योगदान देवे। माटी में गए महत्व की जो बात आप करा तो वो की है माटी को जुकियाँ भौतिक रासायनिक और जैविक जकी गुणवत्ता है इन्हें सीधो प्रभावित करें। इनमें की है पोषक तत्व है बहुत ज़्यादा मात्रा में तो आ जकी माटी है इंगो वो एक तरह से की है बैंक है। बैंक की त्रियाँ काम करे नाइट्रोजन फास्फोरस है जिया सल्फर है और जका किसान में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है अपना जका जरूरी हो फसल वास्ते वो किए धीरे धीरे बूटा ती पहुँचावे। दूसरा इनको फायदा वो है कि जकी माटी है अपनी बिंगी जल धारण की जकी क्षमता है पानी ने रोक के रखने की जकी क्षमता है बिना वो बढ़ावे क्योंकि इंग अंदर की हुए जैविक कार्बन हुए और वो माटी ने की एक जिया स्पंज जिया हुए बीतरियाँ बना दिए। ईशु की जब आपने मान लियो मूसलाधार बारिश से तो बरसात हुए बारी बरसात हुए बीन टाइम पानी ने सोख के रखे जीशू मान लियो जब सूखे को टाइम आवे बीन टाइम फसलों ने नमी मिलती रहे और फसल में आपने किए सोको को नहीं आवे लंबे टाइम तक फसल पानी की मतलब कमी महसूस कौन करे। तीसरा फायदा ईशू वो है कि अपनी माटी है बिंगज का कण है माना उसके आपस में बांध के रखे माटी की बनावट में सुधार करे जिसों की माटी जकी की भुरभुरी बन जाए और जका अपना बूटा है अपनी जकी फसल है बांगो जको फैलाव है जड़ांगो वो बहुत बढ़िया है। और सागे सागे की है इमें वायु को जको संचार है हवा पानी को वो बनियो रेवे जिसमें अपनी जकी फसल है वह अच्छी चाल है क्योंकि जब माटी पोली होगी तो अपनी जकी फसल की जड़ा है वे पूरी दूर तक फैल जाएगी और दूर छू नमी भी ले सकेगी और दूर छू पोषक तत्व तो भी ले सकेगी तो बीछू बहुत ही बड़ो आपने फायदा होवे। और फायदे की बात करें तो वो क्या सूक्ष्म जीव है जका बम बढ़ोतरी करे बंगो जीवन बढ़ावे जिया के किसान का मित्र अब देख लो जिया केंचुआ है और भी जका जीवाणु है जिया राइजोबियम है एजेटोबैक्टर है एक ही है जका जैविक कार्बन हो नहीं बांशों आपको भोजन प्राप्त करे। और जद आपने मान लो माटी है खेत की भी में जैविक कार्बन भरपूर मात्रा में है गो तो अन्न भी के खानों पीनों बढ़िया मिलेगा तो आपको स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा।

अच्छी तरह काम करेगा और किसान ना ज़्यादा में ज़्यादा फायदों पहुँचावेगा। दूसरों फायदों की बात और करा तो जका सूक्ष्म जीव है बंगी ओ गतिविधियाँ बढ़िया रखे और जका पोषक तत्व है माटी के अंदर बंगो बनाए रखे, तो इशू बहुत बढ़िया अपन फायदा हुआ और किसान भाई अच्छो इशू लाभ ले सके। सागे सागे जिया माटी की जिया रोग प्रतिरोधक क्षमता है बिना वो बढ़ावे, क्योंकि जब माटी के अंदर कार्बनिक पदार्थ अच्छी मात्रा में होवेगा तो बे माटी की जकी सूक्ष्म जीवों की गतिविधियाँ हैं बांग बढ़ोतरी होगी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो बीच में अपना जो फसल है बिंगो स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहेगा और आपने जकी फसल है भी मैं मान लो कम आपने जिया कोई रसायन है बांग उपयोग करना पड़ेगा। और सागे सागे जो मृदा क्षरण है यानी माटी को कटाव, इन्हें भी वो की है बचा के रखे माटी न कटने से, क्योंकि माटी की संरचना बढ़िया होगी वापसी मान लियो कण बंधेड़ा रहेगा तो जिया तेज हवा चले आंधी आवे या फिर आपने ज़्यादा बरसात हो तो बिंगा सागे जकी माटी है उड़गे कौन जावेगी बहगे कौन जावेगी, तो अपन बीशू फायदा होगा को अपनी जकी खेत की उर्वरा शक्ति है उपजाऊपन है वो लंबे टाइम तक बने रहेगा। अब बात करा किसान भाइयों भी आपने जकी खेत की माटी है इन अंदर आप के उपाय करा के तरीका अपनावा ताकि इमें जो जैविक कार्बन है इन अंदर बढ़ोतरी होती रहे। तो पहलो जो तरीको है वो है जकी जैविक खाद है गोबर की खाद है, इशू आपने खेत के अंदर जैविक कार्बन बढ़ा सका जिया खेत में अच्छी पक्केड़ी गोबर की खाद है या जकी वर्मी कंपोस्ट है केंचवा खाद जकी बोला, तो जी आप इनको इस्तेमाल करांगा तो अपने खेत को जो जैविक कार्बन है इमें बढ़ोतरी होगी और अपनी जकी माटी है बिंगो स्वास्थ्य भी बने रहेगा। सागे इन सारू आप की है प्रति हेक्टर 10-15 टन यानी लगभग 100-150 कुंटल जकी खाद है आपने इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरो जो है उपयोग वो है फसल अवशेष को प्रबंधन को, जिया कणक है धान है मक्के का डंठल है जका अवशेष है अन्न आप खेत में बाड़न की बजाय जिया सुपर सीडर आवे मल्चर आवे आंगी मदद से आप जो माटी का मिला दिया तो भी जैविक कार्बन को जो मात्रा है वह अपने खेत में बढ़ेगी और जका अवशेष है अन्य सड़न सारू जिया वेस्ट डिंक पोजर आवे इनको छिड़काव करके भी आप आंगू इस्तेमाल कर सका। हरीज की खाद आवे किसान भाइयों आ भी जैविक कार्बन में वृद्धि करे जिया मुख्य अपनी फसल है बिंग बीजान से पहला आप जे डेंचो है सीणी है ग्वार है जे आ फसलों की बीजान करा एर आने हरी अवस्था के अंदर ही खेत की माटी मिला दिया तो एक ये हरी खाद के अंदर बदल जाएगा और आपने जकी खेत की माटी है भी मैं जैविक कार्बन है वो बढ़ेगा इंसू अपन उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इन सारू अपन के करना चाहिए जब आए फसल फूल की अवस्थाओं पहला वह यानी लगभग 45-50 दिन की वह बीन टाइम की है हल चला गई मैं माटी में पलट के मिला देना चाहिए इंसू नाइट्रोजन है कार्बन है आंगी जकी दोनों तत्व है आंगी भारी मात्रा में वृद्धि हो। और एक बात और है जिया कम जुताई आपने करनी चाहिए जी बार बार जो आप गहरी जुताई करा ऊंडी पाड़ करा तो यूं की है जब माटी की हवा के संपर्क में आवेगी तो बीशू की है माटी को प्रदन हो सके या जका जैविक कार्बन है वे आक्षिकर तो गे नष्ट भी हो सके, तो अपन ज़्यादा की है मान लो बार बार गहरी जुताई भी नहीं करनी चाहिए और कम जुताई अपना गे अपा जैविक कार्बन ने बढ़ा सका। फसल चक्र है इन्हें अपना के भी अपना जैविक कार्बन ने बढ़ा सका अंतर अंतर जकी फसल वह बिन्न भी अपा जिया दलनी फसल हैं एक ही वायुमंडल छू नाइट्रोजन ने सोख गए माटी के अंदर कार्बन में बदल दिए और कार्बन की वृद्धि हुए और एक ही फसल जिया बार बार ने उगानी चाहिए दाल वाली फसलों के बाद में दूसरी जकी फसलें वागो उपयोग इस्तेमाल करना चाहिए। मल्चिंग करके भी आप जकी जैविक कार्बन इन्हें बढ़ा सका राइजो

0: बीम है, पीएसबी है, ट्राइकोडर्मा है, अंग उपयोग भी करना चाहिए जका अपनी माटी खातर बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादा ज़्यादा अपन किया जैव उर्वरक है अंग इस्तेमाल करना चाहिए, और रासायनिक जकी खाता है अंग कम इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जका माटी है इनको स्वास्थ्य खराब न और लंबे टाइम तक अपन ने उत्पादन देती रहे। तो इन तरियाँ जे किसान भाई जैविक कार्बन माटी के अंदर बढ़िया मिलावेगा, बढ़िया बढ़ावेगा, तो अपनी माटी है मिंगो स्वास्थ्य बनी रहेगा और अपन ने लंबे टाइम तक उत्पादन मिलेगा। तो आज खातर इतो ही, अब थारे सुनील भाई ने दियो आज्ञा, राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय था मृदा में जैविक कार्बन का महत्व। जानकारी दे रहे थे सुनील शर्मा। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1 बजने वाला है अब आकाशवाणी जयपुर से समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज पाली के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मिल क्षेत्र की ओर से शहर के मुख्य मार्गों से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छात्राएं पोस्टर और बैनर के माध्यम से आमजन को लोकतंत्र में प्रत्येक वोट के महत्व का संदेश दे रही हैं। वहीं ब्यावर में स्वीप टीम के निर्देशन में स्वीप की पाती और वोटर की मनुहार विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वीप प्रभारी डॉक्टर संजू जैन ने बताया कि इसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटिका आकर्षण का केंद्र रही। उधर जैसलमेर में सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। वहीं 12 में मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों का पहला प्रशिक्षण आज से आयोजित किया जा रहा है। रेलवे ने पूरे रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके तहत पेयजल टैंकों और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई और कीटाणु शोधन किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे, जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 सहित मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिर दर्द और शरीर में जकड़न शामिल है और अधिकतर लोग उचित देखभाल तथा विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इस इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सावन मास के अंतिम सोमवार पर आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया जा रहा है। जयपुर के ताड़केश्वर और झारखंड महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बाड़मेर जिले के कपालेश्वर, हरपालेश्वर और जसदेर तालाब स्थित शिव शक्ति धाम तथा सफेद आंकड़ा महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहां वातावरण शिवमय बना हुआ है। पाली के परशुराम महादेव मंदिर में मेला भरा है। वहीं सवाईमाधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में आस्था के विभिन्न रंग देखने को मिल रहे हैं। नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में आयोजित तीजोत्सव में राजस्थान की लोक संस्कृति, परंपराओं, कला, हस्तशिल्प, संगीत और खानपान को समर्पित विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जीवंत झलक देखने को मिल रही है। कल सांस्कृतिक संध्या में जैसलमेर के प्रसिद्ध लोक गायक कुतले खान ने अपनी प्रभावशाली लोक और

0: सुरीली गायकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत केसरिया बालम के गायन से हुई। सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। तीजोत्सव में राजस्थानी खान पान के फूड स्टॉल भी आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तीजोत्सव आज सम्पन्न होगा। प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने से विभिन्न स्थानों पर उमस का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। हालांकि पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। 4-5 स्थानों पर भारी बारिश भी हुई। सबसे ज्यादा 95 मिलीमीटर बारिश भरतपुर के कुम्हेर में हुई। भरतपुर जिले में बीती रात से रुक रुक कर तेज बरसात हो रही है। लगातार बारिश के कारण जिले के सबसे बड़े बारिठा बांध में पानी की अच्छी आवक हुई है। जलस्तर बढ़ने पर बांध का एक गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई है। जल संसाधन विभाग के अभियंता दशरथ सिंह गुर्जर ने बताया कि कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से बांध का जलस्तर बढ़कर 28 फीट हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हो चुके हैं। अब कार्यक्रम सुने महिला जगत। महिला जगत में आज की पेशकश है मधुलता पुरोहित की।

सुरमई समा है, मौसम है सुहाना, आना इससे पहले कि मैं हो जाऊं अफसाना, आना। एक तेरा हुस्न गुलाबों सा गजल सूरत है, एक ये सावन का महीना है सुहाना, आना। रोज कहते हो मुझे आज तो ये है वो है, आज दुनिया से कोई करके बहाना, आना। अच्छी अच्छी बातों और सुंदर गीतों का गुलदस्ता लेकर मैं आपकी रेडियो साथी मधुलता पुरोहित हाजिर हूँ कार्यक्रम महिला जगत लेकर। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

सखियों आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है और सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व होता है, हम सब जानती हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है और ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है। विशेषकर सावन के सोमवार को शिव भक्त विशेष श्रद्धा से मनाते हैं, उस दिन पूजा करते हैं और व्रत भी करते हैं। बहनों, सावन में भक्ति भी है, प्रकृति भी है और साथ ही है परंपरा भी, और भावनाओं की मिठास भी इस मौसम में होती है। सखियों, धार्मिक आस्था के साथ ही ये प्रकृति के नवजीवन का भी महीना होता है। बारिश से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधों में जैसे नई जान आ जाती है और पूरे वातावरण में एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। और हम महिलाओं के लिए तो सावन जैसे एक अलग ही रंग और उल्लास लेकर आता है। हरी चूड़ियां, मेहंदी, तरह तरह के श्रृंगार और सावन के गीतों के साथ इतने सारे उत्सव और खुशी हम मनाती हैं। और इन सब के साथ सावन के झूलों को हम कैसे भूल सकती हैं, नहीं ना? तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसको सिर्फ सुनकर ही हमें झूले झूलने जैसा आनंद आता है। आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

बहनों, जल ही जीवन है। ये जो हरियाली और रौनक अभी हम देख रहे हैं, वो सब इसी के कारण है। बारिश की बूंदें धरती को सींचती हैं और यही पानी पेड़ पौधों, खेतों, पशु पक्षियों और हम इंसानों के जीवन का आधार होता है। वर्षा ऋतु हमें हरियाली और बारिश की खुशी के साथ ही ये भी एहसास कराता है कि जल अनमोल है। इसलिए आसमान से बूंदों के रूप में जो अमृत बरसता है, उसे यूं ही नहीं बह जाने देना चाहिए। जल की एक एक बूंद कीमती होती है, उसे सहेज लेना, बचाना और कल के लिए सुरक्षित रख लेना हमारी जिम्मेदारी है। आइए एक और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं।

सखियो बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना, और गीत से पहले हम बात कर रहे थे वर्षा जल संचय की। तो अगर हम बारिश के पानी को सहेज लें तो यही पानी हमारे आने वाले समय में बहुत काम आ सकता है। इससे हम अपनी बहुत सी पानी की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, जैसे हम पीने के काम में भी इस पानी को ले सकते हैं, पौधों को सींचने के काम में ले सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। तो इससे हमारी बहुत सी पानी की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं और हम पानी को बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है बहनों, बस हम अपने घर की छत पर या आंगन में गिरने वाले पानी को पाइपलाइन के जरिए टंकी में जमा कर सकते हैं, इसे ज़मीन के अंदर भी पहुंचा सकते हैं, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इससे भूजल के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। पानी की कमी एक बड़ी और विकराल समस्या है आज के समय में, इसलिए पानी की हर बूंद को बचाना, उसे सहेजना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है इस बारिश के मौसम में आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगी और ज़रूर जितना हो सके पानी बचाएंगी, उसे इकट्ठा करेंगी। और इसी अच्छी सी बात के साथ एक अच्छा सा गीत ये रहा आपके लिए।

0: कि आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
4: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
5: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
7: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
7: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
8: अंतराल के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में, और आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी मधुलता पुरोहित आपके साथ। और अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ, कि बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। प्यार वही सच्चा है जिसमें मिलना कोई शर्त नहीं है। लेकिन बहनों, ये सावन तो कुछ कहता है, और क्या कहता है आइए सुनते हैं।

मौसम चाहे कोई भी हो, सबकी अपनी खूबसूरती होती है, सबका अपना महत्व होता है। और वैसे ही हमारी उम्र का भी, चाहे जो भी पड़ाव हो, जो भी दौर हो, खूबसूरत होता है, सुंदर होता है। वो चाहे बचपन हो, युवावस्था हो, या फिर उम्र का वो दौर जब हम अपनी अधिकतर ड्यूटीज पूरी कर चुके होते हैं, जिम्मेदारियां अब उतनी नहीं रहती जितनी पहले थी। चाहे वो सबके साथ तालमेल बैठाना हो, बच्चों की देखभाल हो, या फिर घर की और ऑफिस की दोनों को संभालने की जिम्मेदारी। लेकिन जब आईने में हम अपने आप को देखते हैं तो लगता है जैसे बालों की सफेदी और चेहरे की महीन झुर्रियों में हमारी सुंदरता कहीं खो गई है। हम पहले जितने ऊर्जावान अब नहीं हैं, या अब हमारा समय जैसे निकल गया है, बीत गया है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही होता है? हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे एक और प्यारा सा गीत।

बहनों, हम बात कर रहे थे बढ़ती उम्र के साथ हमारी बदलती सोच की, बदलते विचारों की, और क्या सच में हमारी खूबसूरती कम हो जाती है, इस बात पर हम विचार कर रहे थे। तो बहनों, सच तो ये है कि ढलती उम्र के साथ हमारी सुंदरता का रूप बदल जाता है। चेहरे में जो चमक होती है जो युवावस्था में, उम्र बढ़ने के साथ उसकी जगह एक अलग तरह का जो आत्मविश्वास होता है और गरिमा होती है वो ले लेता है। चेहरे की हर लकीर अपने साथ एक कहानी लेकर आती है। कोई लकीर बच्चों की परवरिश की कहानी कहती है, कोई परिवार के लिए किए गए इतने सारे कामों की और त्याग की कहानी कहती है, तो कोई उन मुश्किलों की जिन्हें पार करके हमने खुद को मजबूत बनाया है और हम यहाँ तक पहुँची हैं। बहनों, सफ़ेद बाल सिर्फ उम्र का संकेत नहीं है, वो हमारे अनुभवों की पहचान होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये कि उम्र के साथ हमें ये समझ आने लगती है कि सुंदर दिखने के लिए हर किसी की पसंद पर खरा उतरना ज़रूरी नहीं है। हम अपने लिए सजते हैं, अपने मन के कपड़े पहनते हैं, अपनी पसंद का रंग चुनते हैं और अपनी खुशी को महत्व देते हैं, और यही आत्मविश्वास चेहरे पर एक अलग चमक लेकर आता है। मैंने उम्र को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उम्र के हर पड़ाव को खूबसूरती से जीना जरूर हमारे हाथ में है। तो बस आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने शौक पूरे कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, और सबसे जरूरी बात, अपने आप को उसी रूप में स्वीकार कीजिए जिस रूप में जिंदगी आपको लेकर आई है। क्योंकि असली सुंदरता सिर्फ चेहरे की चमक में नहीं है, चिकनाई में नहीं है, बल्कि चेहरे की मुस्कान, आंखों की चमक और दिल के सुकून में होती है। तो बस आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंद लीजिए अपने जीवन का। और इसी के साथ एक सुंदर सा गीत आपके लिए ये रहा।

0: और सखियों, अब बारी है एक और छोटे से अंतराल की। अंतराल के बाद फिर से मिलते हैं।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
5: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
6: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
7: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
6: हाँ।
7: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
6: हाँ।
7: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
6: हाँ? पता नहीं।
7: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
8: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
7: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
8: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत, और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत इस बात के साथ कि तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं, किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं, सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं।

बहनों, ऐसे ही सुंदर गीतों और बातों के साथ आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। अपनी सखी मधु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: cultural cooperation in Moscow today. And in Test cricket, India holds strong position against Sri Lanka with 471 runs in the first innings at Colombo. Devdutt Padikkal smashes 117 runs. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: We have about 80 companies.
3: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
2: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
4: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Special Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance. And field demonstrations for maize farmers.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
5: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा

0: बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
3: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
4: PMFME की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOUs साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर

0: हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवस आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत।

0: ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 2:30 हुए हैं। अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे इंसानियत के दुश्मन फिल्म का ये खूबसूरत गाना, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ में इंदीवर का गाना था और संगीत दिया था अनु मलिक ने। तेरी मेहरबानियाँ, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है तेरी मेहरबानियाँ फिल्म से ये गाना। एसएच बिहारी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, सुने।

कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की आवाज़ में आपने तेरी मेहरबानी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा दो गाना सुना, और ये है कार्यक्रम की अगली पेशकश। फिल्म है लाल दुपट्टा मलमल का, आइए सुनते हैं।

लाल दुपट्टा मलमल का इस फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ में।

आप सुन रहे थे लाल दुपट्टा मलमल का, इस फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें थी। ये खूबसूरत गाना लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आनंद मिलिंद का था। और अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में एक और ऐसा ही बहुत प्यारा सा दो गाना। ये फिल्म है हातिम ताई, ये गाना लिखा है हसन कमाल ने और ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।

दोस्तों, आप सुन रहे थे हातिम ताई फिल्म का ये खूबसूरत गाना, और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आइए सुने। ये फिल्म है जीना तेरी गली में। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और देवाशीष दास गुप्ता की। नक्श लाइलपुरी का गाना है और संगीत है बाबुल बोस का। सुने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप

न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त 3 बज चुके हैं। कुछ ही पलों के इंतज़ार के बाद आप सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम। इंतज़ार करें।

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: رضی احمد سے خبریں سنیے۔ کامرس اور صنعت

प्यार का संदेश लाई भर खबर प्यार का संदेश लाई भर

सुन के मत वाले काले।

मंजिल फिल्म का नाम आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में नगमा निगार थे योगेश, मौसीकार थे आर डी बर्मन। और अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में बरसात फिल्म का नगमा, नगमा निगार साहिल, मौसीकार रोशन।

0: सामिन इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत प्रोग्राम कहकशां। आज इस प्रोग्राम में सुनी फिल्म अजी बस शुक्रिया की कहानी और नगमे। इस कहानी को तरतीब दिया है जनाब अनीस अमरोहवी ने।
1: गीता यानी गीता वाली जंगल में टार्जन को पुकारती है। तभी एक नेवला और सांप आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं और एक शेर हाथी से लड़ता हुआ दिखाई देता है। गीता डर जाती है, शेर उसके सामने आ जाता है तो वो वहां से भाग खड़ी होती है। तभी उसे लगता है जैसे टार्जन उसे बचाने के लिए आ रहा है। अचानक बेडरूम में सोती हुई गीता पर बिल्ली कूदती है तो उसका ख्वाब टूट जाता है और वो चीख मार कर जाग जाती है। माँ कमरे में आकर उसे डांटती है और दफ्तर जाने को कहती है। ऊपर के कमरे से चंद्रू यानी जॉनी वॉकर पानी डालता है तो गीता भीग जाती है और वो चंद्रू को डांटती है। गीता ऑफिस के लिए तैयार होने लगती है और उधर चंद्रू भी तैयार होकर बाहर निकलता है। बाहर मकान मालिक में मिल जाता है और दोनों से आज पहली तारीख को तनख्वाह मिलने पर किराया अदा करने को कहता है। चंद्रू बताता है कि वो बटवा कंपनी में काम करता है तो गीता मालूम करती है कि ये कंपनी कहाँ पर है। चंद्रू बताता है कि ये कंपनी पूरे शहर में चलती फिरती है। गीता अपने दफ्तर पहुँचती है तो चंद्रू भी उसके साथ चला जाता है। गीता और चंद्रू दफ्तर के सब लोगों के साथ मिलकर गाना गाते हैं।

थिएटर में काम करने की इजाजत लेने आया है। सेठ जी उसे समझाते हैं कि वो उनका इकलौता बेटा है, इसलिए अपने ही बिजनेस में उसका हाथ बटाए। सुरेश बाप से थिएटर के लिए 10,000 रुपये मांगता है। सेठ जी इस शर्त पर रुपया देता है कि अगर सुरेश नाकाम हुआ तो आइंदा वो सुरेश की मदद नहीं करेगा। वापसी में सुरेश मुंशी जी से गीता का पता लेकर चला जाता है। गीता घर वापस आती है और माँ को बताती है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। माँ नाराज होती है, तभी मालिक मकान आ जाता है, उन्हें घर से निकालने की धमकी देता है। गीता रोती है और अपने हालात बताती है। मालिक मकान का दिल पसीज जाता है और उल्टा वो कुछ रुपए देकर उसकी मदद करता है। सुरेश गीता के घर आता है तो चंद्रू से टकरा जाता है। चंद्रू सुरेश की जेब साफ कर देता है। सुरेश चंद्रू से गीता का पता मालूम करता है और बताता है कि वो गीता को थिएटर कंपनी में काम दिलवाने के लिए आया है। अगले दिन गीता थिएटर कंपनी में काम करने जाती है और प्रेस करते हुए गलती से कपड़े जला देती है। शो के वक्त गीता स्टेज पर आ जाती है और उल्टे सीधे मुकालबे बोलकर शो को खराब कर देती है, मगर अगले ही लम्हे वो स्टेज पर आकर गाना शुरू कर देती है, जिससे शो कामयाब हो जाता है।

गाने के दरमियान कंपनी का मालिक सेठ जी आ जाता है और गीता को अपने कमरे में बुलाकर डांटता है। सेठ जी गीता को नौकरी से निकाल देता है। गीता कमरे से बाहर निकलती है तो सुरेश से टकराती है। सुरेश सेठ जी का लड़का है और अपने बाप से

गाने के बाद सुरेश उसको डांटता है। गीता अपना इस्तीफा टाइप करने लगती है तो चंद्रू उसको मना करता है। गीता कहती है कि जहां इज्जत ना हो वहां नौकरी नहीं करनी चाहिए। चंद्रू उसे समझाता है कि बनिए का हिसाब देना है, मकान का किराया देना है और खुद उसने भी बटवे का काम छोड़ दिया है। अब अगर गीता ने ये नौकरी भी छोड़ दी तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। सुरेश ये सब बातें सुन लेता है और गीता से कहता है कि वो उसे अगले ड्रामे में हीरोइन का चांस देना चाहता है। सुरेश और गीता समुद्र के किनारे जाकर टहलने लगते हैं। दोनों देर तक बातें करते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। सुरेश कहता है कि दिल की प्यास आइसक्रीम से नहीं बुझती। वहीं एक गाने वाली पार्टी आ जाती है और गाना गाती है।

अगले दिन चंद्रू थिएटर के टिकट फरोख करता है और गीता मेकअप रूम में तैयार हो रही है। पहले वाली हीरोइन बहुत गुस्से में है, वो मेकअप के पाउडर में पिसी हुई मिर्च मिला देती है। शो शुरू होता है तो गीता और दूसरे अदाकारों को खूब छींके आती हैं और खुजली होती है। शो खराब हो जाता है और गीता पर डांट पड़ती है, मगर जल्द ही असली बात सबको पता चल जाती है कि गीता थिएटर छोड़कर चली जाती है। सुरेश गीता को ढूंढने आता है तो मकान पर ताला पड़ा हुआ देख गीता, उसकी बाँ और चंद्रू सड़क पर आ जाते हैं और एक गली के बरामदे में पड़े होते हैं। चंद्रू और गीता गाना गाते हैं।

और सलामी ले हम भी दरबार से पाँव हमारे क्यों मुझे कालीन हो दाएं बाएं पीछे नौकर तीन हो

सुबह को चंद्रू नाश्ते का सामान लाता है और गीता को जगाता है। दोनों चाय पीने के दौरान अखबार में एक फिल्म कंपनी का इश्तहार पढ़ते हैं और दोनों कंपनी के दफ्तर पहुंच जाते हैं। सुरेश गीता की तलाश में निकलता है। समुद्र के किनारे गजरा बेचने वाले से गजरा खरीद कर सुरेश एक लड़की की तरफ गीता समझ कर जाता है, मगर वो पहले वाली हीरोइन शम्मी होती है। सुरेश वापस चला जाता है और एक गाने वाले के कोठे पर गाना सुनता है।

सुरेश को इस गाने वाली में गीता नजर आती है, लेकिन जब वो अपने ख्यालों से निकलता है तो वहां से उठकर चला जाता है। स्टूडियो में शूटिंग हो रही है, गीता वहां पहुंचती है। हिदायतकार जानी भाई चंद्रू और गीता को सीन समझाता है। गीता को गुंडे उठाकर कार में ले जाते हैं। सुरेश वहां से गुजरते हुए गीता की चीख सुन लेता है और उनका पीछा करके नकली गुंडों से लड़ता है। हिदायतकार जॉनी भाई सुरेश की बहुत तारीफ करता है और अपने प्रोड्यूसर के पास ले जाता है। वो पहले वाले हीरो राजा बाबू को निकालकर सुरेश को गीता के मुकाबले हीरो लेना चाहता है। सुरेश इनकार करके वापस चला जाता है। गीता उसको रास्ते में रोककर फिल्म में काम करने को कहती है। सुरेश कहता है कि तुम हर वक्त काम की ही बात करती हो। वो चाहता है कि गीता उससे प्यार की बातें करे। सुरेश वहां से चला जाता है। स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड हो रहा है और गीता गाना गा रही है।

गाने के साथ गीता ख्यालों में खो जाती है और अपने आप को सुरेश के साथ तसव्वुर करती है। उधर सुरेश खाना पीना छोड़ देता है, उसे गीता की याद बहुत सता रही है। वो स्टूडियो में फोन करता है मगर फोन जानी भाई के बजाय राजा बाबू उठाता है। वो अपने आप को जानी भाई बताता है और गीता के बारे में कहता है कि वो राजा बाबू के साथ घूमने गई है। सुरेश को बहुत दुख होता है, वो गीता की कुर्बत हासिल करने के लिए फिल्म में भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है मगर उसका बाप इस बात से बहुत खफा है। सुरेश घर छोड़कर चला जाता है। उधर शम्मी और राजा बाबू कहानीकार से मिलकर एक सीन बदलवा देते हैं। सुरेश आता है तो गीता राजा बाबू के साथ मुकालमे याद कर रही होती है मगर कमरे के बाहर सुरेश ये मुकालमे सुनकर गलत फहमी का शिकार हो जाता है और गीता से नाराज होकर वापस चला जाता है। उधर शम्मी भी गीता को गलत फहमी में मुब्तला कर देती है। गीता सुरेश को फोन करती है, मुलाजिम बताता है कि वो तो कल से घर आए ही नहीं। गीता सुरेश की तलाश में स्टूडियो जाती है तो शम्मी उसको सुरेश के खिलाफ भड़काती है। गीता गुस्से में रोने लगती है। जानी भाई आकर उसको समझाता है। शूटिंग शुरू होती है तो गीता गाना गाती है।

उदाहरण सुरेश शराब पीता है और गीता की फिल्म अजी बस शुक्रिया का पोस्टर फाड़ देता है। सुरेश का एक दोस्त उसको थिएटर में ले जाने के लिए आता है और गीता को भूल जाने के लिए कहता है। सुरेश कहता है कि आज गीता की फिल्म का प्रीमियर है, वो वहां जाएगा। हाल पर बहुत रश होता है, गीता कार से उतरकर भीड़ में जाती है तो लोग उससे ऑटोग्राफ लेते हैं। सुरेश भी जेब में से एक नोट निकालकर गीता से ऑटोग्राफ लेता है। गीता बगैर देखे ही ऑटोग्राफ देती है। भीड़ में हलचल से सुरेश गिर जाता है और उसको चोट लगती है। उसका दोस्त उसे उठाकर वहां से ले जाता है। एक फकीर मांगने आता है तो सुरेश ऑटोग्राफ वाला नोट उसे दे देता है। दोस्त पूछता है कि तुमने ये क्या किया, तो सुरेश कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत को खैरात में बांट रहा हूं। उधर गीता और यूनिट के सारे लोग हॉल में गीता की फिल्म देख रहे हैं। फिल्म की बड़ी तारीफ होती है। गीता के पास बहुत से खत और गुलदस्ते आते हैं। जॉनी भाई आकर बताते हैं कि बहुत से लोग गीता से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक साबुन कंपनी का मालिक गीता की फोटो अपने इश्तहार के लिए हासिल करना चाहता है। एक दांतों के पाउडर वाला भी इश्तहार के लिए फोटो खिंचवाता है। जमालिस्तान के कहानीकार, हिदायतकार और अदाकार जमाल अलाहाबादी अपनी नई फिल्म के लिए गीता को साइन करने आते हैं और 50,000 रुपए एडवांस देते हैं। गीता सुरेश के बाप से आकर मिलती है और सुरेश के बारे में मालूम करती है। बाप कहता है कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ फिल्म में काम करने गया है, इसलिए उसे घर छोड़ना पड़ा। गीता सेठ जी की तरफ से सुरेश के गुमशुदगी और वापसी के लिए अखबार में इश्तहार देती है। सुरेश एक आइसक्रीम बेचने वाला भैया के पास आइसक्रीम बेचने का काम शुरू करता है। भैया जो अखबार लाकर रखता है उसमें सुरेश की फोटो देखकर कहता है कि यह आदमी मिल जाता तो बहुत बड़ा इनाम उसको मिलता। सुरेश कहता है कि यह आदमी अब कभी नहीं मिलेगा क्योंकि इसको एक फिल्म एक्ट्रेस ने मार डाला। गीता अपने दोस्तों के साथ

आते हुए गीता की गाड़ी खराब हो जाती है, वो गैराज जाती है, तो उसका मालिक दूसरी गाड़ी में गीता को घर भिजवाता है। सुरेश भी इसी गैराज में काम करता है। गीता को पहुंचाने के लिए सुरेश को ही भेजा जाता है। वो गीता से नफरत करने लगा है, इसीलिए रास्ते में ही एक्सीडेंट करके उसे मारना चाहता है, मगर वो बच जाती है और सुरेश को भी होश आ जाता है। घर पहुंचकर गीता दूसरी गाड़ी में शूटिंग के लिए चली जाती है। सुरेश गीता के घर में जा बजा अपनी तस्वीरें लगी देखता है तो उसे गीता की मोहब्बत का एहसास होता है। वो स्टूडियो जाता है तो वहां राजा बाबू और शम्मी के दरमियान हो रही बातें सुन लेता है। राजा बाबू बताता है कि गीता का आज आखिरी दिन है, रस्सी टूटते ही गीता खाई में गिर कर मर जाएगी और फिर अगले रोज शम्मी हीरोइन और राजा बाबू फिल्म के हीरो बन जाएंगे। गीता पुल पर चलना शुरू करती है, विलन राजा बाबू उस पर नकली गोलियां चलाता है, पुल की रस्सी टूट जाती है और गीता उसमें लटक जाती है। तभी सुरेश और चंद्रू वहां पहुंच जाते हैं और पुल की रस्सी पकड़ लेते हैं। गीता लटकते हुए किनारे की तरफ वापस आ जाती है। सुरेश और राजा बाबू में लड़ाई होती है, सुरेश राजा बाबू को मारकर गीता को बचा लेता है। पुलिस आकर राजा बाबू को गिरफ्तार कर लेती है। गीता की जिंदगी बचाने के लिए फिल्म की पूरी यूनिट सुरेश का शुक्रिया अदा करती है। गीता कहती है कि सुरेश को घर जाकर अपने बाप से माफी मांगनी चाहिए। सुरेश और गीता जाने लगते हैं और चंद्रू कहता है

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे अनुरोध फिल्म का नगमा। नगमानिकार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने लीजिए अब सुनिए अनामिका फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, नगमानिकार मजू सुल्तानपुरी, मौसीकार आर डी बर्मन।

प्रोग्राम की अगली पेशकश 1942 वाला स्टोरी फिल्म का नगमा, आवाज हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। इस नगमे को कलमबंद किया है जावेद अख्तर ने और मौसीकी सजाया है आर डी।

अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज़ में आप सुन रहे थे खामोशी फिल्म का नगमा। प्रोग्राम की अगली पेशकश छोटी सी मुलाकात फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है शंकर जयकिशन ने, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

राजा और रंग फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में, मौसीकार थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामईन के लिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा है गीत, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। उन्होंने ये बात भारत और जापान के कारोबारी नुमाइंदों से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग और मस्नूई जहानत जैसे शोबों में भारत में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि इक्तसादी ताल्लुकात से भारत और जापान के दरमियान मुतवाजन तजारत कायम होनी चाहिए। जनाब गोयल जापान में 200 से ज्यादा कारोबारी नुमाइंदों के एक बड़े वफ्द की क्यादत कर रहे हैं ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी के रिश्तों को मजीद फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के अव्वल नायब वजीर आजम डेनिस बोंतुरोव के साथ तजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में ताउन से मुतालिक 27वीं भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। जनाब एस जयशंकर रूस के अपने हम मनसब सरजे लावरोव के साथ भी मीटिंग करेंगे और इलाकाई बैन अलाक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत और खलीजी ताउन कौंसिल GCC ने दोनों फरीकों के दरमियान इश्तराक के बारे में तबादला ख्याल किया, जिसमें आज़ाद तजारती समझौते FTA से मुतालिक बातचीत भी शामिल है। ये बातचीत सऊदी अरब में भारत के सफीर जनाब विपुल और GCC के सेक्रेटरी जनरल जसीम मोहम्मद के दरमियान एक मीटिंग के दौरान हुई। दोनों फरीकों ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। भारत और GCC ने फरवरी में भारत GCC आज़ाद तजारती समझौते के लिए बातचीत शुरू करने के मकासद और गुंजाइश के बारे में दस्तखत किए थे। GCC का क़याम 1981 में रियाज में अमल में आया था। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। भारत और GCC मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हालिया बरसों में मुख्तलिफ शोबों में मुस्तहकम हुए हैं। इनमें तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सेहत, टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले शामिल हैं। खुराक को डब्बाबंद करने की सनतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा है कि PMFME स्कीम से अब तक 2 लाख से ज्यादा खुराक को डब्बाबंद करने से मुतालिक बहुत छोटे इदारों को फायदा हुआ है। आज नई दिल्ली में PMFME कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि कुल मुस्तफिदीन में से तकरीबन 80% पहले सिलसिले के एंटरप्रेन्योर हैं और इनमें से 44% ख्वातीन हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में इस स्कीम का आगाज हुआ था और इसने 10 लाख बराह रास्त रोजगार फराहम किए। 2 रोज़ा PMFME कॉन्क्लेव में एंटरप्रेन्योर माहिरीन और मुतालिका फरीक शिरकत कर रहे हैं ताकि खुराक को डब्बा बंद करने के शोबे में इख्तरा मालूमात के तबादले और तरक्की को फरोग दिया जा सके। सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से 400 से ज़्यादा शुरका इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने वजाहत की है कि H1N1, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, इसकी नई किस्म की निशानदेही नहीं हुई है, लिहाजा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौंसिल ने यकीन दिलाया है कि मौजूदा वैक्सीन अब भी मौसर है। ICMR के सीनियर साइंसदानों के मुताबिक ये वायरस साल 2025 से गर्दिश में है। ICMR के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा बशमूल H1N1 ज़्यादातर खुद को महदूद रखते हैं। बुखार, खांसी, सरदर्द और जिस्म में दर्द इसकी आम अलामत हैं और ज़्यादातर लोग मुनासिब देखभाल और आराम से सेहतयाब हो जाते हैं। तिब्बी इदारे ने कहा है कि नौउम्र बच्चे, बुजुर्ग अफराद और ऐसे अफराद जो तिब्बी पेचीदगियों का शिकार हैं, उन्हें इस वायरस से ज़्यादा ख़तरा लाहिक हो सकता है। अगर अलामत जारी रहती हैं या मजीद अबतर या शदीद हो जाती हैं तो बरवक्त डॉक्टर से रुजू करने की हिदायत दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और झारखंड हुकूमत को एक उजरदारी पर नोटिस जारी किए हैं, जिसमें झारखंड मुश्तरका सिविल सर्विसेज इब्तदाई इम्तहानात में मुबैना गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल के सिलसिले में CBI की जानिब से एक गैर जानिबदाराना और मुकर्रर मुद्दत में तहकीकात की बात कही गई है। चीफ जस्टिस

0: चंद्रकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकजी सरकार, झारखंड हुकूमत, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर से जवाब तलब किया है। इस दरख्वास्त में तहकीकात को रियासत से सीबीआई को सौंपे जाने की बात कही गई है ताकि सरकारी अहलकारों और इम्तिहानात से मुतालिक एजेंसियों के मामले में बगैर भेदभाव के तहकीकात को यकीनी बनाया जा सके। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले मजाज मुल्कों के जहाजों को अब तेहरान को सर्विस फीस अदा करनी होगी। ईरान के कौमी सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रेजेल ने बताया है कि ये फीस बहरी माहौलियाती और लॉजिस्टिकल शकों का इहाता करेगी। सरकारी नशरिए के मुताबिक तर्जुमान ने मजीद बताया कि अदायगी का तरीक़ाकार नर्म वाली शर्तों के साथ डिज़ाइन किया गया है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रेजेल ने बताया कि आबनाए हुरमुस बंद है और उस वक्त तक दोबारा नहीं खोला जाएगा जब तक कि अमरीका अपने वादों को पूरा नहीं करता और ईरान और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाता। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तासर देते हुए कि आबनाए हुरमुस अमरीका का नया इलाका है, इस आबी गुजरगाह पर अमरीकी कंट्रोल का दावा दोहराया है। भारत चीन सरहदी सवाल पर कल चीन में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत का 25वां दौर होगा। कौमी सलामती के मुशीर और भारत चीन सरहदी सवाल पर भारत के खसूसी नुमाइंदे अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग यी इसमें शिरकत करेंगे। शतरंज में भारत के 19 साल के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम हंगरी के शहर में पुरवकार कानिजा ओपन 2026 में चैंपियन के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के नतीजे में ग्रुप ए का खिताब हासिल किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 75% आलमी तजारत का इहाता करने की खातिर मजीद 8 से 9 मुल्कों के ग्रुपों के साथ आज़ाद तजारती मुआहदों पर बातचीत कर रहा है। भारत और खलीजी ताउन काउंसिल ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया है और ईरान ने आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस फीस आयद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात भी इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर आते हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों। सोचिए, एक तरफ हाथ में मोबाइल की स्क्रीन है, दूसरी तरफ किताब का एक पन्ना। एक तरफ दुनिया आपकी उंगलियों के इशारे पर है और दूसरी तरफ जीवन की असली परीक्षा आपके फैसलों से होती है। तकनीक हमें गति देती है, लेकिन दिशा कौन देगा? सफलता हमें पहचान दे सकती है, लेकिन सफलता को संभालने का संयम कौन देगा? और मुश्किलें हमें रोक सकती हैं, लेकिन उन्हीं मुश्किलों के बीच आगे बढ़ना कौन सिखाएगा? इन्हीं सवालों के साथ आपका अपना कार्यक्रम युवाणी लेकर मैं हाजिर हूं, पुष्पेंद्र। आकाशवाणी सूरतगढ़ से जुड़े रहिए, क्योंकि आज की युवाणी में हम बात करेंगे उन विषयों की जो सिर्फ युवाओं की जिंदगी से जुड़े नहीं है, बल्कि उनके भविष्य की दिशा तय करते हैं। आज के हमारे विषय रहेंगे युवा जीवन में संयम, मौलिक कर्तव्य, जीवन में संघर्ष का महत्व और साथ में आज का इतिहास। और कार्यक्रम के

विशेष रूप में आज हम आपको एक विशेष और बेहद प्रासंगिक भेंट वार्ता सुनवाएंगे। स्क्रीन बनाम स्कूल, बदलती तकनीक के साथ पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता। इस महत्वपूर्ण विषय पर शिक्षाविद प्रवीण भाटिया से बातचीत करेंगे कार्यक्रम प्रमुख नवीन सिसोदिया। तो आज की युवाणी में ज्ञान भी होगा, विचार भी होंगे, इतिहास भी होगा और भविष्य की शिक्षा पर गंभीर मंथन भी। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
8: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
9: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
10: युवा अवस्था, दोस्तों उम्र का वह दौर है जब सपने सबसे बड़े होते हैं, और इसी युवा अवस्था में ऊर्जा सबसे अधिक होती है।

और संभावनाएं बहुत सारी दिखाई देती हैं। लेकिन इसी दौर में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, वो है संयम। संयम का अर्थ ये नहीं कि युवा अपनी इच्छाओं को दबा दे। संयम का अर्थ है क्या करना है, कितना करना है, कब करना है और कब रुक जाना है, इसका विवेक। आज सोशल मीडिया पर कुछ मिनट बिताने के लिए मोबाइल उठाते हैं और पता चलता है कि एक घंटा बीत चुका है। गुस्सा कुछ सेकंड का होता है लेकिन उसका परिणाम कई वर्षों तक रह सकता है। एक गलत निर्णय जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसीलिए युवा शक्ति को केवल ऊर्जा नहीं, अनुशासन और संयम की भी जरूरत है। संयम भोजन में हो, वाणी में हो, क्रोध में हो, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में हो, समय के उपयोग में हो और सबसे बढ़कर अपने निर्णय में हो। याद रखिए, जिस युवा ने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया, उसने अपनी जिंदगी की दिशा अपने हाथ में ले ली है।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
7: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
8: RBI कहता है, OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
9: दोस्तों, एक समय था जब बच्चे स्कूल की घंटी का इंतजार करते थे, ब्लैकबोर्ड पर लिखे अक्षरों को कॉपी में उतारते थे। शिक्षक की आवाज ही ज्ञान का सबसे बड़ा माध्यम होती थी। फिर आया कंप्यूटर, फिर इंटरनेट, फिर स्मार्टफोन और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एक बच्चा दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी एक सेकंड में हासिल कर सकता है। क्या आने वाले समय में स्कूल की पारंपरिक व्यवस्था बदल जाएगी? क्या शिक्षक की भूमिका कम हो जाएगी? क्या किताबों और ब्लैकबोर्ड की जगह पूरी तरह स्क्रीन ले लेगी? या फिर तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, शिक्षा में शिक्षक, सहपाठी, अनुशासन, संवाद और विद्यालय का वातावरण अपनी जगह बनाए रखेंगे? यही आज का हमारा बेहद महत्वपूर्ण विषय है, स्क्रीन बनाम स्कूल, बदलती तकनीक के साथ पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता। और इसी विषय पर विचार साझा करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद प्रवीण भाटिया, और उनसे इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे नवीन सिसोदिया। तो आइए सुनते हैं यह विशेष भेंट वार्ता।
10: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, शिक्षा केवल किताबें पढ़ना, परीक्षाएं, डिग्रियों तक ही सीमित नहीं होती है। यह व्यक्ति के सोचने, समझने, निर्णय लेने और जीवन को सही दिशा देने में बहुत बड़ा योगदान रखती है। विद्यार्थी जीवन में रखी गई छोटी छोटी

0: आदतें और मूल्य आगे चलकर न केवल एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। आज जब शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, विद्यार्थियों के सामने नई संभावनाओं के साथ साथ अनेक चुनौतियां भी हैं। प्रतिस्पर्धा, तकनीक, सोशल मीडिया, कैरियर का दबाव और बदलते सामाजिक मूल्य, इन सब महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इसी के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रवीण भाटिया जी। आप शिक्षाविद हैं और इनका शिक्षा के क्षेत्र में लंबा और व्यापक अनुभव रहा है। विशेष कार्यक्रम अगर हम मूल्यों की बात करें तो शिक्षा के साथ मूल्यों का समावेशन किस प्रकार किया जाता है, इस पर इन्होंने काफी काम किया है। सबसे पहले प्रवीण जी, आपका आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और शिक्षा का स्वरूप जो है पिछले कुछ सालों में हम अगर कहें तो काफी बदला भी है। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप अपने व्यापक अनुभव से हमारे श्रोताओं को बताइए कि शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए।
1: शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि जिससे एक व्यक्ति मानवता की ओर अग्रसर हो, यानी कि वो इतना सक्षम हो जाए कि अपने आसपास के क्षेत्र यानी कि मनुष्य को सुखी, समृद्ध और अच्छा बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सके।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो एक अच्छा नागरिक बन पाए, अच्छा मनुष्य बन पाए। लेकिन समय के साथ जो शिक्षा का स्वरूप है उसमें काफी परिवर्तन हुआ है, विद्यार्थियों की सोच में भी बहुत परिवर्तन आया है। आज का जो विद्यार्थी है और कुछ दशक पहले का जो विद्यार्थी था उसमें आप क्या बड़ा अंतर देखते
1: हैं? मुख्य रूप से मैं यदि विद्यार्थियों में अंतर की बात करूं तो वो अंतर है श्रद्धा का।
0: जी,
1: मैं महसूस करता हूं कि पहले जो विद्यार्थी थे वो बहुत ही श्रद्धावान होते थे और भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कहा जाता है श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम, उसका अक्षरक्ष पालन करते थे।
0: जी,
1: लेकिन वर्तमान में जबकि सोशल मीडिया का दौर है, स्रोतों का आधिक्य हो चुका है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा में कमी आई है।
0: जी बिल्कुल, आपने श्रद्धा की बात की तो क्या विद्यार्थी जीवन में श्रद्धा का महत्व क्या है? क्या एक विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी होने के लिए श्रद्धा होना आवश्यक है?
1: जी, मेरा ये मानना है कि एक विद्यार्थी यदि लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए तीन चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: जी,
1: मैं इसे TPW के फार्मूले के रूप में संबोधित करता हूं।
0: टी
1: का मतलब है टारगेट, अर्थात एक व्यक्ति अपना लक्ष्य फिक्स करे।
0: जी,
1: तत्पश्चात पी अर्थात प्लानिंग, योजना। योजना निर्माण किसी संस्थान या किसी गुरु का काम होता है और योजना का इम्प्लीमेंटेशन W वर्क अर्थात मेहनत के रूप में विद्यार्थी करता है। जब तक विद्यार्थी की अपने गुरु, अपने संस्थान के द्वारा बनाई गई योजना में श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा और जब तक क्रियान्विति नहीं होगी तब तक वो लक्ष्य को हासिल नहीं कर।
0: जी, आपका यही कहना है कि अगर वो पूर्ण रूप से विश्वास और श्रद्धा अपने गुरु पर नहीं रखेगा तो वो गुरु के ज्ञान को आत्मसात भी नहीं कर पाएगा।
1: बिल्कुल, ये मेरा मानना है।
0: जी, आज जो सूचना और ज्ञान के जो अनेक स्रोत हैं वो विद्यार्थियों के पास है, ऐसे में शिक्षक की भूमिका भी बदली है। ऑनलाइन शिक्षा की बात करें, हम पॉडकास्ट की बात करें, बुक्स का जो चलन है उसमें परिवर्तन आया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी बिल्कुल, समय के साथ साथ परिवर्तन आना स्वाभाविक भी है, लेकिन हर परिवर्तन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं।
0: जी,
1: यदि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर्स के संदर्भ में मैं बात करूं तो बकायदा माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सदैव ये कहा गया है कि मूल पुस्तकें पढ़ें, हार्ड कॉपीज में पढ़ें और उनका गहराई से अध्ययन करें, तथ्यों के साथ साथ अपने भीतर संप्रत्यय और विश्लेषण क्षमता को भी विकसित करें।
0: जी बिल्कुल,
1: लेकिन सूचना के इस दौर में विद्यार्थी थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटक रहा है, तो मुझे लगता है कि यदि विद्यार्थी किसी एक गुरु, एक संस्थान में विश्वास करके, श्रद्धा रखकर कार्य करता है तो वो निसंदेह सफलता प्राप्त करता है और निसंदेह सभी संस्थान अच्छे होते हैं।
0: जी बिल्कुल, संस्थान सभी अच्छे हैं, चाहे वो किसी भी संस्थान के पास पढ़े लेकिन श्रद्धा के साथ पढ़े। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि हार्ड बुक्स की आपने बात की, हार्ड कॉपी में अगर पढ़ने की बात की, वो अगर हम डिजिटल से कंपेयर करें तो वो कौन सी इसमें बेहतर मानेंगे आप?
1: देखिए, मैं परंपरागत शिक्षण प्रणाली में बहुत ही विश्वास रखता हूँ और मुझे ये लगता है कि शिक्षा का जो ऑनलाइन माध्यम है वो आपद धर्म

0: की तरह है। यदि आप बिल्कुल सामने किसी गुरु को नहीं रख पा रहे हैं, आपकी परिस्थिति ऐसी है, आप किसी दूरस्थ क्षेत्र में हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन संसाधन हो सकता है। या कोई ऐसा विषय बिंदु है जिसे आपने गहराई से आत्मसात करना है, तो आप एक विशेषज्ञ के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। नो डाउट ऑनलाइन ने हमें बहुत सारी सहूलियतें उपलब्ध करवाई हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन अगर आपके पास संसाधन हैं, आपके पास कोई संस्थान या अध्यापक है जो प्रत्यक्ष बैठकर आपको शिक्षा दे, मार्गदर्शन दे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि ऑनलाइन के माध्यम से व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्यों को विकसित करना या अनुशासन को डेवलप करना एक बहुत ही जटिल सा कार्य है। मैं असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन जटिल, चुनौतीपूर्ण अवश्य कहूंगा।
1: जी सर, आपने अभी जिक्र किया नैतिक मूल्यों की, आपने बात की, तो विद्यार्थी जीवन में हम देखते हैं कि किसी भी इंसान के जो जीवन का महत्वपूर्ण काल है वो विद्यार्थी जीवन होता है। आपके विचार से इस काल में विद्यार्थी में कौन कौन सी मूल आदतें या हम कहें मूल्यों की जो नींव है वो रखी जा सकती है?
0: मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षण पद्धति में गुरुकुल व्यवस्था थी।
1: जी,
0: एक आश्रम होता था गुरु का, और वहां पर प्रत्येक व्यक्ति या विद्यार्थी उपनयन के पश्चात जाकर अध्ययन करता था। प्रातःकाल उठना और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, और तत्पश्चात गुरु के सानिध्य में विद्या अध्ययन करना, रात्रि समय पर सोना, निसंदेह एक विद्यार्थी को सक्षम और शक्तिशाली बनाते थे। फिर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय परंपरा में आश्रम व्यवस्था रही, और इसमें जो पहला आश्रम होता था वो ब्रह्मचर्य था। अर्थात उस समय में विद्यार्थी को पूर्णतया ज्ञान और रोजगार तथा अन्य जो भविष्य की आवश्यकताएं, जरूरतें उसे पढ़ने वाली होती हैं, उसके लिए उसे तैयार किया जाता था।
1: जी।
0: तो मुझे लगता है कि उन्हीं नियमों का पालन बदले हुए स्वरूप में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक विद्यार्थी को करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। हम अगर बात करें मूल्यों की, जैसा आपने बताया कि पुरानी हमारी जो परंपराएं थी उसमें आश्रम व्यवस्था थी, उसको आज जैसा आपने जिक्र किया नई पीढ़ी के अनुसार ढाला जाए, क्या बदलाव किए जा सकते हैं मूल्यों को नई पीढ़ी में स्थापित करने के लिए?
0: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उपदेश निसंदेह एक व्यक्ति को, समाज को दिशा निर्देशित करते हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि उपदेशों के साथ साथ जो अग्रणी व्यक्ति होते हैं, समाज में, राष्ट्र में भूमिका अदा कर रहे हैं, या शिक्षक गण हैं, उन्हें अपने कार्यों के माध्यम से भी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक को, अगर कन्फ्यूशियस की भाषा में कहूं तो तुसुंजी होना चाहिए, यानी कि वो अपने कामों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरित करे। या शिक्षक से आशय, चूंकि मैं शिक्षक हूं इसलिए कह रहा हूं, बाकी प्रत्येक बड़े व्यक्ति को अपने कार्यों के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं या जो युवा हैं उनको प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। खाली उपदेशों का ही महत्व है ये मैं नहीं मानता।
1: जी, उपदेश तो हम कहीं पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अगर हम अपना आदर्श मानकर उस पर काम करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा।
0: जी,
1: आपने जिस प्रकार बताया कि बड़ों को हम अपना आदर्श माने और उनके पद चिन्हों पर चलें, तो क्या ये ऐसा भी संभव है कि हम हमारे समान उम्र के व्यक्ति को भी अपना आदर्श मान सकते हैं, या हम हमसे छोटी उम्र के भी किसी व्यक्ति से कुछ सीख सकते हैं?
0: बिल्कुल, हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान में कोई उम्र बाधा नहीं होती। कई बार एक शिक्षक को या एक अनुभवी व्यक्ति को भी अपने से छोटे से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो व्यक्ति को लेना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। आज हम बात करते हैं विद्यार्थियों के सामने जो चुनौतियां आती है, प्रतिस्पर्धा है, परीक्षा है, करियर है, भविष्य को लेकर दबाव रहता है, और कंपटीशन जो है वो दिन ब दिन टफ भी हो रहा है, क्योंकि संख्या बढ़ रही है। जो लोग पहले परीक्षा देते थे उनकी संख्या में आज बढ़ोतरी हुई है। ऐसे वातावरण में सफलता की तैयारी करने के लिए अपने जीवन में संतुलन एक विद्यार्थी किस प्रकार बनाए?
0: जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा देने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है ऐसा मुझे नहीं लगता है।
1: जी।
0: इसका मूल कारण ये है कि वर्तमान में स्रोतों की अधिकता के कारण अनेक विद्यार्थी भटकाव के दौर में है। तो जिसे गुरु का सानिध्य मिल जाता है वो एक सही दिशा में काम करते हुए अंततः सफलता प्राप्त कर लेता है। हाँ, थोड़ा सा मुझे ये लगता है

0: है कि वर्तमान में जो विद्यार्थी है वो शॉर्टकट की तलाश में है। और मैं ये भी मानता हूं कि आप कुछ भी बनना चाहें, आप लेखक बनना चाहें, खिलाड़ी बनना चाहें, शिक्षक बनना चाहें, अभिनेता बनना चाहें, राजनेता बनना चाहें, किसी भी क्षेत्र में आप करना चाहें, शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं होती है। दबाव के दौर से व्यक्ति को गुजरना ही पड़ेगा और ऐसे में अपने आप को मजबूत रखें। लेकिन फिर भी अगर दबाव उत्पन्न होता है तो आप अपने माता-पिता और अपने अध्यापक से उसे शेयर करें। कई बार मैं ये देखता हूं कि विद्यार्थी मेरे पास आते हैं और जो समस्या वो सामने रखते हैं वो इतनी छोटी होती है कि उस बिंदु को लेकर दबाव लेने की कतई आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आप दबाव में हैं, किसी भी प्रकार के तनाव में हैं, तो उसे अपने गुरु के समक्ष अवश्य रखें।
1: बिल्कुल, हर विद्यार्थी यही चाहता है कि वो अपने स्तर पर सबसे अच्छा करे।
0: जी
1: लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर हम बात करें तो सीट्स जो होती है वो लिमिटेड होती है
0: जी
1: और उसमें जो उपस्थित होते हैं छात्र
0: जी
1: उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है।
0: जी
1: इस स्थिति में असफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी सफल होने वालों की तुलना में काफी

0: जी बिल्कुल,
1: असफलता जो है वो विद्यार्थी जीवन में एक स्वाभाविक हिस्सा है। उस स्थिति में विद्यार्थी उसको कैसे देखे, किस प्रकार उससे निपटे, नए ऑप्शंस की तरफ जाए या फिर अपने आप को उससे कैसे उबारे?
0: मुझे लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्यक्ष रूप से किसी एक्सपर्ट से इस चीज का ओपिनियन अवश्य लेना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र का 20-25 साल का अनुभव हो, आप उस पर पूरी तरह से फेथ कर सकते हैं। अगर आप असफल हो रहे हैं तो आप ये देखें कि पिछले पेपर में आपकी क्या कमी थी और उस कमी को दूर करें।
1: जी,
0: एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी होती है कि लक्ष्य निर्धारित करते समय भी आपको एक अनुभवी व्यक्ति की राय अवश्य लेनी चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति बड़े से बड़ा टारगेट अचीव कर सकता है
1: जी।
0: लेकिन मैं ये देखता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग परिस्थिति है, तो कोई विद्यार्थी डायरेक्ट उस लक्ष्य को भेद सकता है और किसी विद्यार्थी को परिस्थिति के कारण सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना होता है। यहाँ परिस्थिति से मेरा आशय आर्थिक परिस्थिति से भी है, सामाजिक परिस्थिति से भी है और हर बच्चे का अपना अपना IQ लेवल है उससे भी है।
1: आपने जिस प्रकार बात की कि लक्ष्य निर्धारण जो है वो विद्यार्थी को अपने जीवन में पहले करना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करते समय एक विद्यार्थी यदि कोई कक्षा 12 जिसने पास की है या फिर अभी ग्रेजुएट हुआ है, किन बातों का ध्यान रखे, किस प्रकार वो निर्णय ले कि मैं आज क्या करूंगा?
0: जी, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले विद्यार्थी को ये देखना चाहिए कि उसकी 10वीं और 12वीं का अंक प्रतिशत क्या है। इसके अतिरिक्त तो उसे देखना चाहिए कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है और कितने लंबे समय तक वो उसका आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक स्थिति भी आपको देखनी पड़ती है कि आप महिला हैं या पुरुष हैं। जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो जल्दी से जल्दी टारगेट अचीव कर लें और हम उनके विवाह आदि करके और अपने दायित्व से मुक्त हों। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं, विद्यार्थी का IQ, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां, जिन्हें लक्ष्य निर्धारण के समय अवश्य देखना चाहिए और समझना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, अगर एक लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो उस पर काम करना ज्यादा आसान होगा, इसके बजाय कि आप भटकते रहें।
0: जी,
1: हम देखते हैं कि आप भी अक्सर बात करते हैं देश प्रेम के बारे में, विद्यार्थियों में, विद्यार्थी जीवन में ही देश प्रेम की भावनाओं को आप किस प्रकार देखते
0: हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर मैं हमारे संस्थान की बात करूं तो उसमें मुख्य द्वार पर ही 4 बिंदु लगे हुए हैं, जिसमें पहला बिंदु है संस्कार, अर्थात हर विद्यार्थी को संस्कारित होना चाहिए। दूसरा बिंदु है रोजगार, यानी कि अगर विद्यार्थी संस्कारित होगा तो वो रोजगार प्राप्त कर लेगा और रोजगार प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी को राष्ट्रवाद, अर्थात उसे जो दायित्व उसकी ड्यूटी के माध्यम से प्राप्त हुआ है उसे पूर्ण करना है। ये राष्ट्रवाद है, ये देशभक्ति है, अगर आप अपने व्यवसायिक दायित्व को पूरी निष्ठा से पूर्ण कर रहे हैं। और चौथी बात है लोकहितवाद, इसके बाद जो समय बचे उसे आप जन कल्याण के कार्यों में भी अवश्य लगाइए।
1: जी बिल्कुल, एक राष्ट्र के प्रति जो विद्यार्थी की जिम्मेदारी है वो इन चारों बिंदुओं में आपने समेटी है कि अगर वो इन सब बिंदुओं का पालन करता है तो राष्ट्र के प्रति वो अपने सभी कर्तव्य पूर्ण करता है।
0: ना सिर्फ राष्ट्र के प्रति बल्कि एक व्यक्ति होने के नाते स्वयं के प्रति कर्तव्य, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य और समाज के साथ साथ राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को भी पूर्ण कर लेता है।
1: जी बिल्कुल, एक विद्यार्थी के जीवन में जितना महत्वपूर्ण रोल खुद विद्यार्थी का है उतना ही हम देखते हैं शिक्षक का भी होता है।
0: जी जी,
1: कई बार शिक्षक अपनी बात विद्यार्थी तक किस प्रकार पहुंचाते हैं, ये उसको समझाने में सक्षम हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। शिक्षकों के लिए आपका क्या संदेश है कि वो विद्यार्थियों को किस प्रकार ट्रीट करें, किस प्रकार समझाएं और कौन से मूल्यों का किस विधि द्वारा बच्चों में स्थापन करें?
0: जी, मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक के अंदर 3 बड़ी योग्यताएं होनी चाहिए। पहली है ज्ञान, दूसरी है संप्रेषण और तीसरी है चरित्र।
1: जी,
0: ज्ञान और संप्रेषण के माध्यम से ही एक शिक्षक विद्यार्थी को बेहतरीन तरीके से तथ्यों और मूल्यों को प्रेषित कर सकता है।
1: जी,
0: और अपने चरित्र के माध्यम से वो विद्यार्थी में नैतिक मूल्यों का समावेश कर सकता है। तो ये 3 बिंदु अगर एक शिक्षक पालन करता है तो वो उसके लिए लाभदायक है। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे कि हम लोग हमारे विद्यार्थियों विद्यार्थियों से कुछ कार्य अवश्य करवाते हैं, जैसे रक्तदान है
1: जी,

0: इसके अतिरिक्त राजकीय चिकित्सालय की सफाई है, इसके अतिरिक्त कभी जरूरतमंदों की सेवा है, और एक बिंदु पर साथ में अवश्य कार्य करते हैं कि विद्यार्थी अपने हस्तलेख को सुधारें और साहित्य का अध्ययन करें।
1: अध्ययन का आपने जिक्र किया, तो विद्यार्थी जीवन में तो जो अपने कंपटीशन से रिलेटेड किताबें हैं उनसे भी वो कई बार फुर्सत नहीं मिल पाती, तो क्या अन्य साहित्य का अध्ययन इस समय करना चाहिए?
0: मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं
1: जी।
0: विद्यार्थी को जो उसकी लक्ष्य केंद्रित पुस्तकें हैं उनके साथ साथ अपने स्वास्थ्य और साहित्य अध्ययन, इन दोनों पर अवश्य फोकस करना चाहिए, क्योंकि तभी, जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा, कि वो एक सच्चा मानवतावादी बन सकता है
1: जी। आज के समय में जो डिजिटल नशा है, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, सेलफोन है, इसकी लत हम देख रहे हैं कि आज के जो जनरेशन है, जो विद्यार्थी जीवन में है, उनमें काफी ज्यादा है
0: जी।
1: अपना अधिकतम समय युवा जो है वो मोबाइल पर बिताते हैं, चाहे वो रील्स देखना हो, वीडियोस देखना हो, और इसको अपने करियर के रूप में चुनने का भी वो कई बार निर्णय करते हैं
0: जी।
1: इन सब बातों को आप किस तरह देखते हैं, और उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इससे दूर रहें या ना रहें, या ये भी करियर के रूप में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है?
0: देखिए, मैं जो डिजिटल माध्यम है उनको करियर के रूप में एक अच्छा ऑप्शन मानता हूँ। जो डिजिटल क्रिएटर हैं, कई लोग बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी डिजिटल कंटेंट का निर्माण कर रहे हैं उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि उनके कंटेंट में बौद्धिकता और नैतिकता दोनों समावेशित रहें, तो वो सोसाइटी के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। तो करियर के रूप में इसे चुनना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं डिजिटल माध्यम की अपेक्षा जो पुस्तकीय माध्यम है, जो परंपरागत भारतीय तौर तरीके हैं अध्ययन के, उन्हें ज्यादा बेहतर मानता हूं। और बेहतर होगा कि आप अपने एंड्रॉइड फोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख दें और उसके बाद आराम से बैठकर हार्ड कॉपी में पढ़ें।
1: सर, जैसे आपने बात की पढ़ाई के दौरान नोट्स बनाएं या तैयारी करें, किताबों को लेकर आएं, इसके साथ ही हम बात करते हैं, विद्यार्थी अगर अपने जीवन में याद करता है किसी चीज को, पढ़ता है, समझता है, समझने में उसके शिक्षक जो है काफी सहायता करते हैं, लेकिन उसको वो चीज याद नहीं हो पाती, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए?
0: देखिए, मेरा ये मानना है कि कंठस्थ करना अर्थात रटने का बहुत ज्यादा महत्व है
1: जी।
0: मैं आपको बात बताऊं कि प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति में उपनयन के पश्चात जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में पहुंच जाता था, तो 16 वर्ष की अवस्था तक जो भी पाठ्यक्रम होता था वो उस विद्यार्थी को कंठस्थ करवाया जाता था। जब विद्यार्थी को तमाम पाठ्यक्रम कंठस्थ हो जाता था, तो उसके पश्चात गुरु उसके संप्रत्यय को विद्यार्थी को समझाता था
1: जी।
0: कि इसका अर्थ ये है, और जब विद्यार्थी संप्रत्यय को समझ लेता था तो विद्यार्थी को ही अपने भीतर उस बिंदु के विश्लेषण की क्षमता को विकसित करना होता था, और तब जाकर वो विद्यार्थी ज्ञान में परिपूर्ण हो पाता था
1: जी। इसका मतलब समझने के साथ साथ उसको याद करना, उसको रटना भी काफी
0: बिल्कुल है। और इसके लिए जो थ्योरी मैं प्रयोग करता हूँ उसे मैं 6 राउंड थ्योरी कहता हूँ। अर्थात यदि आपने एक बार पाठ्यक्रम पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया है, फिर आपको दूसरी बार पाठ्यक्रम पढ़ना है, फिर तीसरी बार में उसके नोट्स बनाने हैं, फिर चौथी बार पाठ्यक्रम पढ़ना है, फिर पांचवी बार में उसके नोट्स बनाने हैं, और छठी बार जब आप पाठ्यक्रम को पूर्ण करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि सप्ताह या 15 दिन में आपने उस तमाम पाठ्यक्रम को पूर्ण कर दिया। और जब कोई प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी उस स्थिति में पहुंचता है तो वास्तव में वही वो स्थिति है जब उसके चयन की गारंटी हो जाती है, वो प्रश्न के उत्तर को परीक्षा भवन में सही तरीके से लिख पाता है, उत्तर का सही तरीके से प्रत्यास्मरण कर पाता है
1: जी। बिल्कुल, इस बात के प्रमाण के लिए यदि हम चयनित विद्यार्थियों की नोटबुक्स को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो काफी जीर्ण शीर्ण हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि उन्होंने उसको इतनी बार पढ़ा है कि वो सब चीजें उनको कंठस्थ हो चुकी है।
0: तो बिल्कुल, बार बार पढ़ें, और कम से कम 4 बार पढ़ना और 2 बार नोट्स के रूप में लिखना अनिवार्य है
1: जी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमारे युवा साथियों को दिया। अंत में हम यही चाहेंगे कि जो भी हमारे युवा श्रोता, विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक हमें सुन रहे हैं, उनको आपका एक संदेश आप प्रेषित करें।
0: संदेश संप्रेषण में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है

0: तो उसे 6 बिंदुओं का पालन करना होगा। या जो अभिभावक मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए पहली बात यह है कि आप अपने लिए एक संस्थान का चयन करें
1: जी,
0: और उस संस्थान उस गुरु में पूरी तरह से श्रद्धा रखें।
1: जी बिल्कुल।
0: दूसरी बात यह है कि रोज क्लास में अवश्य जाएं, जैसे कि आजकल प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास से भागते हैं, इसे मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता। तीसरी बात है कि आप मूल पुस्तकों को पढ़ें और उसमें से स्वयं नोट्स बनाएं। और चौथी बात है कि टेस्ट प्रैक्टिस करें और टेस्ट में आप प्रयास करें कि आपकी जो रैंक है वो सबसे बेहतर हो। फिर बात आती है पांचवी बात की कि दबाव में मत आएं। जब आप काम करेंगे तो आपको असफलता की भी प्राप्ति होगी, आपको बिल्कुल भी दबाव में नहीं आना है। और छठी और अंतिम बात है कि जिसने परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, जिसे लक्ष्य हासिल करना है, उसे स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा कि कई बार हम लोग अपने बच्चों को किसी भी शहर या संस्थान में अपने घर से दूर भेज देते हैं, तो यदि हमने हमारे बच्चे को घर से दूर भेजा है तो समय समय पर आप उसके संस्थान में जाएं, उसकी प्रगति की रिपोर्ट हासिल करें, उसके रूम पर हॉस्टल में पीजी में जाएं और देखें कि वो किस प्रकार से रह रहा है, किस प्रकार से अध्ययन कर रहा है, और एक बहुत बड़ी बात कि उसके मित्र कौन है, क्योंकि एक विद्यार्थी की सफलता असफलता में उसके मित्रों की भी बहुत महती भूमिका होती है।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अभिभावकों के लिए भी जरूरी है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, और हमारे श्रोताओं को हमारे विद्यार्थियों को आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद दोस्तों। अभी आपने सुनी विशेष भेंट वार्ता स्क्रीन बनाम स्कूल, बदलती तकनीक के साथ पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता। वार्ताकार थे प्रवीण भाटिया, उनसे बातचीत कर रहे थे नवीन सिसोदिया।
3: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
6: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
9: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
10: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
9: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
10: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
9: पर रेरा तो शहरों में।
10: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
9: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: दोस्तों, हम अक्सर अपने अधिकारों की बातें करते हैं। मुझे शिक्षा का अधिकार है, मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे समानता का अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र केवल अधिकारों से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र मजबूत होता है अधिकारों के साथ कर्तव्यों के निर्वहन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इनमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना

और व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्य शामिल हैं। युवा इन कर्तव्यों को केवल परीक्षा के प्रश्नों के रूप में न देखें, इन्हें जीवन का हिस्सा बनाएं। सड़क पर नियमों का पालन करना भी राष्ट्र निर्माण है। पेड़ लगाना और पर्यावरण बचाना भी राष्ट्र सेवा है। अफवाहों के बजाय तथ्य पर विश्वास करना भी जिम्मेदार नागरिकता है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना भी देशभक्ति है और अपने काम को ईमानदारी से करना भी राष्ट्र के प्रति योगदान है, क्योंकि देश केवल संसद में नहीं बनता, देश बनता है हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहारों से।

दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, कोई असफलता ना हो, कोई चुनौती ना हो, तो क्या हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाएंगे? शायद नहीं। संघर्ष जीवन का वह शिक्षक है जिसकी कक्षा में प्रवेश तो मुफ्त होता है, लेकिन सीख बहुत ही महंगी होती है। एक विद्यार्थी जब बार बार असफल होने के बाद परीक्षा पास करता है, तो उसे सिर्फ सफलता नहीं मिलती, उसे धैर्य मिलता है। एक खिलाड़ी जब हार के बाद दोबारा मैदान में उतरता है, तो वह सिर्फ मुकाबला नहीं करता, वह आत्मविश्वास बनाता है। एक युवा जब कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, तो वह सिर्फ मंजिल हासिल नहीं करता, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए संघर्ष से भागिए मत, क्योंकि संघर्ष रास्ते की दीवार नहीं, रास्ते का शिक्षक है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हर संघर्ष को चुपचाप सहते रहें। समझदारी यही है कि कठिनाइयों से सीखें, रणनीति बदलें, मदद लें और फिर आगे बढ़ें। याद रखिए दोस्तों, असफलता आपकी पहचान नहीं है। आप असफलता के बाद क्या करते हैं, यही आपकी पहचान बनाती है।

दोस्तों आज 24 अगस्त है। भारतीय और विश्व इतिहास में आज की तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी है। आज ही के दिन 24 अगस्त 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा था। यह घटना भारत में अंग्रेजी व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। आज ही के दिन 24 अगस्त 1969 को वीवी गिरी ने भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। और आज ही के दिन 24 अगस्त 1949 को नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाली संधि का प्रभावी रूप सामने आया था। और आज ही के दिन 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ग्रह की बजाय बोने ग्रह यानी डार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा था।

अभी आप कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सिराई की, 6:30 पर आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से, 6:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, 6:45 पर प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में हमारे जयपुर केंद्र से। कार्यक्रम चौपाल का समय रहेगा शाम 7:00। आज के प्रस्तोता होंगे सुनील शर्मा और आज के कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा नरमे कपास की फसल में सिंचाई व्यवस्था, गवार की फसल में सामयिक कार्य, फसल में पोषक तत्वों का महत्व और इसके अलावा मौसम व बाजार भाव।

रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। 8:30 पर कार्यक्रम रहेगा स्पोर्ट्स कैन हमारे दिल्ली के अंदर से। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का समय रहेगा रात्रि 9:30 पर, जिसे हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेल जगत हमारे जयपुर केंद्र से। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। तो ये था हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम बैंड 909 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

हुने हुनको बड़े झूठा मूठा प्यार जता के आख्या कि चल तू मेरे को, मैं तक सोने सोने कपड़े पवावा और गाने पवावा, तू अपने मुंह ते क्रीम ला दे ताकि ते को नजर ना लगे। मलिका हुकू बदसूरत बनावन दी चाल है। ओ अलिंजा को बादशाह को घेन गई। जिवे बादशाह ने अलिंजा को डिठा, ओ चीख दे वे आख दे, ए बदसूरत लड़की मेरी धी नहीं थी सकदी, जल्दी ही को किले तो बाहर कढो, मैं ही को देखना नहीं चाहता। बादशाह दे नौकरा ने सुन गई, पकड़ के अलिंजा को बाहर काट देता। हुण अलिंजा रोंदी वही अपने बिरावा को लभेंदी वही जंगल विच पहुंच गई। उथाई एक पानी दा चश्मा वगदा पिया आई, उथा हुने अपना मुंह धोता तो अपनी सोहनी सूरत रूप विच आ गई। थोड़ी देर तक हुंको केंदे कदमां दे चलण दी आवाज आई। हूं डिठा एक बुढ़ी अम्मा आंदी पई है। बुढ़ी अम्मा अलिंजा को डिठा कल्ली बकल्ली। हुने पूछा, तू इत्था क्या करेंदी पई, कल्ली क्यों आई आई? हुने आख्या, मैं अपने बिरावा को लभेंदी वही आई हाँ। अम्मा तू किवें आई? हुने आके, मैं अक्सर इत्थई फल तोड़न वास्ते आंदी हाँ, तू क्या फल खासे? अलिंजा को बुढ़ी अम्मा ने कुछ फुल खावण वास्ते दिते। वो आख दिए, क्या मेरे तू सत शहजादे बिरावा को डिठी? हुने आख्या, मैं डिठा ते नहीं, पर मैं सत हंस जिन्हां दे सिर दे उत्ते ताज हैं, ओ जड़ी समुद्र दे नाल नदी मिलदी पई है उत्था तैरदे वधे रहंदन। अलिंजा नदी जड़ी समुद्र दे नाल मिलदी पई है पहुंच गई। उत्था हुने सत पंख हंसा दे डिठे। हुण हुंको पूरा यकीन थी गया कि वो अपने बिरावा को लभ गिन सी। शाम थींदे ही हुने डिठा खूबसूरत हंस आसमान ते उड़दे वधन। सूरज दे छिपदे ही हंस शहजादे विच तब्दील थी गए। अलिंजा अपने बिरावा को देख के पहचान गई, वो खुश थी गई। उन्हां कोलो भज के गई उन्हां के, मैं तुहाडी भेण अलिंजा हाँ। वो बिरा जड़े शहजादे हन अपनी सोहनी जवान भेण को देख के भी खुश थी गए। वल हुना ने एक दूजे नाल आप बीती एक दूजे को सुनाई के किवें सूरज निकलदे ही असा हंस बन वेंदे हैं, सूरज डूबदे ही असा वापस असली रूपे चा वेंदे हैं। ये साड़ी मलिका जेड़ी राणी आई हूने जादू कर दिते, पर ये जादू हुंदा होण जल्दी खत्म थी वे सी। अगली दीवार सारे शहजादे नी थींदे ही हंस बन गए। अपनी भेण को एक जाल विच मिला के अपने चुंझा नाल बद के हुंको आसमान ते उड़ा के घिन गए। अलिंजा को इस वारी दा ते डाढ़ा मजा आंदा पिया आई। वो बादलां को अपने नाल नाल टुरदे वे देखदी पई आई, किथे पहाड़ पे देखदी आई, किथे अपना महल डिठो सी, सारा कुछ देखदी वही अपना घूम फिर के शामी वेले वो सारे एक गुफा दे कोल आ गए। सारे बिरावा ने ते अलिंजा ने रात गुफा दे नाल रुकण दा एक फैसला किया। अलिंजा रात को सुती हुने एक सपना डिठा, हुंदे विच हुने परी को डिठा। ओ अपने बिरावा दी सलामती वास्ते परी नाल गाल करन लगी, कुछ इवें कर दियो कि मेरे बिरावा ते ए जादू दा असर कम थी वंजे, शहजादे दे रूप विच वापस आ वंजन। परी ने आख्या, अगर कर सके तो मैं ते कुड सेंदी हां। गुफा दे बाहर एक कंडियां दा दरख्त ते हुंकू तोड़ के हुंकू पीस, हुंदी गोंद बना, हुंदी मोम बना ते पत्तियां नाल हुना दा कोट बना। ओ कोट तेरे भिरा पे सन ते जादू दा असर खत्म थी के ओ अपने सही रूप विच आवे सन, पर हिक शर्ते कोट बने देवे केंदे नाल बोली ना, केंदे नाल गाल ना करी, नहीं ते तेरे भिरा ना मरवे सन। अलिंजा ने आख्या, मैं पूरा ख्याल रखे सा। इतने विच अलिंजा दी नींद खुल गई, हुण परी भी गए। हुने सोचा, ए तां मैं ख्वाब डिठे, पर हुण अपने भिरावा को डिठा ओ उड़ गया। हुने दूजे दी पत्रे तोड़न दा वक्त फैसला किया, गुफा तो बाहर निकल के कंडिया दे पेड़ कोलो गई। हुने पत्रे तोड़े, पत्रे तुड़ेंदे कंडिया नाल हुंदे हाथ भी जख्मी थी गए, पर वो पत्रे तुड़ेंदी रही। गुफा विच आके कुट के हुंदा मोम बनाया। एक चूहा ये सारा कुछ देखदा पिया आई, हुंको बड़ी दिलचस्पी थी। हुने अलिंजा दी मदद करनी शुरू कर दिती, वो पत्रे तोड़ तोड़ के अलिंजा को देवण लग गया। शाम को जेड़े वेले हुंदे भिरा गुफा विच आए ते अलिंजा को एक अजीब जहा काम करें दे वे जिठा। वो पुछ देन, भेण तू ये क्या करें दी पई, तू जवाब क्यों नहीं देंदी? वल आपस विच आखन लगे, थी सकदे ही तोनी ऐसा को ना दसेंदियो नी जब तक ये काम करें दी पिए। अलिंजा गाल ना करना चाहती है। छोटा भीरा अलिंजा कोल आया, हुने भेण दे हत्था दे छाले डिठे, हुंदे हत्था विच हंजू आ गए। अलिंजा ने हत्था दे डठे हुए हंजुआ नाल हुंदे जड़े छाले हन ओ भी गैब थी गए। अलिंजा दा सपना जड़ा है यकीन तब्दील थी गया। अलिंजा अपने कोट सीवण दा काम करेंदी रही, चूहा भी हुंदी मदद करेंदा रहा। एक दी शिकारी को जू थई जंगल विच गुफा दे कोल आ गए। एक नौजवान जड़ा घोड़े उत्ते बैठा ही ओ अलिंजा कोल आया ते अपनी तारीफ करें दे वे। अलिंजा

0: अभी आप कार्यक्रम सिराय की सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिलेवार समीक्षा की। स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने अभियान चलाया, सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी। सावन के आखिरी सोमवार पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल, रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर। और प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में मॉनसून के बादल मेहरबान, 26 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव नज़दीक आने के साथ ही तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आज रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिटर्निंग अधिकारियों से संवाद कर जिलेवार चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव कार्य में लापरवाही नहीं बरतने और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा। इस बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में महज 3 दिन का समय शेष रहते भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य पार्टियां भी प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन कर रही हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दलों से टिकट हासिल करने के लिए संभावित प्रत्याशी भी जोर शोर से दमखम दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि 309 नगरीय निकायों के लिए 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव के दौरान लोगों को साइबर ठगी से बचाने

के लिए राजस्थान पुलिस ने सतर्क मतदाता ही सुरक्षित मतदाता है अभियान चलाया है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर नव मतदाताओं, चुनाव प्रत्याशियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं के प्रति आगाह किया है। साइबर क्राइम और तकनीकी सेवाओं के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने चुनाव के दौरान फर्जी लिंक, OTP, QR कोड, फिशिंग ईमेल और फेक न्यूज के प्रति सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने

0: निदेशक वी के सिंह ने चुनाव के दौरान फर्जी लिंक, ओटीपी, क्यूआर कोड, फिशिंग ईमेल और फेक न्यूज के प्रति सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने मतदाताओं को फर्जी वोटर लिस्ट से सावधान रहने और मतदाता सूची संबंधी जानकारी के लिए केवल विभागीय वेबसाइट को ही अधिकृत मानने की सलाह दी है। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और सभी को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इन दिनों कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पाली में आज महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकालकर मतदान का संदेश दिया। इस दौरान नव मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। श्रीगंगानगर में जागरूकता के लिए शिक्षण संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। वहां रैली के साथ ही रंगोली और मतदान जागरूकता गतिविधियां रखी गई हैं। भरतपुर में भयमुक्त मतदान के लिए पुलिस जवानों ने मार्च निकालकर आम जन में विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया। ब्यावर में स्वीप की पाती और वोटर की मनुहार कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को मतदान केंद्र आने का निमंत्रण दिया गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक उद्यम लाभान्वित हुए हैं। आज नई दिल्ली में PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और 44% महिलाएँ हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में शुरू की गई इस योजना से अब तक 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं।
1: PMFME की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं।
0: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 साल पूरे कर लिए हैं। साल 2016 में शुरू हुआ UPI आज देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में UPI के जरिए केवल 1,78,00,000 लेन देन हुए थे, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गए। इसी अवधि में लेन देन की कुल राशि 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314,00,000 करोड़ रुपए हो गई। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। ये इस समय 11 देशों में काम कर रहा है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर प्रदेश भर के शिवालयों में श्रद्धा और उल्लास का माहौल बना रहा। भगवान भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालु तड़के से ही बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिरों में कतारबद्ध दिखाई दिए। पवित्र सरोवरों से जल लाकर भगवान को अर्पित करने के लिए कांवड़ियों के जत्थों ने उत्साह से अंतिम सोमवार पर अपनी श्रद्धा प्रकट की। पाली जिला मुख्यालय पर निकाली गई कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहां लाखोटिया महादेव मंदिर में सालाना मेला आयोजित किया जा रहा है। डीग के कामवन कस्बे में चारों धामों की प्रतिकृतियां सजाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए पड़ोसी जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जयपुर के ताड़केश्वर और झारखंड सहित प्रमुख महादेव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी, जो दिन ढलने तक बनी रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आज अपने आवास पर भगवान शिव का अभिषेक किया। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। रक्षाबंधन का त्यौहार करीब आने के साथ ही बाजार इन दिनों तरह तरह की राखियों से सज गए हैं। भाइयों की कलाई पर बहन का स्नेह सजाने के लिए डाक विभाग भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। समय पर राखी पहुंचाने के लिए डाक

0: कर्मी जुटे हुए हैं। पाली के मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि लोगों तक समय पर राखी के लिफाफे पहुंचाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
1: भारतीय डाक विभाग की ओर से भारत के सैनिकों के नाम से एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें बहनें अपने भाइयों के नाम से जिस तरह से राखी भेजती है, उसी तरह से भारत माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग पर चलाई गई है, जिसमें सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में हमारे जो डाक सहायक हैं, शाखा डाकपाल हैं, वो जाकर बच्चियों को इसकी जानकारी दे रहे हैं।
0: इस बीच कुछ डाकघरों में सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं, जिनके जरिए बहनें अपने भाइयों तक राखी के साथ ही अपनी फोटो भी भेज रही हैं। कई विद्यालयों में छात्राओं की ओर से सैनिकों को भी राखी और पत्र भेजे जा रहे हैं। इधर देश की सरहद पर तैनात जवानों को राखी बांधने के लिए जयपुर से आज राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा रवाना हुई। यात्रा की संयोजिका साध्वी समदर्शी ने बताया कि बालिकाओं का एक दल चीन सीमा स्थित नाथुला और बॉर्डर चौकियों पर जवानों को राखी बांधेगा।
2: मुख्य उद्देश्य यात्रा का है कि सरहदों की तरफ आम जनता का रुख हो और देश में जन जागरण हो। हमारे जो अंतिम प्रहरी हमारी सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, उन सैनिकों के प्रति हम कृतज्ञता कैसे ज्ञापित कर सकते हैं। सभी स्कूलों से

0: से राखिया बांधी। इस बार श्री शक्ति पीठ ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ कूच किया है।
1: जैसलमेर आज अपना 871वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध ये सरहदी शहर अपनी स्थापना, वैभव और कला संस्कृति के लिए पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान रखता है। स्थापना दिवस पर आज विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम रखे गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्थापना दिवस के अवसर पर सोनार दुर्ग स्थित भाटी वंश की कुल देवी माँ स्वांग्या जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल देव की प्रतिमा का पूजन, गायत्री यज्ञ एवं दुर्ग की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप ध्वज पूजन संपन्न हुआ। जैसलमेर का गौरव, वैभव और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सदैव अक्षुण रहने तथा स्वर्ण नगरी विकास के नए आयाम स्थापित करने की प्रार्थना की गई। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आज कई जगह मॉनसून ने सक्रियता दिखाई। करीब हफ्ते भर बाद राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में दोपहर बाद आई तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सवाई माधोपुर में हुई रिमझिम बरसात से मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, भरतपुर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में 26 अगस्त तक बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उदयपुर तथा अजमेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में आगामी एक सप्ताह तक मानसून परिस्थितियां कमजोर बनी रह सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिलेवार समीक्षा की। स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने अभियान चलाया, सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी। सावन के आखिरी सोमवार पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल, रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर। और प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में मानसून के बादल मेहरबान, 26 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दिनेश क्षोत्रिय। राजसमंद में इस बार पर्याप्त बारिश नहीं हुई है और अब मानसून का दौर भी धीमा पड़ गया है। ऐसे में जिले के जल स्रोतों में पानी की आवक कम हुई है। जिले में 1 जून से अब तक 287 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज

0: दर्ज की गई है। कम बारिश के कारण जिले की प्रमुख नदियों गोमती बनास और चंद्रभागा में पानी की आवक नहीं हुई है। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजसमंद में चुनावी हलचल तेज हो गई है। वार्ड पार्षदों सभापति और अध्यक्ष पदों के दावेदारों की होड़ लगने लगी है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दावेदार अपने अपने पोस्टर तैयार कर अभी से प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले नगर परिषद सहित जिले की चारों नगर पालिकाओं के वार्डों के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी हुई। जिला परिषद सभागार में कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने लॉटरी प्रक्रिया पूरी की, जहां बालिकाओं ने वार्डों की पर्चियां निकाली। कुल 155 वार्डों में आरक्षण तय किया गया। इनमें 22 वार्ड एससी, 6 एसटी और 31 ओबीसी के लिए आरक्षित है, जबकि 96 वार्ड ओपन रखे गए हैं। कुल 58 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। राजसमंद नगर परिषद में 45, नाथद्वारा में 40 और आमेठ तथा देवगढ़ में 25-25 वार्ड हैं, जबकि भीम नगर पालिका में 20 वार्ड है। राजसमंद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई। बालकृष्ण स्टेडियम से शुरू हुई प्रभात फेरी गांधी सेवा सदन और सिविल लाइन्स होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। प्रभात फेरी में कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली छात्र, स्काउट और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय समारोह राजसमंद में महाराणा प्रताप उद्यान के पास आयोजित हुआ, जहां जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने ध्वजारोहण किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने राज्यपाल के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने पर 53 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। वहीं स्कूली छात्राओं ने सामूहिक पीटी का प्रदर्शन किया और देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रही। जिले में गर्भवती महिलाओं की सघन हेल्थ स्क्रीनिंग अभियान के तहत 234 गांवों और ढाणियों में मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस मनाया गया। अभियान के दौरान 1638 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जबकि 122 हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान कर उनकी विशेष निगरानी शुरू की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। राजसमंद में नशा मुक्त राजस्थान अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। अभियान के तहत जिले के 350 से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां 30,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं और अभिभावकों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें नशे से दूर रहकर स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य बनाने का संदेश दिया। अभियान के तहत शपथ प्रतियोगिताएं और प्रेरक लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। गोरमघाट कामलीघाट रेलखंड में चलती ट्रेन से लटक कर रील बनाने वालों के लिए रेलवे ने सख्त चेतावनी जारी की है और कहा है कि ट्रेन में स्टंट करना कानूनन अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ आरपीएफ एफआईआर दर्ज कर जेल और जुर्माने की कार्रवाई करेगी। राजसमंद पुलिस ने महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में अलग अलग विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। 115 स्कूल और कॉलेजों की छात्र छात्राओं से ऑनलाइन संवाद कर महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, गुड टच बैड टच, आत्मरक्षा और महिला हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। पुलिस ने आमजन से महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में तुरंत सूचना देने और अभियान में सहयोग की अपील की। इसके साथ ही राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में आए नगर निकाय चुनाव री तैयारियां तेज। राज्य निर्वाचन आयुक्त तैयारियां रो जिलावार जायजो लीनो। स्थानीय निकाय चुनाव रे दौरान लोगों ने साइबर ठगियों बचावन सारू राजस्थान पुलिस अभियान चलायो। सावचेत रहवन सारू एडवाइजरी जारी कीनी। सावन महीना रा आखिरी सोमवार रे मौके आज पूरा राज्य में सिरधार उमावरो माहौल। राखी री तैयारियां जोरा माथे। प्रदेश रा लंकाऊ

0: पर उगनी जिला में चौमासारी बिरखा 26 अगस्त ताई मह बरस बारा आसार। समाचारा सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव री तैयारियां तेज फेंकी है। राज्य निर्वाचन विभाग री ओरू आज रिटर्निंग अधिकारियां री सिखावण रो कार्यक्रम राखी छो। प्रदेश निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए रिटर्निंग अधिकारियां सागे बातचीत कर जिलावार चुनाव तैयारियां रो जायजो लीनो। वह अहलकारा ने संवेदनशील मतदान केंद्रा माथे खास ध्यान देवण और वोट देवण वाला रा सुबिता सारू सगला जरूरी इंतजामात करण रा हुकम दीना। ई बीचे सियासी पार्टियां रा टिकट हासिल करण सारू संभावित उम्मीदवार ई जोर आजमाइश कर रिया है। नाम पाना दाखिल करण रो काम सरू फेवण माई महज 3 दिन रो बगत रहता खास पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सागे दूजी पार्टियां माई उम्मीदवारा रा चयन सारू मंथन चाल रियो है। ध्यान जोग है कि राज्य रा 309 नगरीय निकाय चुनाव सारू पहला दौर माई 9 सितंबर और दूजा दौर माई 11 सितंबर न वोट पड़ेला। वोटा री गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष रो चुनाव 21 सितंबर न भेला। नगर निकाय और पंचायती राज संस्थावारा चुनाव रे दौरान लोगों ने साइबर ठगियों बचावण सारू राजस्थान पुलिस सतर्क मतदाता ही सुरक्षित मतदाता है अभियान चलायो है। पुलिस एडवाइजरी जारी कर और वोट देवण लायक बनिया नुआ लोगों उम्मीदवारा पार्टियां रा कार्यकर्ता और चुनाव ड्यूटी माई लगोड़ा कर्मचारियों ने माली धोखाधड़ी और भरमावण वाली जानकारियां उ सावचेत रहवण बाबत कहो है। साइबर अपराध और तकनीकी सेवाओं जुड़ियों काम देख रहा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह चुनाव रे दौरान फर्जी लिंक OTP QR कोड फिशिंग ईमेल और फर्जी खबरों सावधान रहवण री अर्ज कीनी है। वह वोट देवण वालाओं फर्जी वोटर लिस्ट नु सावधान रहता थका केवल विभागीय वेबसाइट उ जानकारी लेवण सारू कहो। पुलिस उम्मीदवारा और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट हिफाजत सागे राखण सारू कहो है। इस आगे चुनाव ड्यूटी माए लागोड़ा कर्मचारियों ने निजी डिवाइस और पब्लिक वाईफाई काम लेवण बचबारी राय दी रिची है। प्रदेश माए आवता नगरीय निकाय चुनाव माए वोट देवण वाला री तादाद बधावण और सगला ने वोट देवण सारू प्रेरित करण रा मकसद न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। पाली माए आज कॉलेज रा विद्यार्थी जागरूकता रैली निकाल और वोट जरूर देवण रो संदेश दीनो। इन दौरान नुआ मतदाताओं ने वोट देवण री सौगंध दिराई ची। श्री गंगानगर स्कूला माए रैली सागे रंगोली बनावण सरीखा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। भरतपुर रा खास बाजारा और जनता री आवण जावण रे ठौड़ा पुलिस रा जवान मार्च कर बिना डरिया वोट देवण रो भरोसो चकायो। बालोतरा माए जागरूकता रैली निकाली जी जदके ब्यावर माए स्वीप की पाती और वोटर री मनुहार कार्यक्रम रे जरिए वोट देवण वाला ने मतदान केंद्र माथे जार वोट देवण रो न्योतो दियो चियो। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान कहो है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME हाल ताई 2 लाख बत्ता कारोबार न फायदो व्यो है। वह आज नई दिल्ली माए PMFME सम्मेलन माए बोल रहा है। पासवान कहो कि इनरो फायदो लेवन वाला माए करीब 80% पहली दफा कारोबार शुरू करने वाला है और 44% महिलावां है। पासवान बतायो कि साल 2020 माई चलाई जी ई योजनाओं हाल ताई नौकरी धंधारा 10 लाख मौका बनिया है।
1: PMFME की है हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं।
0: देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वरूप 10 साल पूरा फेंक्या है। वित्त मंत्रालय रे मुजब साल 2016-17 माए UPI रे जरिए महज 1,78,00,000 लेन देन करी चिया हा जो लाला माली साल माए 24,162 करोड़ बत्ता वे क्या। इनी मियाद माए लेन देन री कुल रकम 7,000 करोड़ रुपये बेधर करीब 314,00,000 करोड़।

0: करोड़ रुपया फेंकी। यूपीआई अब भारत सागे संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव में ही काम कर रहे है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सावण महीना रा आखरी सोमवार रे मौके आज राज्य रा शिव मंदिरा माए सिरधा और उमावरो माहौल बनियोडो है। भगवान भोलेनाथ रा अभिषेक सारू जात्रु तड़के ही बम बम भोले और हर हर महादेव रा जयकारा सागे मंदिरा माए लेना माए लागण लाग्या। पवित्र सरोवरों जल लार भगवान रे चढ़ावण सारू कावड़िया रा जत्था उमाऊ सागे आस्था रो दर्शाव कीनो। पाली माई निकाली जी कावड़ यात्रा रो न्यारी न्यारी छोड़ा स्वागत करी चियो। वठे लखोटिया महादेव मंदिर माए सालाना मेलो भर रियो है। डीग जिला रा काम वन माए चार धाम री नकल बनाई ची है। जाना निरखण सारू न्यारी न्यारी छोड़ाऊ मोटी तादाद माए जात्रु पुग्या। जयपुर रा ताड़केश्वर और झारखंड समेत न्यारा न्यारा महादेव मंदिरा माए समारे हुई भक्तों री मोटी तादाद नजर आई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही वारा रहवास माए भगवान शिव रो अभिषेक कीनो। ये मौके सोशल मीडिया संदेश रे जरिए वे जनता री जिंदगी माए सुख शांति और बरकत री कामना कीनी। राखी रो त्योहार नजदीक आवन सा गई बाजारा माए भांत भांत री राखियां मिलन लगी है। भाइया री कलाई माथे बहन रो प्रेम सजावण सारू डाक विभाग ही पूरा जतन कर रियो है। टेम सर राखी पुगावण सारू आवता दिना आवण वाली छुट्टियां रा दिन ही कई पोस्ट ऑफिस खुलिया रह वेला। पालीरा हेड पोस्ट ऑफिस रा सहायक अधीक्षक राकेश कुमार बतायो के लोगा ताई राखियां रा लिफाफा टेम सर पुगावण सारू सगला जरूरी इंतजाम करी चिया है। ये विचे कुछ डाकघरा माए खुदरी फोटो लेवन रिठोड़ बनाई ची है। जठे बहना भाइया ताई राखी सागे मारी फोटो ही भेज रही है। कई स्कूलों माए विद्यार्थियों री ओर फौजियां नई राखियां और कागज भेजा चाटिया है।
1: भारतीय डाक विभाग की ओर से भारत के सैनिकों के नाम से एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें बहनें अपने भाइयों के नाम से जिस तरह से राखी भेजती है, उसी तरह से भारत माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग पर चलाई गई है, जिसमें सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में हमारे जो डाक सहायक हैं, शाखा डाक पल हैं, वो जाकर बच्चियों को इसकी जानकारी दे रहे हैं।
0: ई विचे देश री सरहद माथे तैनात जवाना सारू जयपुरू आज राष्ट्रीय रक्षा बंधन यात्रा रवाना फी। इनमाए करीब 50,000 राखियां जवाना री कलाई माथे सजावण सारू टाबरियां रो एक दल चीन लागती सरहद ताई पुगेला। दल री संयोजिका साध्वी समदर्शी बतायो का आ यात्रा नाथुला और सिक्किम बॉर्डर सारू रवाना फी।
2: मुख्य उद्देश्य यात्रा का है कि सरहदों की तरफ आम जनता का रुख हो और देश में जन जागरण हो। हमारे जो अंतिम प्रहरी हमारी सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, उन सैनिकों के प्रति हम कृतज्ञता कैसे ज्ञापित कर सकते हैं। सभी स्कूलों से

0: राखिया बांधी। इस बार श्री शक्तिपीठ ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ कूच किया है।
1: जैसलमेर रो 871वो स्थापना दिवस आज मनायो जा रियो है। स्वर्ण नगरी रा नाम मशहूर ओ सरहदी शहर वारा वैभव और कला संस्कृति सारू पर्यटन नक्शा माथे खास ठौर रखे है। स्थापना दिवस रे मौके आज वठे न्यारी न्यारी संस्थावां और संगठनारी ओरों भांत भांत रा कार्यक्रम रखी चिया। और ब्यूरो माणा जैसलमेर खबर नवीसू।
2: स्थापना दिवस के अवसर पर सोनार दुर्ग स्थित भाटी वंश की कुल देवी माँ स्वांग्या जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल देव की प्रतिमा का पूजन, गायत्री यज्ञ एवं दुर्ग की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप ध्वज पूजन संपन्न हुआ। जैसलमेर का गौरव वैभव और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सदैव अक्षुण रहने तथा स्वर्ण नगरी विकास के नए आयाम स्थापित करने की प्रार्थना की गई। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: अरब मौसम प्रदेश रा उगनी और लंकाऊ हल्का माए आज कई छोड़ा चौमासारी बिरखाफी करीब एक हफ्ता

0: पाछे राजधानी जयपुर और आर एस आर एर हल्का माए आज दोपहर पाछे तेज बिरखा हुई। सवाई माधोपुर माए रिमझिम बरसात हुई। मौसम विभाग रे मुजब कोटा भरतपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए 26 अगस्त ताई बिरखा माए बढ़ोतरी सागे कठे कठे जोरदार बारिश रा आसार है। इन दौरान उदयपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए हल्की मझला दर्जारी बारिश रो अनुमान है। हालांकि राज्य रा आतुणी हल्का माए आवता एक सप्ताह ताई बिरखा कम फेवन री संभावना है। चौमासारी रुतमाए मच्छरों के कारण फैलने वाली बीमारियां री रोकथाम अरवा माथे काबू करण सारू चिकित्सा विभाग री ओरों जयपुर माए स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान चलायो जा रियो है। इन तहत घर घर सर्वे सोर्स रिडक्शन एंटी लार्वल गतिविधियां और साफ सफाई जुड़िया काम करिया जा रिया है। आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ली रहो। देश माए नगर निकाय चुनाव री तैयारियां तेज। राज्य निर्वाचन आयुक्त तैयारियां रो जिलावार जायजो लीनो। स्थानीय निकाय चुनाव रे दौरान लोगों ने साइबर ठगियों बचावन सारू राजस्थान पुलिस अभियान चलायो। सावचेत रहवन सारू एडवाइजरी जारी कीनी। सावन महीना रा आखिरी सोमवार रे मौके आज पूरा राज्य माए सिरधा रुमावरो माहौल राखी री तैयारियां जोरा माथे। और प्रदेश रा लंकाऊ और उगनी जिला माए चौमासारी बिरखा 26 अगस्त ताई मह बरसबारा आसार। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनिए सगले श्रोतावाने, सुनील भाई की ओर से मोकली मोकली राम राम। श्रोताओं, आज चौपाल की शुरुआत एक कविता शुरू करा जकी राजस्थानी अपनी मायड़ भाषा से जुड़ेड़ी है। कठे गया बे बोल सुहाना, ठेठ जुबानी कठे गई थारी मारी बाता शू आ राजस्थानी कठे गई। बड़गारा सागे रे बारो मोल नीटा बर जान रिया, रीज रीज लाड लडाउन नाली दादी नानी कठे गई बे बाड़ गुवाड़ी। लोका चारी री बाता कठे गया बे नेम धर्म बा आना कानी कठे गई। पैशा री झड़ माथे चढ़ गई, पैशा री झड़ माथे चढ़ गई, बोली डलगी धरती ने लाज बचावन खातर हुंती बा कुर्बानी कठे गई। कठे गया बे बोल सुहाना, कठे गई बाजूबानी। श्रोताओं, बात करा अपने मायड़ भाषा की, तो मायड़ भाषा को मोल जको है आपने शू ज़्यादा कौन जान सके। मायड़ भाषा राजस्थानी शू हेत बढ़ावन एर उनने जीवती रखन सारू आप रोज़मर्रा की जिंदगी में कई छोटा मोटा काम कर सकां। पहली शुरुआत आपने अपने घर शू करनी चाहिए, आप ही बोली बोलो। घर में आप जिया टाबर है, बडेरा है, बेली दोस्त है, बंग सागे की है, बेझिझक कोई झिझक ने रखो, कोई शर्म ने रखो। आपनी की मायड़ भाषा है वे में बात करो और आपने टाबरा ने भी सिखाओ। घर रा टाबर जका है वे जे अपनी भाषा सीखेगा तो ही बिना आगे लेके जाएगा। राजस्थानी जिसकी कहावतें हैं, बातें हैं, लोरी जकी है, बन आपने जका टाबर है बंग सामने पेश करो ताकि बह में बिंग सारू की लगाव पैदा हुए। दूसरो जो काम आपनों करना है कि जकी अपनी पोथियां हैं, राजस्थानी किताबा हैं,

श्रोताओं सुनियो प्यारो सो लोक भजन, बात करा पां खेती बाड़ी की। तो ई टाइम आपने खेतों के अंदर नरमे कपास की फसल खड़ी है, सावनी को टाइम है। तो नरमे कपास की फसल में जहाँ सिंचाई की बात करा किसान भाइयों, तो सिंचाई को में बहुत ही मोटो योगदान है। गलत वक्त या बेहिसाब का जो पानी देवांगा तो क्या अपना जका डोडा है जका डिंडा बेजड़न लग जाएगा, बीमारी आन लग जाएगी, रापण सग किए दुख हो जाएगा। तो इन सारू जकी आपां सिंचाई है बिंगी व्यवस्था आपने बहुत ही सोच समझ के रखनी चाहिए। बात करा सिंचाई आपां किया करा, तो जो पहली सिंचाई है वह 20 से 25 दिन पर जो अब टाइम तो बीत गयो, 20 टाइम बिजाई करनी गए 20 से 25 दिन बाद आप कर सकां, और 3-4 सप्ताह बाद पहली सिंचाई करो। इन जकी है अपनी जकी जड़ है बेकी है गहरी जाएगी और सागे मजबूत होगी। दूसरे जब और पानी जिया ध्यान रखा भी जब सखा बने वो टाइम बहुत ही जरूरी है। जब अपनी पसंद बदवार करन लग रही है, डालियां फुटन लग रही है, तो 20 टाइम पानी देना बहुत जरूरी है। 20 टाइम की है जे पानी की कमी होगी तो फुटान कम होगा, सखा कम चलेगी और अपनों जो नरमू है भी वो कद भी कम रह सके, तो बीशों अपनों जो झाड़ है वो प्रभावित हो सके। और जहाँ फूल और गुड्डी है डोडा आम ते टाइम 20 टाइम भी पानी की अपन पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि आज की अवस्था है डिंडा आने की अवस्था आ सारा शू जरूरी अवस्था है। जे ई वक्त आप खेत में नमी नए बना के रखांगा तो अपना जका फूल है वो डोडा बिके झड़न लग जाएगा। तो इन टाइम में अपने खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जे अपन फसल ने जरूर दिखे तो पानी को अपन जाप तो रखना चाहिए भी, जे अपने कन्ने पानी नहीं है तो इन्ने भी नो अपने व्यवस्था भी करनी पड़ सके। जी इन क्रांतिक अवस्था में अपना पानी नहीं देवागा तो अपना जो उत्पादन है जो मुख्य उद्देश्य है वो बीशों अपन दूर हो जाएगा। और जहाँ डोडा बनता और खिलता वक्त जहाँ डोडा में जब रूई बनने लग जाए 20 टाइम सिंचाई करनी बहुत जरूरी है। पर डोडा जका खिलने लगता है

मानसून सिंचाई अपने मीटें बंद कर देनी चाहिए। सिंचाई का तरीका और ध्यान रखने योग बातों की बात करा तो जो अपने हठे जी आप खाड़ा हूँ ज़्यादा सिंचाई करा बीशू कि अपने पानी बहुत बर्बाद होवे और पूरे खेत में पानी बन को जावे तो खाड़ा में भी रह जावे तो पानी की जी 20-30% इशू अपने नुकसान होवे। दूसरी जी विधि आप ड्रिम सिंचाई है बूंद बूंद सिंचाई जिकन बोले जे अपने कने की सुविधा है तो आप इशू पानी दे सकां। आ सारों बढ़िया तरीको है क्योंकि आ जो पानी है सीधो जड़ा में जावेगो और आ लगातार जब पानी मिलते रहे तो बूंटो की है सोको कौन बनावे वो फल अच्छो चकेगो फल गुड्डी अच्छा लगेगा और आपने अच्छो उत्पादन प्राप्त होगा। इशू आप जिया उर्वरक है गोल के बे दे सकां और जड़ा में जिया कोई पोषक तत्व और देना चाह बे भी दे सकां। भारी और हल्की जमीन की जिया बात करा तो जिया रेतली आपने करने मान लो हल्की जमीन है तो बठे की है किसान भाइयों रेतली जमीन के अंदर पानी रोकने की क्षमता कम हो तो 8-10 दिन का अंतरे पर आपने हल्की जकी सिंचाई है वह करते रहना चाहिए। और जठा मान लो काली मट्टी है भारी जमीन है तो बठे की है पानी कई दिन तई नमी बनी रहे क्योंकि भी मट्टी के अंदर जल धारण की क्षमता बहुत बढ़िया है व लंबे टाइम तीन पानी ने रोक के रख सके और फसल की है आप या पानी लेती रहे तो बठे जिया 12-15 दिन का अंतर अपना ने सिंचाई करनी चाहिए। जरूरी सावधानियों की बात करा तो जिया फूल आमता वक्त पानी नहीं देना चाहिए। फूल आमती टाइम की है जो खेत में आप पानी भरांगा तो बीचों अपना डोडा जका बिके जड़न लग जाएगा और पौधे की बंडवार बेहिसाब हो जाएगी। दूसरों अपने जल निकासी को भी बहुत ही जाबतो रखना चाहिए। बरसात के दिन में अपना जी खेत में पानी बिगड़ो जाए तो बिना नरमे की फसल ने वो नुकसान करे क्योंकि जकी जड़ा है बिगड़न लग जाए तो अपने की है निकासी की व्यवस्था रखनी चाहिए। सग सग की है जिया कीट और बीमारियों के प्रबंधन की बात करा तो जिया गुलाबी सुंडी है डोडा बनता वक्त इंगो प्रकोप है इन सारों खेत के माँ फेरोमोन ट्रैप आप लगा सका या शुरुआत के अंदर नीम को जो तेल है बींगो छिड़काव कर सका। रुस चुसक जिया कीट है जिया हरियो चेपो है धोली मक्खी है इशू बचाव सारू सिफारिश करेड़ी जी कीटनाशक है जिया इमिडा क्लोप्रीड है या एसिटा प्रीमिड है अंगो सही मात्रा में छिड़काव करना बहुत जरूरी है। खाद और पोषक तत्व की जिया बात करा तो जिया नाइट्रोजन की सही मात्रा है जिया यूरिया की है पौधे को बदवार को काम करे हरियो रख है तो जे बेहिसाब आप न खांगा तो बूटा जका अपना की है बहुत ज़्यादा लंबा बच जाएगा और डोडा कम आएगा। तो यूरिया ने की है 3-4 किस्ता में देनी चाहिए। पोटास और बोरान है जका फूल और डोडा आमता वक्त पोटास 0.5% बुरान को छिड़काव भी अपन करना चाहिए ताकि अपना जका डोडा है वे नीचे न गिरे। रुई की जकी गुणवत्ता है किसान भाइयों जकी बहुत ही जरूरी है क्योंकि अच्छो फोवेगो अच्छो जे खिलाव होएगा तो अपने जका व्यापारी है वे अच्छा दाम देवेगा। NPK के छिड़काव की बात करा तो फूल आमती वक्त की है 13-0-45 या 19-19-19 गो 1% ताकत गो गोल यानी 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में गोल बना के अपन छिड़काव करना चाहिए। छंटाई और बडवार नियंत्रण सारू जिया छंगाई करनी चाहिए। अगर ज़्यादा बूटा के बदन लाग रहा है और फूल डोडा कम है तो ऊपर शूंकी पौधा की जकी कोमल सिरा है मन तोड़ देनी चाहिए कोई लकड़ी ले गए भी छांग देना चाहिए तो इन शूंकी है जका पौधा ज़्यादा बदवार को नहीं करेगा और डोडा भी बढ़िया बनेगा। खरपतवार को निदान भी किसान भाइयों ने नरमे कपास की फसल में टेड मोटेम करना चाहिए। जिया पहला 60 दिन तक खेत में खरपतवार कचरों नहीं होना चाहिए। टेम टेम पर गुडाई करनी चाहिए इनशू कि है पौधा की एक तो जड़ा मजबूत होगी सगे बूंटा ने किए अच्छो हवा लगेगी तो बूंटा जका अच्छा फैलेगा और वांगो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। तो इन तरिया की जी की बातें हैं किसान भाई आपकी कपास की फसल में नरमे की फसल में सावचेत रखेगा तो अच्छा उत्पादन ले सकेगा। बातें आप और भी करांगा पहला।

श्रोता हूँ, सुने हो प्यारो सो लोक गीत। अब बात करा पा खेती बाड़ी की, तो इन टाइम आपने अठे

तारा मीर की बिजांत की बात करा तो तारा मीर की बुआई आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आराम से कर सकाएंगी। उन्नत किस्म जियाँ T27 है, ITSA और RTM 314। जिकन करण तारा बोले अभिलेश का RTM 2002, जिकन नरेंद्र तारा बोले इनको भी प्रयोग कर सका। बीज की मात्रा की बात करा तो पहला तो बीज नापन किए 2 ग्राम में इनको जेब है, जबकि 75 WP या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 50 WP ताकत में आवे। 1 शेर बीज के हिसाब से ले गए उपचारित करना चाहिए और 1 हेक्टर का माँ आपने 5 किलो बीज आपा ले सका और कतार से कतार की दूरी आपन के 30-45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई के टेम 65 किलो यूरिया और 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट आपने ऊर्गी देनी चाहिए। तोरिया की बात करा तो इन टाइम इंगी भी आप बुआई कर सका इंगी T9 TL15 भवानी संगम।

500 लीटर पानी में गोल बना के छिड़काव करा तो अपना अच्छा फायदा हुआ और इन छिड़काव ने आप 15-20 दिनों के बाद में दोहरा भी सका। कपास गाजियाँ कीट है बांसारू डाई मेथोएट 30 सीसी या मोनोक्रोटोफास 36 WSC 1 लीटर प्रति हेक्टर शू या फेनवेल रेट जकी आवे 20 सीसी ताकत की 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टर की दर शू 400-500 लीटर पानी मिला गया अपना छिड़काव कर सका। और ये टाइम की जियाँ रवि फसलां जियाँ सरसों हैं चीनो हैं बांसारू वर्षा जल ने नमी गए संरक्षण को कार्य भी आप कर सकता ताकि आप टाइम पर आगे जकी हाड़ी की फसल है भी गो पिजान कर सकें। तो ये टाइम किसान भाई आपका खेत में ये धंधा कर सकें बात आप और भी करांगा पहला सुनाऊँ प्यारो सो लोकगीत।

श्रोताओं सुनो ओ प्यारो सो लोक गीत। बात करा पां आपने जकी फसलां हैं अने कितने प्रकार का पोषक तत्व चाहिए अंगो के महत्व है। तो श्रोताओं जकी फसल है इंगी बढ़िया बढ़वार सारू और निरोगी रहे पैदावार अच्छी हुए तो आ सारू बहुत ही पोषक तत्वों की जरूरत पड़े जका मुख्य रूप से सत्रा है। जिया आप इंसान हाँ आना कि टेम टेम अच्छो पौष्टिक भोजन चाहिए बी तरह ही अपनी जकी फसल है अना भी खेत के अंदर जका पोषक तत्व है वे चाहिए। और जी आगी कमी हो जाए तो फसल में किए पीड़ो बना जाए फूल जकी और फली है वे कम बने पैदावार में भारी घटोत आ जाए। तो पौधा ने मुख्य रूप से बात करें तो अपने 17 तरीका जका पोषक तत्व है बांगी जरूरत पड़े जका ने 3 भागा में बंटेड़ा है। पहलो जो भाग है वो किए मुख्य पोषक तत्व आंगू है जिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करा तो पौधा ने हरिया रखने सारू इंगी बहुत ही जरूरत पड़े और जका पत्ता है डाली है आंगी बढ़वार भी इंगी वजह से हुए। तो जे नाइट्रोजन की किसान भाई अपने खेत में कमी आ जाए तो जका पाना है बेकि पीला पड़ जाए पत्ता एर पौधा बोना रह जाए नहीं छोटा रह जाए बढ़वार कम हुए। फॉस्फोरस की बात करा तो आ की है जड़ तंत्र जको हुए पौधे को भी न मजबूत करे जड़ांग जकी गहराई है बा आ बढ़ावे और सही टाइम पर फूल फलियां पकावे। इंगी कमी से किसान भाइयों जका फसल का पत्ता है बांगो रंग बैंगनी हो जाए या भूरो हो जाए एर जड़ांगो विकास रुक जाए। पोटास की बात करा तो पोटास को भी बहुत महत्व है अपनी फसलों में जे पोटास जिया न हो तो फसलों की बीमार पड़ जाए एर सूखे छू लड़न की जकी क्षमता हुए वह कम हो जाए। तो पोटास जकी आ क्षमता बढ़ावे एर दाना एर जका फल है फल ये वह में चमक वजन एर मिठास लियावे। इंगी कमी छू जका पत्ता है बंगा किनारा बलेड़ा सा दिखन लाग जाए। दूसरे द्वितीय पोषक तत्वों की बात करा जिया कैल्शियम है तो कैल्शियम भी बहुत ही जरूरी है आ पौधा की जकी कोशिका हो वन मजबूत करे और जो तनो है स्तंभ है बिने झुकन से बचावे। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल जो हरियोपन है वो मैग्नीशियम के कारण आवे आ बनाने में मदद करे। ईशु पौधा आपको भोजन जो है सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लेवे। सल्फर यानी जकीन गंधक के आज की है तेल वाली जकी फसलें किसान भाइयों जहाँ तिल है सरसों है मूंगफली है आमें बहुत ही काम करें। इंगे प्रयोग शू अपने जकी ये फसलें हैं तिल सरसों मूंगफली में।

तेल की मात्रा बढ़े और दाना में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़े। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करा तो ये भी जो पोषक तत्व है बहुत ही जरूरी है और माटी जांच करागे फिर आंगो पूरो माल्यो जाप तो करना चाहिए सही जकी खाद रोके भी देनी चाहिए जिस आंगी पूर्ति हो सके। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करा तो जिया जिंक है तो जिंक का काम की है पौधांग में बढ़वार लियानो बढ़ाने नाल जो हारमोन है बिना बनानो और जो प्रकाश संश्लेषण है यानी भोजन बनाने को काम है भी मैं मदद करनी। इनकी कमी से जिंक की कमी से जो नया पत्ता है बांगो जो बिचाले को बाग किसान भाई वो पीड़ो पड़ जाए और जो पत्ता है भी आकार में छोटा रह जाए यानी खेरो रोग उजे। इंगे उपाय की बात करा तो बिजाई के टेम है अपना 10-15 शेर जकी जिंक सल्फेट आवे 21% की आ एक एकड़ माटी में मिला के या फिर 0.5 जिंक सल्फेट आवे ये पत्ता पर आप इंगो छिड़काव कर सका। बोरोन की बात करा तो वो भी बहुत ही मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व है इनको काम है किसान भाइयों फूल शू फली यानी डोडा बनाने को प्रक्रिया जकी है भी ने तेज करनो भी मदद करनी सागर जो फसलों में परागण की क्रिया हुआ भी न बढ़ाणो पौधा में शक्कर है जकी शर्करा है भी परिवहन करनो इनकी कमी से अपने फसल जगिया फूल और डोडा जड़न लग जाए दाना अद पक्का सा रह जाए कई कई बार आप दाना देखा कणक में जिया बिल्कुल ही मरेड़ा सा हुआ तो भी इनकी कमी से हुए और फल डोडा बीज से फटन भी लग जाए। जिया अपने अनार का आप देखा तो अनार का फल जका कि पट है बे इमरून की कमी छू पट है। इंगे उपाय बतावा तो जिया फूल आने छू पहला 0.2% गो सेले बोरोन रोपाना पर छिड़काव करना चाहिए पत्ता पर छिड़काव करना चाहिए। और आयरन की बात करा तो लो तत्व की वो क्लोरोफिल यानी हरित लवक जको हो बिम बनाने में मदद करे इन छू पौधा भोजन भी बनावे। इनकी कमी से पौधा में जका नया पत्ता है बांगी शिरा जकी है वे बीज को भाग पीलो और सफेद पड़ जाए इंगो आप उपाय कसका के 0.5% फिर सल्फेट और इंगा सागे 0.1% नींबू को सत्य जिकने साइट्रिक एसिड बोले पानी में चित्रियाँ गोड़ बना गया अपन छिड़काव करनो ये। और मैगनीज की जिया बात करा किसान भाइयों तो इंगो काम है नाइट्रोजन को सही उपयोग कराणो और पौधा में प्रकाश संश्लेषण की गति बढ़ानी। इनकी कमी से पौधा का जका पत्ता है बांगी जकी नस है बांगो बिचाड़ो भाग जको है भूरो और अड़को कालो पड़ जाए धब्बा बन लाग जाए। इंगी कमी पूर्ति सारू आपने 0.5% मैगनीज सल्फेट को छिड़काव करना चाहिए। कॉपर जको है वो भी बहुत ही मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व है इंगो काम है पौधा के अंदर बीमारियां जकी है जिया फंगस है कवक है इंशु लड़न की ताकत देनी और सागे विटामिन ए बनाने में मदद करनी। इंगी कमी से पत्ता का जका शीरा है वे सूखन लाग जाए और पौधा की बढ़वा रुक जाए। इंगी पूर्ति खातर आप कोपर ऑक्सीक्लोराइड रो छिड़काव कर सका। मोलीबिडेनम जको है वो जकी दलहनी फसला जिया गवार है मूंग है चिना है आंगी जड़ा में जको नाइट्रोजन बनाने वाला जीवाणु राइजोमियम है बने वो सक्रिय करे। इंगी कमी से जका निचला पत्ता है वे जड़ जाए और नाइट्रोजन की कमी रा लक्षण दिखन लग जाए। क्लोरीन की बात करा तो इंगो काम है पत्ता का जका छिद्र है माने खोलन गो और बंद करन गो वो काम करे में मदद करे आंशू पौधा पानी रो संतुलन बना के रखे। तो आ सूक्ष्म पौधा जका तत्व है आने अपने खेत में बना के रखनो चाहिए आ सारू आप हमेशा ही माटी की जाँच करागे भी हिसाब से अपना अपने खेत में छिड़काव करना चाहिए या फसल पर छिड़काव करना चाहिए ताकि अपनी जकी फसल है वह बढ़िया चाल सके बढ़िया अपने उत्पादन दे सके। इंग सागा आप कि जिया यूरिया को जिया प्रयोग करा तो इंगो रिजल्ट अपने और भी बढ़िया मिले। तो इन सारू 1% यूरिया यानी 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में 1 लीटर पानी और 10 ग्राम यूरिया इन्हें मिला के और सूक्ष्म तत्व पौधा में सागर जब देवा तो बामा की जल्दी समाजे और अच्छो आपने लाभ मिले। तो इन तरिया जी अपने सूक्ष्म पोषक तत्वों को मुख्य पोषक तत्वों को आपका खेत

श्रोताओं सुनो प्यारो सो लोक गीत। और अब देखो टाइम है आपने बाजार भाव गो कथा रते पुगता कर दिया। आपने कने सूरतगढ़ मंडी का सबसे पहला बाजार भाव पुग गया है। तो सूरतगढ़ अंदर कणक का भाव उगड़िया 2751 2580 रुपया। सरसों का अठे भाव रहा 7571 रुपया। ग्वार अठे बिक्यो 5510 सौ लेगी 5891 रुपया। और मूंग का भाव रहा 5350 रुपया। अब बात करा आप गंगानगर मंडी की, तो गंगानगर के अंदर कणक का भाव रहा 2620 सौ 2800 रुपया। सरसों का भाव रहा 7199 सौ 7987 रुपया। ग्वार अठे बिक्यो किसान भाइयों 4650 सौ 6040 रुपया। चिनांगा बावरिया 5357 रुपया। और जो 2531 ले गए 2536 रुपया। और मूंगाठ बावरिया 5465 रुपया। बात करां पीलीबंगा मंडी की, तो पीलीबंगा में कणक बिकी आपने 2626 रुपया। और गवार का बावरिया 5595 रुपया। चना गाठ भाव रहा 5750 रुपया। और सरसों गाठ भाव रहा 7480 ले गए 7520 रुपया प्रति कुंटल। बात करां बापा रायसनगर मंडी की, तो रायसनगर में कणक का भाव उगड़िया 2671 रुपया। सरसों का भाव रहा 7491 7480 रुपया। और चने का भाव रहा 5890 6920 रुपया। और मूंग का भाव रहा 6800 रुपया प्रति कुंटल। तो ये आज का बाजार भाव। और अब अपने कार्यक्रम को समय जो है पूर्ण होने लाग रही है। तो थारे सुनील भाई ने दियो आज्ञा। राम राम सा राम राम।

अभी आप कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस।

0: बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म रिलीज हुई थी 1990 में। फिल्म का नाम है आशिकी, निर्देशक महेश भट्ट, निर्माता गुलशन कुमार, मुख्य कलाकार रहे राहुल रॉय, अनु अग्रवाल, और संगीत नदीम श्रवण का, गीतकार रहे समीर, रानी मलिक और मदन पाल, गायक कलाकार कुमार सानू, अनुराधा पोडवाल, उदित नारायण, और प्रमुख सह कलाकार दीपक तिजोरी, रीमा लागू, अवतार गिल और टॉमी अल्टर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जी हाँ, आज की फिल्म है आशिकी और ये फिल्म आई थी 1990 में। कहानी की बात करें तो राहुल और अन्नू की प्रेम कहानी है। दो ऐसे युवा जिनके बीच प्रेम तो है लेकिन सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां और उनके अपने सपने उन्हें बार बार अलग करने की कोशिश करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी कहानी के साथ साथ गीत कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि आशिकी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही बल्कि 1990 के दशक की रोमांटिक संगीत कल्चरल की पहचान बन गई।

दोस्तों, इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत पारंपरिक तरीके से नहीं हुई थी। गुलशन कुमार उस समय फिल्म बनाने से ज्यादा म्यूजिक एल्बम के विचार पर काम कर रहे थे। नदीम श्रवण को गीत तैयार करने का मौका मिला। उन्होंने गीतकार समीर और गायक कुमार सानू के साथ गाने रिकॉर्ड किए। इन गानों में वो गीत भी शामिल था, मैं दुनिया भुला दूंगा। जब महेश भट्ट ने इन गानों को सुना तो उन्हें संगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने इन गानों के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी तैयार करने का फैसला किया। यानी एक मायने में ये कहा जा सकता है दोस्तों कि आशिकी की कहानी पहले नहीं, उसके गीत पहले आए होंगे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: दोस्तों, इस फिल्म में दो नए चेहरे थे, अनु अग्रवाल और राहुल रॉय, और इस फिल्म ने रातों रात इन दोनों चेहरों को लोकप्रिय बना दिया था। राहुल रॉय का हेयर कट इतना फेमस हुआ था कि उस समय सैलून और नाई की दुकानों पर राहुल रॉय कट की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और अगर बात करें कुमार सानू की, तो कुमार सानू को फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्ले

बैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। यही वह दौर था जब कुमार सानू की आवाज 1990 के दशक के रोमांटिक गीतों की पहचान बन गई थी। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ये भी है कि इस फिल्म का संगीत, इसके ऑडियो कैसेट इतने बिके कि टी सीरीज ने 1 करोड़ की बिक्री के बाद गिनती रखना छोड़ दिया था। यह उस दौर की कल्पना कीजिए जब संगीत सुनने के लिए मोबाइल स्ट्रीमिंग नहीं थी, बल्कि ऑडियो कैसेट और टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे। जी हाँ, आज की फिल्म आशिकी।

दोस्तों, कुछ फिल्में पर्दे पर आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में वक्त को पीछे छोड़ जाती हैं। 1990 में आई महेश भट्ट की आशिकी उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म थी, जिसकी कहानी आज हमने आपके साथ साझा की। कार्यक्रम एक ही कलाकार, माफ कीजिएगा, एक ही फिल्म से। इन सब ने मिलकर आशिकी फिल्म को एक से बढ़कर एक यादगार फिल्मों में शामिल किया गया है। अपने दोस्त पुष्पेंद्र को दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हेडलाइंस के साथ। श्रीलंका के साथ दूसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में ध्रुव जुरेल के नाबाद शतक की बदौलत भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की, जवाब में श्रीलंका की खराब शुरुआत।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनीजा ओपन शतरंज का खिताब अपने नाम किया।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे युवाओं को संबोधित।
1: और पुरुष हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत पर 5-3 से जीत दर्ज की, भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर।
0: और सबसे पहले खेल खबरों में बात करते हैं क्रिकेट की। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की, जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं।
1: भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 63 रन की पारी खेली। इसके साथ ही ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में विदेशी सरजमी पर सर्वाधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं।
0: जी हां, उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत के विशाल स्कोर के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम महज 8 रन पर 2 विकेट टीम खो चुकी है। और भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव ने ये सफलताएं हासिल की हैं।
1: जी, और भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। सिद्धार्थ, आज के दिन का जो पूरा खेल रहा, ध्रुव जुरेल आज के हीरो।
0: बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने आज एक शतकीय पारी खेली है, हालांकि आज के अगर हम दूसरे दिन के खेल पर नज़र डालें तो आज खेल बारिश से प्रभावित रहा और भारत की पकड़ को मजबूत तो एक तरफ ध्रुव जुरेल ने किया ही, दूसरी ओर भारत की आज जब शुरुआत हुई 300 पर 5 के स्कोर के आगे टीम ने खेलना शुरू किया और पहले दिन 3 विकेट हासिल करने वाली असिता फर्नांडो ने सारांश जैन के रूप में भारत को दिन का पहला झटका दिया। और आपको याद होगा शक्ति, जिस तरह से ऋषभ पंत कलाई में चोट के चलते रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, लेकिन सारांश के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए और जुरेल के साथ मिलकर उन्होंने पूरे सत्र के लिए बल्लेबाजी की।
1: जी बिल्कुल, और कह सकते हैं कि ये चोट जो है उनके हौसले नहीं तोड़ सकी, लेकिन जो टूटा मैदान पे वो एक महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड टूटा है, इसके बारे में भी सिद्धार्थ बताएं एक बार।
0: बिल्कुल, जिस तरह का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है ये वाकई में एक जबरदस्त रिकॉर्ड है। और अगर हम एक न्यूट्रल टेस्ट मैच की बात करें जहाँ पे आप अपने देश के बाहर खेलते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि जब आप अपने देश में खेलते हैं तो उस समय जो सपोर्ट होता है फैंस का बहुत ज़्यादा होता है, जब आप विदेशी धरती पर, जिसे हम न्यूट्रल मैच के नाम से जानते हैं, तो न्यूट्रल टेस्ट मैच में 2501 रन उन्होंने बनाए हैं जिसका औसत 41.68 है। और ये जो इतिहास रचा है पंत ने, इसके पहले एमएस धोनी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। धोनी ने घर से बाहर खेलते हुए 2496 रन बनाए थे और उनका एवरेज 32.84 यानी 32.84 था, तो कहना होगा कि काफ़ी अच्छा एवरेज है शक्ति।
1: जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा एवरेज, और जिस तरह का खेल है और जो खेलने की शैली है ऋषभ पंत की, रिस्क लेते हैं, एक्सेलेट करते हैं अपनी पारी को, और वैसी ही पारी आज भी देखने को मिली। 90 से कम गेंदें खेली और 63 रन, जिसमें 2 शानदार छक्के भी शामिल थे, जिसके लिए ऋषभ पंत मशहूर हैं हमेशा।
0: जी हाँ, और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि हमारे सुनने वालों के लिए, कि जिस तरीके से ऋषभ पंत, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और तीसरे स्थान पर फारूक इंजीनियर रहे जिन्होंने 1209 रन बनाए, न्यूट्रल वेन्यू पर उस चौथे स्थान पर सैयद किरमानी और फिर किरण मोरे जो है वो 5वें स्थान पर हैं, तो इस तरीके से एक नया इतिहास तो आज रचा ही गया है। लेकिन इस इतिहास के साथ साथ जिस तरीके से आज का मैच हुआ है, ध्रुव जुरेल ने जो भारत को मजबूती दी है, तो बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर हम देखें शक्ति, तो जिस तरीके से श्रीलंका के 2 विकेट फटाफट से गिर गए, तो एकदम से वो पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ाई उनकी।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं पूरी तरीके से लड़खड़ाई। और जब कल भारतीय गेंदबाज वापस उतरेंगे तो शायद ये जो 2 विकेट हैं उनके मनोबल में, उनकी गेंदबाजी में साफ झलकेंगे। और कल कामिल मिशारा होंगे जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं, तो देखना होगा कि भारतीय टीम, अगर बारिश विलन नहीं

0: नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट शक्ति प्रताप सिंह।
1: और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम स्पोर्ट्स।

0: बनती है तो
1: जी
0: कितना जल्दी श्रीलंका को निपटाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। तो कई बार ऐसा रहता है ना टेस्ट मैच में कि कहीं ये ड्रॉ ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, लेकिन जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि श्रीलंका किस तरीके से 2 विकेट गंवाने के बाद कमबैक करता है।
0: जी बिल्कुल, और भारत को उम्मीद होगी कि किस तरह से इस मैच में अपनी पकड़ तीसरा दिन समाप्त होते होते और मजबूत कर ली जाए।
1: बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर होगी और स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में देंगे हम आपको एक एक अपडेट।

0: से इस मैच में अपनी पकड़ तीसरा दिन समाप्त होते होते और मजबूत कर ली जाए।
1: बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर होगी और स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में देंगे हम आपको एक एक अपडेट। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी के नागी कानिजा में हुए प्रतिष्ठित कानिजा ओपन में ग्रुप ए का खिताब अपने नाम कर लिया है।
0: प्रणेश ने रोमांचक 9वें राउंड के बाद टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: प्रणेश ने 9 राउंड में 7 अंक हासिल किए और 3 अन्य खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान साझा किया। उन्होंने बेहतर ट्राई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता, जबकि इसराइल की ओर ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रे वोलोकिटीन और भारत के कार्तिक वेंकट रमन क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। प्रणेश की ये जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शतरंज के बढ़ते दबदबे का एक और बेहतरीन उदाहरण है। तमिलनाडु के कराईकुड़ी में जन्मे मुनीरथिनम प्रणेश स्टॉकहोम में रिल्टन कप जीतने के बाद जनवरी 2023 में वे भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने थे। प्रणेश ने साल 2020 में दिल्ली जीएम ओपन में इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल और पहला जीएम नॉर्म हासिल किया। इसके बाद उन्होंने साल 2023 में रिल्टन कप जीतकर भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने। साल 2025 में प्रणेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में चैलेंजर सेक्शन जीता था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: जी हाँ शक्ति, अगर हम देखें तो प्रणेश ने कुल 9 राउंड में 7 अंक हासिल किए। 4 खिलाड़ियों के बराबर अंक होने के बावजूद बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया गया। उनके साथ और ब्रॉन्स्टीन, एंड्रे वोल्वोकिटिन और भारत के कार्तिक भी 7 अंकों पर रहे, लेकिन जिस तरीके से उनको टाई ब्रेक में अंक मिले तो वो विनर घोषित हुए।
0: जी बिल्कुल, और इस पूरे पूल में देखा जाए 250 से अधिक खिलाड़ी थे और भारतीय खिलाड़ी पहला स्थान हो, दूसरा स्थान हो, इसके बाद भी नजर आते हैं आपको इस सूची में लगातार। और महज इस प्रतियोगिता की बात क्यों की जाए, भारतीय शतरंज खिलाड़ी, भारतीय ग्रैंड मास्टर जहां भी उतरते हैं, जो एक लय शुरू हुई थी विश्वनाथन आनंद से, वो आज तक लजिसी बहुत अच्छे ढंग से ट्रांसफर होती हुई चेस के कोर्ट पे नजर आती है।
1: बिल्कुल, ये भारत का दबदबा अभी भी कायम है। प्रणेश की अगर हम देखें तो मौजूदा फिडे रेटिंग 2673 है और अगस्त 2026 की रैंकिंग में वो दुनिया के 44वें नंबर के खिलाड़ी हैं। वो पहले से ही विश्व शतरंज के युवा सितारों में गिने जाते हैं और अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैदान में ये खिताब जीतकर एक बार फिर भारतीय शतरंज की ताकत दिखाई है।
0: जी बिल्कुल, ये युवा सितारा जो है अब एक नई लौ की तरफ बढ़ चुका है और दुनिया ने शायद एक और नए सितारे का नाम अब याद करना शुरू कर दिया है।
1: जी हाँ, तो ये तो खबर थी शतरंज से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को देश भर में एक विशाल कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करेंगे।
0: जी बिल्कुल, ये वर्चुअल संबोधन होगा और इस पहल के द्वारा देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर युवाओं को, खिलाड़ियों को और शिक्षण संस्थान एक साथ आएंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: ये कार्यक्रम खेल प्रेमी युवाओं और भारत के नीति निर्माताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रयास है, जिससे युवाओं को अपने विचार, अनुभव और सुझाव साझा करने का अवसर मिलेगा। युवा खेल और युवाओं से जुड़े 4 मुख्य विषयों पर अपने विचार, सुझाव और नए आइडिया साझा करेंगे। पहला, बेहतर सुविधाएं, कोचिंग और मौके जमीनी स्तर तक पहुंचाकर खेल इकोसिस्टम को मजबूत करना। दूसरा, वैज्ञानिक तरीके से टैलेंट की पहचान और एथलीट के विकास पर ध्यान देते हुए 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट को तैयार करना। तीसरा, युवा नेतृत्व को मजबूत करना और शासन प्रशासन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। चौथा, विकसित भारत के लिए युवाओं का सशक्तिकरण, जिसमें भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स, वॉलंटियरिंग और राष्ट्र निर्माण के मौके शामिल है। इस कार्यक्रम के जरिए मिले सुझाव सीधे पॉलिसी बनाने वालों और खेल इकोसिस्टम तक पहुंचाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। मनिका बत्रा, दीपा कर्माकर, साइना नेहवाल, गगन नारंग, सृजेश, मैरी कॉम, बाईचुंग भूटिया, गोपीचंद, अंजू बॉबी जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, पीटी उषा और जाने माने क्रिकेटरों समेत भारत के प्रमुख खिलाड़ी और पदक विजेता युवाओं से सीधे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यों के खेल मंत्री हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित भारत युवा लीडर संवाद क्विज आयोजित की जाएगी। युवाओं को माई भारत पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।

0: जी हाँ, खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ। ये जो खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया जा रहा है, शक्ति अगर हम देखें तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो खेलों को लेकर बहुत ज़्यादा हमेशा उनके अंदर उत्साह रहता है और खिलाड़ियों से एक व्यक्तिगत रूप से भी कनेक्ट रहते हैं। कोई भी टूर्नामेंट हो, कभी भी हो, तो एक जिस तरह से एक बदलाव आया है पिछले 10 सालों में, अगर हम ये कहें कि खेल की दुनिया में भारत को जिस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिला है, जिस तरह की योजनाएँ आई हैं, तो उसी के तहत जो ये संवाद हो रहा है खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ, सबकी नज़र इस पर लगी है शक्ति।
1: जी बिल्कुल, आपने प्रधानमंत्री के संवाद और लगाव की बात की, मुझे बार बार वो लम्हा याद आता है जब भारतीय टीम विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में अनफॉर्चुनेटली एक हार मिली थी
0: जी
1: और प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम तक गए और प्रत्येक खिलाड़ी से मिलना। जीत में आपके साथ सब खड़े होते हैं, लेकिन कोई आपके साथ हार में खड़ा है तो बताता है कि समर्थन क्या है। हम इस जब सूची को देखते हैं खिलाड़ियों की,
0: जी
1: यहाँ पे बैडमिंटन की साइना नेहवाल हैं, जिमनास्ट से दीपा करमारकर हैं, गगन नारंग शूटिंग से आते हैं, श्रीजेश हॉकी से हैं, तो अब भारत वन मैन शो वाला देश नहीं है सिद्धार्थ। हर खेल में, हर कोर्ट में, हर मैदान में हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और किस तरीके से प्रधानमंत्री जी इस पर संवाद करते हैं, लोगों के साथ चर्चा करते हैं। और ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को इसका वर्चुअल आयोजन किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। एम्स्टर्डम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 गोल से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही विश्व कप में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। और शक्ति, अगर हम देखें तो पूरे इस स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में स्पेशली आपने इस पूरे विश्व कप को लगातार हम कवर करते आए हैं और हर एक इवेंट पर हमारी नज़र थी। आज का दिन थोड़ा मायूसी भरा था क्योंकि एक बड़े अंतर से हम जीतने की कोशिश कर रहे थे।
1: जी बिल्कुल, और पहली जीत जो भारत ने विश्व कप में दर्ज की वेल्स पर 3-1 से, और वो पाकिस्तान की जीत शायद वर्षों वर्षों याद रखी जाएगी।
0: जी
1: एक सपना था कि 50 साल बाद पदक जीतेंगे, लेकिन आज हम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुए। जैसा आपने बताया कि सेमीफाइनल का भारत का अभियान समाप्त हुआ, लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में और बड़े आयोजनों में भारतीय टीम जो है वापस, जिसके लिए भारतीय हॉकी जानी जाती है, उस प्रदर्शन को दोहराएगी।
0: बिल्कुल, तो जिस तरह से आज पूरा ये मैच हुआ है, अब फिलहाल जो है सेमीफाइनल के लिए भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। टेनिस में आर्थर फिल्स ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर सिनसिनाटी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये फिल्स का पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब है।
1: वहीं महिलाओं की इनमें कोको गॉफ ने हमवतन जैसिका पेगुला के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए अपना दूसरा सिनसिनाटी ओपन टाइटल दर्ज किया है सिद्धार्थ, और बेहद सरल मुकाबला रहा कोको के लिए, 6-2 6-4 से जीत दर्ज की है उन्होंने।
0: बिल्कुल, और सिनसिनाटी ओपन की अगर हम बात करें तो यूएस का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। 18 सितंबर 1899 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूएस में यूएस ओपन और इंडियन वेल ओपन के बाद तीसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। हालांकि श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। बातें तो शक्ति बहुत सारी हैं, लेकिन अब फिलहाल हमें लेनी होगी इजाज़त।
1: जी बिल्कुल, और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पे अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और सिद्धार्थ को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503

0: रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
1: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
3: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्रिस्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी

0: पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: ओडिशा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी

0: अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
1: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्सलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत की टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Peking for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka.

आज के इस कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गजल गायकी के एक अनमोल सितारे तलत अजीज। सफर शुरू करते हैं उनके कुछ बेहतरीन गजलों के साथ।

वाह, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। फिल्म उमराव जान उनकी सबसे मशहूर गजलों में से एक है।

दोस्तों, ये गजल सुनते ही जैसे एक अलग ही दुनिया में खो जाने का एहसास होता है। तलत अजीज की गायकी में एक अलग ही नजाकत है जो उनके हर लफ्ज को और भी खूबसूरत बना देती है।

तलत अजीज साहब का जन्म 11 नवंबर 1956 को हैदराबाद में हुआ। उन्होंने उस्ताद समद खान और उस्ताद फयाज अहमद खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। उनकी गायकी को निखारने में मेहदी हसन साहब का भी बड़ा योगदान रहा। 1980 में उनका पहला एल्बम आया, जिसे जगजीत सिंह ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और गजल एल्बम्स में अपनी आवाज का जादू बखेरा।

दोस्तों, ये गजल हर बार सुनने पर नई सी लगती है। सचमुच तलत अजीज की आवाज में एक अनूठी कशिश है। उनकी गजलें हमें गुजरे वक्त की यादों में ले जाती हैं और दिल के जज्बातों को बयां करती हैं।

आंखें बंद। दोस्तों, तलत अजीज की गजलों में वो सच्चाई है जो दिल को सुकून देती है। उनकी आवाज ने गजल प्रेमियों को जो सौगातें दी हैं वो अमर रहेंगी।

दोस्तों, मेहदी हसन साहब को अपना उस्ताद मानने वाले तलत अजीज ने एक बार उनसे पूछा कि गजल गायकी में सबसे जरूरी चीज क्या होती है। तो मेहदी हसन ने जवाब दिया, सब्र और एहसास, जो तलत अजीज ने अपनी गायकी में अपनाया।

बहुत कम लोग जानते हैं कि तलत अजीज ने अमिताभ बच्चन की फिल्म सिलसिला जो 1981 में आई थी के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में वह गाना फिल्म में शामिल नहीं किया गया। तलत अजीज ने सिर्फ गजल गायकी ही नहीं बल्कि अभिनय में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने 1991 में आई टीवी सीरीज सैलाब

0: गली।
1: तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। तलत अजीज की गजलों ने हमारी रूह को छू लिया है और उनकी आवाज का जादू हमेशा हमारे दिलों में गूंजता रहेगा। चलते चलते तलत साहब के गाए इस खूबसूरत शेर के साथ आपसे विदा लेते हैं। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते।

इसी एहसास के साथ मैं पुष्पेंद्र आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई महफिल में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। श्रोताओं, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हर तीसरा युवा भारतीय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे युवाओं के हाथ में डिग्री है, और अगर डिग्री है तो क्या उनके पास हुनर है? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अगर डिग्री नहीं भी है तो आप स्किल सीख कर आप रोज़गार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना और कौशल विकास के माध्यम से रोज़गार के अवसर सृजित करना। और इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमने अपने दो विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारी पहली मेहमान है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर जी। नमस्कार मानसी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

0: मुझे यहाँ आज बुलाने के लिए।
1: और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री प्रशांत सिन्हा जी। प्रशांत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
1: और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओ, हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं। नंबर है 0112331 0418 0112371717 0112371716 और 0112331 4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। आप #AskAIR के साथ एक्स पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मानसी जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कौशल विकास क्या है, यानी स्किल डेवलपमेंट क्या है, और इसमें कौन सी सरकारी योजनाएं आती हैं?
0: धन्यवाद जी। सबसे प्रथम तो आपने जैसे शुरुआत की थी कि कौशल विकास वो है जो अपनी हुनर को निरंतर तौर पर तराशना और उसे बेहतर करना, इसको हम कौशल विकास कहते हैं। इससे हमें ये मिलता है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको करना आना चाहिए। केवल, जैसे आपने ठीक बोला, एक होता है डिग्री लेना, दूसरा होता है वो कौशल प्राप्त करना, वो हुनर प्राप्त करना, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे मंत्रालय ने बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हैं चला रहे हैं हम लोग, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत से ऐसी योजनाएं लाए हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में अलग अलग स्तर पर आपके कौशल को कैसे बेहतर किया जा सके उस पर काम करते हैं। चाहे वो स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, जिसके तहत हम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स दे रहे हैं हम लोग 3 से 6 महीने के। साथ ही हमारे पास जन शिक्षण संस्थान है जो निचले स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं उनको कैसे हम कौशल प्रदान करें, और वो हम लोग ये भी प्रदान करें कि वो कुछ अपने ज़िंदगी में एम्प्लॉयबल हो पाएँ या कुछ पैसे कमा पाएँ। और वैसे ही हमारा एक ITI इकोसिस्टम है जिस पे हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से कौशल दे रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत से हमारी योजनाएँ भी हैं। तो इस प्रकार से हर स्तर पर अलग अलग लोगों के लिए उनके ज़रूरतों के हिसाब से हमारा मंत्रालय अलग योजनाएं प्रदान कर रहा है
1: जी। आज प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे भी एक है कि जो NSDC है वो कौन सी स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें तुरंत नौकरी मिल जाती है?
2: जी, इसको एक परिवेश में समझना होगा। कोई भी बच्चा जब आता है तो उसकी एक कार्य क्षमता होता है, उसकी एक इंटरेस्ट होती है, वो क्या लाइफ में आगे करना चाहता है, कहाँ काम करना चाहता है। तो ये बस इस चीज़ के, यू नो, इसको इस तरह से सिर्फ नहीं देखा जा सकता।

0: सब मिला जुला के देखना पड़ेगा
1: जी। और अब आइए हम अपने श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र जी।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते
2: सर। मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे ये मालूम करना है, प्रधानमंत्री जी नौकरियों के लेटर बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, और आप भी बहुत सारे प्रपोजल चलाते हैं, क्या ब्लाइंड के लिए प्रपोजल कोई है आपके पास?
0: भूपेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, इसमें हम बहुत बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं जो कि किसी एक वर्ग के तरफ ज़्यादा उसके ज़रूरतों के हिसाब से होता है। तो बीच बीच में बहुत सारे हम स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, और वहाँ पे बीच बीच में ऐसा हुआ है कि PWD के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स बने हैं प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर, ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, और साथ साथ स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी पास में चलाए गए हैं, जहां क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जब किसी तरह की इस तरह की शारीरिक क्षमता की बात आती है, तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह के नौकरियों में किस तरह के लोग योगदान कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह के नौकरियों में वो कैसे लोग को एक्सेप्ट करेंगे।

0: संचालित किए जाते हैं।
1: साथ में मैं ये
2: जी
1: भी इसमें जोड़ना चाहूँगी भूपेंद्र जी कि हमारा जो ITI इकोसिस्टम है, इसमें जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी ब्रेल के हिसाब से जो लर्निंग टूल्स हैं वो भी बनाए गए हैं। तो कुछ ट्रेड्स जो हैं उसमें पूरा एक लर्निंग टूल्स उनके लिए प्रदान किए जाते हैं जिसके थ्रू शिक्षण दिया जाता है।
2: मानसी जी, आपने ITI की बात करी है तो इसमें सबसे पहला सवाल जो आ जाता है PM सेतु का आ जाता है। तो ये नवीनतम योजना है सरकार की, तो इसके माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर ये ध्यान भी दे रही है, तो ITI इकोसिस्टम को कैसे बदलेगा?
1: जी, PM सेतु एक जरिया है जिससे हमारे जो ITIs हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे ITIs बहुत ही कोर रिक्वायरमेंट्स हमारे जो होते हैं ट्रेड्स के वो प्रदान करता है, पर उसको इंडस्ट्री बहुत बार कहता था कि भाई आप जो अपने ITIs में प्रदान कर रहे हैं क्या वो रोज़गार योग्य हैं, हमें और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इसी सोच के द्वारा PM सेतु का ये मकसद है कि इंडस्ट्री को साथ लेकर, उद्योगों को साथ लेकर हम लोग वो ट्रेनिंग ITIs में प्रदान करें। तो इसमें भागीदारी के द्वारा प्रदान किया जाएगा, एक हमारे देश में 1000 ITIs का कायाकल्प किया जाएगा, उसमें इंडस्ट्री भागीदार रहेगा, इंडस्ट्री, स्टेट और सेंटर मिलकर एक वहाँ स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी जिसमें इंडस्ट्री उसको चलाएगा। जब इंडस्ट्री चलाता है तो उससे क्या होगा कि जो डिसीजंस हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री योग्य है, क्या उसको बेहतर किया जाना चाहिए या नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उसके बारे में बात की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा व्यय किया जाएगा। एक क्लस्टर में जिसमें लगभग 5 ITIs होते हैं, उसमें 241 करोड़ तक की का बजट वहां प्रावधान किया गया है, और ऐसे पूरे स्कीम 60,000 करोड़ की स्कीम है। इट इज द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम इन द स्किलिंग साइड प्रेजेंटली। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का ये एक विजन है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री, ऑलरेडी हमारा वाइजैग और लगभग 8 क्लस्टर्स इंडस्ट्री को हम ला चुके हैं। वाइजैग में आर्सलर मित्तल निपॉन स्टील आ गया है, जिंदल्स आ गए हैं, तो ये इंडस्ट्री पूरा होलिस्टिक डेवलप करेगा। बस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होगी, पर फैकल्टी कैसी है, इंडस्ट्री अपनी फैकल्टी भी ला सकती है, कोर्सेज क्या हैं, क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लाने हैं, तो हमारे ITIs को कैसे एस्पिरेशनल और बेहतर आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर स्किल रेडी कैसे बनाया जाएगा, ये जवाब PM सेतु लाता है।
2: बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो ये एक नारा भी है। और अब एक और श्रोता हमसे हम ले लेते हैं, शिमला से राकेश जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी राकेश जी।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला।
2: नमस्कार।
3: और मेरा ये प्रश्न ये है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्किल इंडिया डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और हमें ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या क्या सुविधा है, ये मेरा प्रश्न।
1: जी राकेश जी, धन्यवाद। कोटखाई ये सब तो मैं स्वयं भी जा चुकी हूँ तो मुझे पता है। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी जो ITIs हैं हर जिले के स्तर पर, भी आइडिया ये है कि उन ITIs के द्वारा जो है, वहाँ बहुत से ITIs में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं, तो ग्रामीण इलाकों से उधर बच्चे आ सकते हैं और उधर अपना स्किल पा सकते हैं। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इसमें अभी प्रशांत जी और इसके बारे में बताएंगे, पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के भी बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग जगह, उसमें अलग अलग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी प्रदान की जाती हैं। मैंने जो जन शिक्षण संस्थान की बात की, जैसे शिमला में एक सेंटर है, पर ज़रूरत के अनुसार उनको सैटेलाइट सेंटर्स भी ले जाकर डोर स्टेप स्किलिंग जहां आवश्यकता है उधर वो भी प्रदान करते हैं। तो इसमें मैं प्रशांत जी से बोलूंगी आगे, प्लीज बताने।
0: जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं, और ये स्किल मंत्रालय के अलावा कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। खासकर जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सेंटर्स चलाते हैं, और उनका पूरा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्र ही हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ही ये स्कीम चलती है। तो जैसे मैम ने बोला, जन शिक्षण संस्थान भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, बहुत सारे शॉर्ट

0: टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सेंटर्स भी दूर दराज के एरियाज़ में होते हैं। हर स्टेट सेंटर में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का प्रावधान है और बाकी उसके 7 सेंटर्स हैं। आजकल पीएम विश्वकर्मा योजना खासकर जो है वो आर्टिजन्स पे फोकस्ड है, उस पे मेसनरी, टेलरी, फॉरेस्ट्री इस तरह के स्किल्स पे फोकस है, और ये भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही सुविधा और स्किल्स और लोन देने के लिए ये स्कीम अभी भी चल रही है। तो आप इन तरह के स्कीम्स के लाभ उठा सकते हैं।
1: प्रशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तकनीक से हमेशा वो सीमित रही हैं, तो ऐसे में स्किल इंडिया के आने के बाद से क्या उनका मनोबल बढ़ा है या रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं?
0: मैम आप लेना चाहिए।
2: हाँ जी जी सर्वप्रथम तो जैसे अभी कहा गया, ये हमारी मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट, हम सब बहुत से ऐसे योजनाएं चलाते हैं जो वहाँ जैसे पंचायत घरों में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया
1: जी
2: जाता है। जन शिक्षण संस्थानों की बात करूं तो उसकी मंशा ही यही थी कि बहुत सी महिलाएं जिनको वर्कफोर्स से ड्रॉप आउट होना पड़ता है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, क्या उनके लिए हम एक सुविधा ला सकते हैं जहां हम उनके करीब जाकर उनकी ट्रेनिंग कर पाएं। वैसे ही DDU GKY
1: जी
2: स्कीम भी उसी मंशा से चलाई जा रही है। जन शिक्षण संस्थान में हमारे अगर आप बेनिफिशरीज देखें तो 83 से 84% जो हैं वो महिलाएं ही
1: जी
2: हैं। तो मनोबल उनका इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत से हम देखते हैं हमारे बेनिफिशरीज, ठीक है, उन्होंने अगर टेलरिंग का ही काम सीखा तो वो घर पर वो बनाकर अपने आसपास पड़ोसियों के लिए अपने गांव में वो प्रोवाइड कर रही हैं सुविधाएं, ब्यूटिशियन वाला। पर साथ ही साथ महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अब मैं बताना चाहूँगी कि अब महिलाएं जो हैं ट्रेडिशनल ट्रेड्स तक नहीं रही
1: जी
2: हैं। आप देखिए हमारी कुछ ITIs हैं जिसमें महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आई हैं। एक ITI जहाँ पर ड्राइविंग का कोर्स सिखाया जा रहा
1: बिल्कुल,
2: है,
1: ई रिक्शा तक
2: आप
1: चला
2: ई
1: रही
2: रिक्शा
1: हैं।
2: तक
1: जी
2: चला रही
1: जी
2: हैं, पिंक पिंक कैब्स ये सब चलाई जा रही हैं। तो हमारी महिलाएं जो हैं अब उनका मनोबल इतना बड़ा है। अगर मैं आपको एनरोलमेंट्स की बात करूंगी कि
1: जी
2: तो अब हमारे एनरोलमेंट्स इतने बढ़ गए हैं, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है वो भी बहुत बढ़ चुका है, 41% पहुंच चुका है। तो मनोबल तो बढ़ रहा है, अब हमें अपनी महिलाओं को और ऐसी सुविधाएं देनी
1: जी
2: है कि वो इन सारे योजनाओं का लाभ उठा सकें और नए ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन टेक्नीशियन सब में महिलाएं अब आगे
1: जी
2: बढ़ रही हैं।
1: चलिए मानसी जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी का। जी रवि जी
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी,
1: नमस्कार,
3: और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्ते,
3: आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: हाँ थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ITI से प्रशिक्षित एम्प्लॉयमेंट हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका प्रशिक्षण आगे मैं कहाँ ले सकता हूँ। खासकर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और मैं मतलब वाक्पटुता में भी थोड़ा सा मतलब अच्छा हूँ। मतलब मैं स्पीच थेरेपी मेरी अच्छी है मैम, ये जानना चाहता हूँ मैं।
2: जी रवि जी, आपने ITI से प्रशिक्षण ले लिया है ये मैंने समझा आपके प्रश्न में, तो इसके बाद एक अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग करनी है तो आपके पास बहुत से चीज़ें, यदि आप बोल रहे हो कि आप स्पीच इसमें भी अच्छे हो, यानी यदि आप पढ़ाना चाहते हो, आपने कुछ प्रशिक्षण लिया पढ़ाना चाहते हो, तो हमारे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत जिन्होंने ITI से प्रशिक्षण किया या कहीं से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है वो यदि पढ़ाना चाहते हैं ITI इकोसिस्टम में तो वो एडवांस कोर्स करके आ सकते हैं। उसके अलावा एडवांस्ड ट्रेनिंग्स भी हैं जो आप NSTIs या ग्लोबल हमारे स्किल सेंटर्स हैं उधर आप कर सकते हो, और उधर उसको लेकर फिर उसके हिसाब से आगे आपके लिए और एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ेगी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो आप ये दोनों चीज़ें जो आपको ठीक लगे वो आप उस लाइन पर आगे बढ़ सकते हो।
1: प्रशांत जी, मानसी जी ने बता दिया कि ट्रेनिंग के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे, अक्सर युवाओं का ये प्रश्न होता है कि ट्रेनिंग तो हम लोगों ने कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो NSDC प्लेसमेंट को कैसे सुनिश्चित करता है?
0: देखिए प्लेसमेंट्स बहुत सारे दिशाओं पे इस पे काम होता है।
1: जी
0: जैसे कि मैम

0: रही थी कि आप आईटीआई से निकले तो आपके पास एक ऑप्शन है, हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चलती है
1: जी
0: जिसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप के कोर्सेज कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि आईटीआई करने के बाद बहुत सारे बच्चे नैप्स में आते हैं और साल भर या वैसा जो भी प्रोविज़न हो उसमें वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। और चूंकि अप्रेंटिसशिप एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां वो इंडस्ट्री के अंदर होती है, तो आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनता, जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसी
1: जी
0: इक्विपमेंट पे उसी सिस्टम पे आप काम करते हैं। तो उससे नौकरियां काफ़ी, या तो वो जो कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप दे रही है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अदरवाइज आपको दूसरी जगह भी नौकरी मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। दूसरा हमारा एक सिद्ध पोर्टल है स्किल
1: जी
0: इंडिया डिजिटल हब। अगर आप मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये जो पोर्टल है इस पे अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कोर्सेज सेलेक्ट करने के, जॉब सेलेक्ट करने के लिए, उस पे अप्लाई करने के लिए। तो आप उस पोर्टल पे जाएं और देखें कि क्या नौकरियां हैं। काफ़ी सारी नौकरियां, लाखों में नौकरियां वहाँ पे एग्रीगेट की गई हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे, हम लोग कौशल महोत्सव करते हैं अभी बेलूर घाट बंगाल में, काफ़ी इंटीरियर में जाके हम लोगों ने
1: जी
0: किया, काफ़ी भीड़ जमा हुई, इसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे आए। तो इस तरह के अप्रेंटिसशिप मेलास, जॉब मेलास, ये रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। आप उस पर नज़र रखिए, अगर आपके एरिया में हो रहा है तो आप उसका लाभ उठा
1: जी
0: सकते हैं।
1: प्रशांत जी, सिद्ध पोर्टल के अलावा कोई ऐसा नंबर जिसमें कि हमारे श्रोता जो हैं आपसे संपर्क कर सकें और इसके बारे में, इस योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें?
0: जी सो अगर आप सिद्ध पोर्टल पे जाते हैं तो उसका आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पोर्टल पे भी जा सकते हैं अपने ब्राउज़र के द्वारा। और आप वहाँ जाएंगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में आपको एक नंबर भी मिलेगा, ये मंडे टू सैटरडे 9 to 6 ऑपरेट करता है।
1: जी
0: इसमें 8800055555, 5 बार 5, ये नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको एक फॉर्म भी खुल जाएगा और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो फॉर्म भर के हमें वहाँ पे वेबसाइट पे ही सबमिट कर सकते हैं।
1: और अब एक और श्रोता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी
2: धन्यवाद, नमस्कार। मैं ये
1: नमस्कार।
2: पूछना चाहता था कि जो अनस्किल्ड यूथ है, स्किल्ड नहीं, किसी तरह से अप्रेंटिसशिप नहीं और क्वालिफाइड है, उसके लिए क्या जो है रोजगार का माध्यम?
1: रमाशंकर जी कहना चाहते हैं डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है उनके पास, तो उसमें क्या संभावना है? क्या आपके प्रश्न को सही समझ रहे हैं रमाशंकर जी?
2: जी,
1: स्किल्ड आप हैं, मतलब डिग्री आपके पास है लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है।
3: जी, तो अभी जैसे प्रशांत जी ने बताया, रमाशंकर जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आज हर जगह गांव में भी बच्चे ऐप डाउनलोड करते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ आप सिद्ध वाला ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। जब आप उस ऐप में आगे जाएंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं हैं, और फिर आपका रुझान कौन से सेक्टर्स तरफ है, ऐसे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको रजिस्टर होने बोला जाएगा। उसके बाद आपके रुझान के हिसाब से यदि आप देखते हैं कि कुछ उधर अवेलेबल हैं कोर्सेज, आप वो कर सकते हैं। ये तो हुआ सिद्ध पोर्टल की बात। इसके अलावा अगर आपको अगर आपके पास जैसे 8वीं आपने पास की है या फिर 10वीं की है और आपको लगता है कि आप कुछ कौशल, आप एक हुनर पाना चाहते हैं, तो आप हमारे ITIs में भी आ सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूँगी, कुछ बच्चे जैसे आपने कहा कि अनस्किल्ड ये रहते हैं, पर कुछ बच्चे जो 8वीं पास करके भी हमारे ITIs में आते हैं, हमने ऐसा प्रावधान दिया है कि वो 10वीं का सर्टिफिकेट भी एक दो लैंग्वेज पेपर्स साथ में लेकर, टाई अप है हमारे मंत्रालय का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज़ के साथ, और वो 12वीं, 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट भी लेते हैं और साथ में हुनर भी प्राप्त करते हैं, तो दो चीज़ें इकट्ठे पा सकते हैं वो लोग। तो और हुनर का कोई ऐसे एज ये नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल, हमने अभी जो भी आपको योजनाओं के बारे में बताया, आप उसमें यदि वो एज ब्रैकेट में हैं तो बिल्कुल आप आकर कोई भी हुनर पा सकते हैं। और स्किलिंग का ऐसे तो कोई एज नहीं होता है, आप हमारे सिद्ध पर भी देखेंगे वेरियस एज ग्रुप्स के लिए हमने प्रावधान दिया हुआ है स्किलिंग का।
1: बिल्कुल मानसी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहें कुछ नया सीख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, मानसी जी आपसे ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने बात कर ली स्किल्स के बारे में, ब्यूटिशियन

0: IIT है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल की यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की, तो किस तरह के कोर्सेज की डिमांड है इसमें?
1: जी, आजकल बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, एक जैसे अभी प्रशांत जी ने भी बोला था, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें डिमांड हमारा नेशनली नहीं इंटरनेशनल भी है काफ़ी। दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी यानी जिसमें चाहे वो चाइल्ड केयर हो या जेरियाट्रिक केयर, यानी बच्चों का ध्यान यदि रखना हो या बुज़ुर्गों का, उसके लिए अभी बहुत से जैसे जापान, जर्मनी, इन देशों में बहुत मांग है और हमारे बच्चे जा भी रहे हैं। तो उनके लिए हमारे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं, जहाँ पर हम लोग लैंग्वेज ट्रेनिंग भी करा रहे हैं अलग अलग हुनर में, जो नॉन मेडिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं, फिर कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स हैं, और भी हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड भी हैं। तो इसमें हमारे बच्चे पर केयर इकोनॉमी में आजकल खास करके बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है और डिमांड भी
0: बिल्कुल,
1: है।
0: ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है घर पे बच्चों के साथ कोई रहे या फिर आपके साथ जो बुज़ुर्ग रह रहे हैं तो उनके साथ कोई रहे, तो ये एक अच्छी पहल है मुझे लगता है प्रशांत जी।
2: जी, इंटरनेशनल मोबिलिटी में जैसा हम जानते हैं, यू नो, जो बल्क ऑफ द लेबर फोर्स फ्यूचर के होने वाली है वो इंडिया से ही जाएगी, और इसका डिमांड बहुत ही तेज़ी से हमने देखा है कि लास्ट पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और एक बहुत ही यू नो डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स है। हेल्थ केयर में ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा है, हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा है, इस तरह के सेक्टर्स में ज़्यादा है। बट अभी मैं दो तीन दिन पहले ही SIIC मैम ने बोला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गुवाहाटी में था, और वहाँ पे मुझे बच्चे जर्मन ट्रेनिंग करते हुए मिले, और उसमें फाइनेंस के भी बच्चे थे, नर्स भी थी, उसके बाद कुछ बच्चे थे जो हॉस्पिटैलिटी में जा रहे थे। तो वो लोग गुवाहाटी और आसपास के एरियाज़ में, बहुत लोग आसपास के स्टेट से आके गुवाहाटी में रह के लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी, अगर जिन लोगों को विदेश में जाके एक करियर बनाने की इच्छा है उसके लिए SIIC और NSDC इंटरनेशनल और इस तरह के जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू जुड़ें, क्योंकि एक स्किल्ड माइग्रेशन, लीगल माइग्रेशन जो कि सही ढंग से माइग्रेशन हो और अच्छे नौकरियों में जाएं, ये इस तरह के रास्ते जो हैं ज़्यादा सुनिश्चित करते हैं।
0: जी, और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा से संजीव जी। जी संजीव जी।
3: जी नमस्कार आप सभी को।
0: नमस्कार
3: जी, मैंने कोर्स किया मैडम जी DDUGKY में यहाँ यमुनानगर से, और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा जी? तक ना तो कोई जॉब मिली, ना एग्जाम होया और ना सर्टिफिकेट मिला जी। बैटरी पेंटिंग का कोर्स किया और ड्रोन।
0: संजीव जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताइएगा आपने किस चीज का कोर्स किया है?
3: जी DDUGKY में बैटरी रिपेयरिंग का कोर्स किया।
0: बैटरी रिपेयरिंग,
3: हाँ जी। और
0: ठीक है,
3: ड्रोन का भी कोर्स किया।
0: ड्रोन का भी किया आपने? जी
3: हाँ जी। तो अभी तक ना तो कोई जॉब मिली, ना एग्जाम हो, और मेरी एज भी 44 होगी, तो ये बोलते हैं कई जगह के भाई आपकी एज ज्यादा है, तो अब क्या कर सकते हैं मैडम?
0: इन्होंने ड्रोन का कोर्स किया है और बैटरी का रिपेयरिंग का कोर्स किया है, और एज जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि एज ज़्यादा है, तो कैसे होगा?
2: जी संजीव जी, नौकरियों का अपनी एक रियलिटी होती है, मुझे पता नहीं आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं, पर ड्रोन में ज़्यादातर आप अपना काम कर सकते हैं। हमारी अगर आप ड्रोन दीदी टाइप के स्कीम्स देखें तो उसमें एग्रीकल्चर में ड्रोन का एप्लीकेशन है, उसमें आप अपनी थोड़ी कमाई कर सकते हैं। शादियों में ड्रोन है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज अब ड्रोन में नौकरियां दे रही हैं क्योंकि ड्रोन का एप्लीकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो अगर आपने खुद का काम करने का, पता नहीं आपने कोई संभावना तलाश की है कि नहीं की है, अगर आसपास आपकी नौकरी नहीं है तो आप एक बार ज़रूर इस बार इन संभावनाओं को देखें कि आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं किसानी में या फिर किसी और तरह के क्षेत्र में जहां ड्रोन का एप्लीकेशन है।
0: प्रशांत जी, आपने स्टार्टअप की बात करी, लेकिन सबसे पहला प्रश्न आ जाता है इसमें पैसों का, कि स्टार्टअप अगर हम लोग शुरू करें तो हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, तो इसमें क्या सरकार किस तरह का लोन प्रोवाइड करवाती है?
2: जी, इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम हो रहा है, जैसे कि आप सबसे PM विश्वकर्मा योजना जो MSME की स्कीम है उसकी स्किलिंग MSD के थ्रू हम NSDC में करते हैं, तो उसमें क्या है कि जब आप

0: बेसिक स्किलिंग हो जाती है तब आपको लोन मिलता है। और अगर आपने लोन लेके उसका किश्त जमा कर दिए तो 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग मिलती है, उसका डबल 2-2.5 लाख रुपए का लोन मिलता है।
1: जी
0: तो ये आपकी विश्वकर्मा स्कीम में जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स है उनको लोन देने का प्रोविज़न है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें लोन का प्रोविज़न रहता है।
1: जी और अब अंत में चलते चलते एक और प्रश्न हम ले लेते हैं छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से विभूति शर्मा जी का। जी विभूति जी,
2: नमस्ते सर, मैं विभूति शर्मा, सभी आपके टीम को नमस्कार। आपने मेरी बातों को सुना, जैसे कोई दृष्टिबाधित है, महिलाएं हैं, तो ऑनलाइन कुछ घर बैठे ऐसे पैसा कमाने का कोई जरिया है क्या, और ऐसा कोई स्किल है, और दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से स्किल चलाए जा रहे हैं?
1: ऑनलाइन कोर्स के बारे में समय कम है तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ी सी इसमें आप बता दीजिए।
0: जी, इसमें कुछ दिनों पहले जैसे मैं बता रहा था, मैं एक CII का सेंटर है बॉम्बे में, वो लोग एक करियर काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं और पूरा का पूरा सेंटर का जो मैनेजमेंट है 3 या 4 दृष्टिबाधित व्यक्ति उसको पूरा का संचालन करते
1: जी
0: हैं। मैं खुद उनसे मिला हूँ और बहुत ही सक्षम रूप से उस काउंसलिंग सेंटर वहाँ ऑपरेट कर रहा है। जो ये दृष्टिबाधित 3-4 लोगों की टीम है जो उसको बहुत सक्षमता से चला रही हैं। तो मैं ही बोलूँगा कि इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ संभावनाएं हैं जो कि अलग अलग स्कीमों के तरह आप उसको उसकी लाभ उठा सकते हैं।
1: जी मानसी जी, अंत में चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्किल इंडिया 2026 के रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, तो अपने श्रोताओं से क्या आप अपील करना चाहेंगी?
3: जी बिल्कुल, स्किल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सभी लोगों को जिनके पास हुनर है उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं उस हुनर को शोकेस करने का। तो मैं आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, प्लीज़ रजिस्टर करें और प्लीज़ अपने हुनर को आजमाएं, और इससे फिर जो जीतेंगे वो आगे भी जाते
1: जी
3: हैं, आगे के स्किल्स वर्ल्ड स्किल्स चैम्पियनशिप में भी जाते
1: जी
3: हैं।
1: बिल्कुल, जो
3: तो
1: चीन की शंघाई में होने वाली है,
3: 15 सितंबर तक हमारे रजिस्ट्रेशन खुले हैं, तो आप लोग प्लीज आए और रजिस्टर करें।
1: तो इसके साथ ही आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे दीजिए फरहत नाज को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार,
3: नमस्ते।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस अंक में सबसे पहले आप सुनेंगे सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत, और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे
1: कराटे खिलाड़ी एकांश अग्नानी से बातचीत। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का अंशदान है।
0: तो पहले सुनिए सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का अंशदान है।
2: खेल जगत के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, खेल जगत के इस अंक में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वर्तमान में श्रीमती विजया राजे सिंधिया खेल संकुल झालावाड़ में स्थानीय खिलाड़ियों को सॉफ्ट बॉल के गुर सिखाने वाले सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से। विशाल चौधरी के बारे में आपको बता दें मित्रों कि खेलो इंडिया से लेकर कई बार आप नेशनल सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और झालावाड़ जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। साथ ही बेसबॉल में भी आप नेशनल खेले हैं और इसी साल यानी 2026 में भी विशाल ने उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित वेस्ट जोन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 में पार्टिसिपेट किया और अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया है। विशाल नमस्कार, खेल जगत में आपका हार्दिक स्वागत है।
3: नमस्कार सर।
2: विशाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट बॉल की दुनिया में आपका सफर कैसे शुरू हुआ?
3: सर, मेरा सॉफ्ट बॉल की दुनिया में सफर जब मैं 6th क्लास पढ़ता था तब से शुरू हुआ। जो मेरे सीनियर थे वो इस गेम को बहुत ही

0: आकर्षक रूप से खेल, तो मेरा भी उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा और फिर उनके साथ खेलने लगा तो मेरे को अच्छा लगा। एक्चुअली में क्या है, अलग से गेम लगता था, अलग से खेलना, उसे बैट गोल वाला स्लाइगर बड़ा सा बॉल, तो एक अलग सा मजा आता है कि इतने इस बॉल को पकड़ने के बाद बहुत मजे आएंगे।
1: आज के जमाने में क्रिकेट का बोलबाला है
0: जी,
1: और लगभग हर युवक चाहता है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बने, ऑलराउंडर बैट्समैन बने।
0: सर मेरा भी एक क्रिकेट का एक्चुअली में था, हम भी क्रिकेट बहुत खेलते थे, बट जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखते हैं लोगों को, देखते हैं क्रिकेट में डिमोटिवेट होते हुए, कुछ ही लोग सक्सेस हो पाए हैं, बट मेरे को अलग से अच्छा अच्छी फीलिंग आई उसको खेलने के बाद कि नहीं, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये भी अच्छा है, तो फिर जब से हम इससे जुड़े हुए हैं सर।
1: किसी भी युवा को, किसी भी खिलाड़ी को अपने करियर में आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार की, उसके दोस्तों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है।
0: जी जी जी।
1: तो आपको ये सपोर्ट कैसा मिला?
0: एक्चुअली मेरे पापा को भी शुरू से यही शौक था, हमारे गांव में वॉलीबॉल फुटबॉल जो गेम चलता, मेरे पिताजी भी इसे गेम से जुड़े, पापा को एक्चुअली उनको पता था कि गेम खेलेगा ना कोई ना कुछ करेगा, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ जितने भी साथी रहे मेरे वो भी इसी गेम से जुड़े हुए थे, तो मेरे को अच्छा लगता था सर।
1: पहली बार सॉफ्टबॉल मैच आपने कहां और कैसे खेला, और किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप नेशनल तक पहुंचे और आज आप सॉफ्टबॉल के सफल प्रशिक्षक हैं, इस दौरान आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल किए?
0: सर मैं पहली बार 2013 में डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, तो उसमें मैं हमारी टीम ने पार्टिसिपेंट किया था हमने, तो वहां पर हमारी टीम विनर रही थी। उसके बाद मेरा स्टेट में चयन हुआ था, जो मैं पहली बार बीकानेर खेलने गया था, जब वहां गया तो सभी जिलों की टीमें आई और वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन, हमारे यहाँ स्लो पिच थे, वहां देखा गया तो कि बॉल स्विंग और ये इधर जा रही है और अलग सा लेवल देखने को मिला, तो दौड़ी खुशी भी हुई, तो पहला मेरा टूर्नामेंट था। उसके बाद फिर मैं सब जूनियर नेशनल खेला जो झालावाड़ में एमेच्योर द्वारा आयोजित हुआ था, तो उसमें भी झालावाड़ विनर हुआ था। फिर उसके बाद आगे जैसे मैं गया तो 2019 में मैंने नागपुर सीनियर नेशनल पहली बार पार्टिसिपेट किया, जब मेरी एज लगभग सर 19 वर्ष थी, उस टाइम मैंने सीनियर खेला। फिर मैंने उस ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम चले थे, तो मेरा मेरे बीए में एडमिशन हुआ झालावाड़ कॉलेज में, तो पहली बार किशनगंज कॉलेज द्वारा एक आयोजित हुआ था शॉर्ट बॉल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता है, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ से हमने भाग लिया, उसमें हमारी टीम विनर रही। फिर यहाँ से सिलेक्शन हुआ हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए, तो पहली बार दफा ऐसा हुआ था कि कोटा यूनिवर्सिटी की टीम पहली बार टॉप 8 में गई थी, इसमें झालावाड़ के 5 खिलाड़ी खेल रहे थे और मैं उसमें पिचर की भूमिका मैंने निभाई थी। तो सर मेरे को बहुत उसी से ही थोड़ा मोटिवेशन मिला, जब हमारा केरला से मैच था तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब फिर उसके बाद हमारा 2020-22 में जो पाली में वेस्ट जोन टूर्नामेंट हुआ उसमें हमारे विनर हुए हम। उसके बाद फिर सर 23 में फिर विनर हुआ, और फिर अभी जो 2026 में वेस्ट जोन उज्जैन में आयोजित हुआ था, तो उसमें राजस्थान की 4th प्लेस लगी सर। फिर सर जैसे बढ़ता था तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, तो मजे भी आ रहे हैं सर अब।
1: जी जी जी। देखिए बहुत अच्छे अचीवमेंट आपके हाथ लगे हैं, और इतनी उम्मीद किसी से नहीं की जाती कि इतनी बार कोई नेशनल खेल ले, आपने कई बार ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा विशाल, सॉफ्टबॉल के अलावा आप और कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं?
0: सर सॉफ्टबॉल के अलावा पहले तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, पर एक्चुअली में सॉफ्टबॉल का एक मिला जुला गेम है बेसबॉल।
1: जी जी जी।
0: तो उसको लोग बोलते हैं, इसे पहले बोला जाता था कि मर्दों का गेम है, मर्दों का गेम है, पहले एक्चुअली में क्या है, बेस सॉफ्टबॉल को लड़कियां खेलती थी और बेसबॉल को लड़के खेलते थे अमेरिका में, तो फिर उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया, तो फिर उसके बाद हम बेसबॉल खेला, तो बेसबॉल में मैं नेशनल खेलने गया पहली बार विशाखापट्टनम में नेशनल गया। उसके बाद हम भिलाई में गए, और फिर अभी लेटेस्ट में पंजाब में हुआ था, तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसको सेम गेम है, बस बॉल का फर्क है और मेजरमेंट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है सर।
1: विशाल आप बहुत लकी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों खेलों में आपने क्या अंतर देखे और क्या समानताएं देखी, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे।
0: समानताएं तो इसमें सर बहुत सी है, एक्चुअली में क्या है, ग्राउंड सेम डायमंड, प्लेयर 9 खेलते हैं, इक्विपमेंट सेम यूज होते हैं, बैट और बॉल का अलग अलग होता है सर। एक्चुअली में क्या होता है, शॉर्ट बॉल का ग्राउंड 270 फीट की होमर रन होता है, उसमें 350 फीट होता है, जिसे सॉफ्ट बॉल में थोड़ा बड़ा बॉल होता है, उसमें थोड़ा छोटा क्रिकेट के साइज का बॉल होता है। दूसरा इसमें पिचिंग, उसमें थ्रोइंग पिचिंग की जाती है, इसमें अंडर आर्म पिचिंग की जाती है। दूसरा एक बैट का जो साइज होता है वो जो लगभग 34 का होता है, तो उसमें 34 तो होता है बट उसका जो बैरल होता है उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है सर, और सब कुछ सेम है सर। तो मजे आए कॉमन गेम, तो थोड़ा हल्का सा जो ग्राउंड 60 फीट का जो होम लाइन होती है उसमें 90 फीट की होती है सर।
1: जी, जी।
0: बाकी दोनों गेम अच्छे हैं सर, दोनों सेम है, बस बॉल का फर्क है सर।
1: जी विशाल, और विशाल किसी भी गेम में प्लेयर के लिए नेशनल खेलना एक सपना होता है, और आपने दो गेम में नेशनल खेला है, तो नेशनल और इंटरनेशनल के बीच आपका क्या फर्क रह गया, आपने इंटरनेशनल से कैसे दूर रह गए?
0: सर एक्चुअली में सॉफ्टबॉल अभी इंडिया में डेवलप गेम है, डेवलप हो रहा है, इसका इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की रैंकिंग 58 पे है। कैंप लगा था उज्जैन में तो हम गए थे, पर उसमें जाना टीम कैंसिल हो गई, तो उसमें हम नहीं जा पाए।
1: तो अब विशाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दो दो गेम में नेशनल खेले हैं, उसके बाद भी आपने कोच बनने की राह क्यों चुनी?
0: सर मेरा सपना था कि मैं नई पीटीआई बन के किसी स्कूल में से करेंगे, बट पता चला कि नहीं यार, पर्टिकुलर अपने गेम का एक कोच और पीटीआई मतलब कि सभी उसको गेम कराने पड़ेंगे, असली फीलिंग तो अपने गेम को खिलाने में है बच्चों से, तो फिर मेरे को लगा हुआ कि नहीं अब तो बनना तो कोच ही है।
1: और इस समय

0: जूनियर सब जूनियर और सीनियर और लड़के और लड़कियां यानी सभी प्रकार के खिलाड़ियों को आप सॉफ्टबॉल के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो क्या रेस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है?
1: सर बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी 2025-26 के मैचों में बताते हैं आपको, तो हमारे लगभग 9 बॉयज और 3 लड़कियां
0: जी जी
1: अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेल के आई है, जो अपने वहाँ कर्नाटक में आयोजित हुई थी सर। और छोटे बच्चे भी, हमारे एक मयंक नागर है लड़का, तो वो नेशनल खेल के आया है। झालावाड में पहला एक गेम है जो गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे लेके आ रहा है, तो लोगों का क्रेज बढ़ रहा है। अभी जैसे गर्मियां, बड़ी छुट्टियां लगी, तो बच्चे आ रहे हैं।
0: झालावाड़ के लिए वास्तव में ये गौरव की बात है कि नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं और सॉफ्ट बॉल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं।
1: जी,
0: प्रैक्टिस कितनी जरूरी है और पूरा रूटीन प्रैक्टिस का किस प्रकार से होना चाहिए?
1: सर किसी भी गेम के लिए सर वो बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट, तो किसी भी गेम को खेलने से प्रैक्टिस बहुत जरूरी। तो हमारा रूटीन होता है, सुबह हम हमारे बच्चों को सुबह 6:30 बजे ग्राउंड बुला लेते हैं, तब ऑफ द स्कूल, तो उसमें हमारे बच्चे आते हैं, तो हम पहले उसको रनिंग, फिर एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, फिर नॉर्मल गेम स्किल्स जो उसको डेवलपमेंट करवाते हैं। उसके बाद जैसे गेम क्लोजिंग सेशन होता है, तो उनको थोड़ा वार्म अप रनिंग करा के, वार्म अप करवा के और कूल डाउन करके उनको छोड़ देते हैं। अभी एक पॉलिसी के तहत संडे साइकिलिंग जो चल रहा है, उसमें भी हमारे बच्चे पार्ट ले रहे हैं, अच्छा रिव्यू आ रहा है, राजस्थान में हमारा फर्स्ट पे चल रहे हैं इसमें
0: जी,
1: भी।
0: जी जी। और एक सॉफ्ट बॉल प्लेयर के लिए पिचिंग हिटिंग फील्डिंग बहुत महत्व रखती है, तो पिचिंग हिटिंग फील्डिंग में सुधार के लिए आप किस प्रकार की प्रैक्टिस खुद करते हैं और करवाते हैं अपने खिलाड़ियों को, और कौन कौन सी खास एक्सरसाइज?
1: इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अपने मसल्स।
0: जी जी,
1: मसल्स के लिए हम बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, साथ साथ रिस्ट रोटेशन करवाते हैं। तो हमारे पास अभी बच्चों के लिए जिम के इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हुए हैं, तो उससे हम बच्चों को थोड़ा एक्टिविटी करवाते हैं। साथ साथ अभी जो मैं एनाइस करने गया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा साइंस का भी उसमें यूज सिखाया था, तो उसको हम बच्चों पे अभी धीरे धीरे जनरेट कर रहे हैं, जैसे किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स का उसमें यूज करके बच्चों के कार्डियो सिस्टम्स की कुछ मसल्स का जो भी इशू है उसको दूर करके, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसी में वही है जो सर अभी आपने बताया मुझे कि पिचिंग, कैचिंग, बैटिंग, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पिचिंग अच्छी है तो आपका पिचर ही पूरा गेम जीता लेगा। तो पिचर की अलग से स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, इसके थाइस भी मजबूत होने चाहिए, पिचर यानी कि फुल ऑन फिट एंड स्पीड मैन प्लेयर।
0: जी जी जी, सॉफ्ट बॉल में अंडर आर्म फास्ट पिचिंग भारत में ऐसा माना जा रहा है कि अभी अभी नई नई आई है, तो कोच की हैसियत से आप प्लेयर्स को फास्ट पिचिंग की बुनियादी टेक्निक कैसे सिखाते हैं और कितने समय में वो इस प्रक्रिया से मास्टर बन सकते हैं?
1: एक्चुअली मैं खुद भी इसी गेम में पिचर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली में नहीं तो क्या, अंडर आर्म पिचिंग तो होती थी, बट वो क्या है, जंप से नहीं होती थी, खड़े खड़े पिचिंग करना होता था। तो भी इंडिया में से नई आई, जंप करके ऐसे पैर लेग, पैर पीछे आगे, प्लेट पे दोनों पैर रखने पड़ते, पीछे रखे तो जंप करते। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लैंड कैसे हो रहा है, सीधा सा आपकी जब बॉल डालने से पहले आपका लैंडिंग अगर सही है तो पिच अपने आप सही जाएगी। उनको बताते हैं, जैसे हमें सिखाया गया कि आपको जैसे पॉकेट, जैसे लोअर पेन थे उसके पॉकेट के पास से बॉल चुन तो अच्छा जाएगा, आपकी फिंगरिंग कैसी होती, ग्रिप्स वगैरह जो उसमें ग्रिप बनी सीम बनी होती है तो उस ग्रीस पकड़ के।
0: और विशाल, हार या जीत खेल का हिस्सा होता है, और इस अंतर को आप किस प्रकार से देखते हैं और हार के बाद प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं?
1: सर हार जीत एक बहुत बड़ा इमोशनल पार्ट्स हैं। ऐसे लोग तो जैसे देखा जाए इसमें दो तरीके, स्पोर्ट्स जो प्लेयर होता है उसको दो चीज़ें से जुड़ा हुआ होता है, एक तो खुशी के आंसू, एक गम के आंसू। जैसे हारते हैं तो मैं बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहता हूँ, कोई बात नहीं है, अच्छा अगले साल कुछ अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं हमें कमी रही होगी। मैं उनसे ये तक बोलता हूँ कि बच्चे से कि कहीं ना कहीं उनमें नहीं है, मेरे में कुछ हमने तुम्हें कम सिखाया, बाकी ठीक ये जैसा चल रहा है। और जीतने के बाद तो फिर आप को सबको पता है कैसा क्या होता है।
0: और खेल के दौरान फोकस बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाते हैं?
1: हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि बच्चों का जैसे ग्राउंड में बाहर से होटिंग वगैरह होती है, तो बच्चे का कैसे उसमें फोकस रहे, इसलिए मैं उनको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स अभी जो योगा के द्वारा मिलता है लोगों को, तो मैं लगभग इनको बेसिकली इसी चीज़ों से रिलेटेड करके जिसको जुड़वाता हूँ, तो मैं इसमें इनको मेडिटेशन करवाता हूँ। दूसरा, इनका फोकस ग्राउंड में रहे, तो इसलिए उनके जो उसके कमांड्स होते हैं गेम्स के रूल, जो अपन आउटिंग वगैरह करते हैं तो प्लेयर में से बोलते हैं कि थ्रो इन फर्स्ट बेस, तो उसका एक्टिवनेशन आता है। और गेम ऐसा गेम है, ये स्लो के साथ साथ फास्ट भी चलता है। क्रिकेट में क्या होता है कि बॉल पहुंचा नहीं पहुंचा, इसमें पर्टिकुलर जो 9 प्लेयर्स इन होते हैं, तो कभी भी किसी के पास बोलते एक्टिवनेशन होती है। और दूसरा, हम फोकस के लिए बहुत सारी ड्रिल्स करवाते हैं इनसे, बॉल्स जैसे बॉल पर्टिकुलर बॉल थ्रोइंग करवाते हैं, ऐसे 100-150 बॉल से कंटिन्यू हिटिंग करवाते हैं, तो इनका फोकस बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं।
0: अच्छा विशाल, आपने सॉफ्ट बॉल में कई बार नेशनल खेला है
1: जी,
0: तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके करियर का सबसे यादगार मैच कौन था और उससे आपको क्या सीख मिली, क्या अनुभव आपके रहे?
1: सर मेरे करियर के में सर सबसे पहला तो मेरे जो फर्स्ट में खेला, तो मैं हम फर्स्ट में विनर हुए, तो एक अलग से कि नहीं यार अच्छा लगा भी जीतने के बाद। बट एक हमारा मैच था 2017 में, हमने भरतपुर के खिलाफ खेला था स्टेट मैच, ओपन स्टेट, तो वो सबसे यादगार मैच था हमारे लिए। हमारा बहुत अच्छा मैच

0: था उस मेज में, लास्ट इनिंग में हम थोड़ा चार पांच से हम उसमें बिछड़ गए थे, हार गए थे, तो
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद मेरे को मोटिवेशन मिला। हमारे सभी दोनों कोच जो मेरे को सपोर्ट करते हैं आज, उन्होंने मेरे को समझाया, मैं समझाया, थोड़ा सा ऐसा इमोशनली हो गए थे उस टाइम,
1: जी
0: इतना
1: जी जी
0: खेलने, इतना टाइम था, लंबा मैच था, फिर हम हारे।
1: हाँ
0: तो उस दिन से मेरे को सीख मिली कि नहीं, अब अच्छा मेहनत करना चाहिए, साथ साथ आपको क्या क्या हमें कमियाँ रह गई तो उस पर मेहनत करी। तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला, और मेरे जीवन का सबसे यादगार मैच देखा जाए तो वही था, कि इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग,
1: जी जी
0: झालावाड़
1: जी
0: और भरतपुर के मैच को देखने के, इतनी पब्लिक थी, ऐसे बिल्कुल से तनातनी और अच्छा माहौल में अच्छा मैच चल रहा था, मजे आए।
1: जी जी जी हमारे देश में हम देखते हैं कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेल बहुत पॉपुलर हैं,
0: जी
1: और इन सब के बीच में आप सॉफ्ट बॉल को कहाँ पाते हैं, और हमारे देश में आप इसका क्या भविष्य देखते हैं?
0: सर, इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है एक्चुअली में, गेम बहुत अच्छा है। दूसरा आप देखो तो मैं तो मेरे जनरल मेरे गेम को मुझे अच्छा प्यार है, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, बट नहीं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट बॉल का बहुत अच्छा भविष्य, किस किस हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। साथ साथ मेंटली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रहा है, किसको कहाँ थ्रो करना है। अब ऐसा नहीं क्रिकेट एक रन लेके तो दौड़ लिया डक, ऐसा नहीं है 24 घंटे हर प्लेयर को एक्टिव, जब गेम खेलेगा तो उसको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रही है, किस बेस पे
1: जी
0: थ्रो
1: जी
0: करना है।
1: जी जी
0: थोड़ा
1: जी
0: नियम थोड़ा सा अलग हटके हैं, थोड़ा रूल्स तो वो भी हैं, और ठीक है अपना गेम है तो, और अच्छा खुशी मिलती है लोगों को हर दिन जो नो प्लेयर खेलते हैं, हर टाइम गेम के टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, कब किसके पास बॉल आ रही है, अच्छे से
1: जी
0: बॉल
1: जी
0: पहुंच
1: जी
0: पा रही है।
1: विशाल, आप सॉफ्टबॉल और बेसबॉल के नेशनल प्लेयर हैं, साथ ही कोच के रूप में सॉफ्टबॉल के प्लेयर भी इस वक्त तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप अपने खुद के खेल जीवन को कहां तक देखते हैं, आगे आपका क्या लक्ष्य है?
0: सर मेरा लक्ष्य तो अभी आने वाला मेरा यही भविष्य है कि मैं जितना हो सके मेरी तरफ से प्रयास करूं कि झालावाड़ से अच्छे प्लेयरों को निकाले हम, साथ साथ राजस्थान की भी टीमें अच्छी जाए, हम उसके लिए पूरे दिल और जान से मेहनत करेंगे। साथ साथ मेरे जो कोच हैं वो भी मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं, तो ये लोग हमसे जुड़े हुए तो मेरे साथ बहुत प्रयास करते हैं लोग, मेरे से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये लोगों ने मेरे को आज जो भी हूँ मैं इनकी बदौलत हूँ तो ये लोग चाहते हैं। तो साथ साथ ये भी आज जिस तरीके से भी इनके व्यक्तिगत जीवन से भी आज जुड़े हुए हैं इतने सफर के बाद, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ के मैं भी कुछ अच्छा करूँ, तो उसके साथ साथ हम गेम का वो डेवलप कर पाएंगे।
1: विशाल, आप अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब हों, सॉफ्टबॉल के कुछ ऐसे खिलाड़ी तैयार कर पाएं जो कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ाएं और झालावाड़ का मान बढ़ाएं। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सॉफ्टबॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत, यह आकाशवाणी झालावाड़ का अंशदान था। लीजिए अब सुनिए
3: कराटे खिलाड़ी एकांश अग्नानी से बातचीत।
4: इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के अंतर्गत इंडियन चैलेंजर्स कप जो कि कोलकाता में हुआ था, अंडर 12-35 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले एकांश अग्नानी समय कार्यक्रम के मेहमान हैं, और इन्होंने कराटे खेल में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। एकांश कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
5: थैंक यू।
4: एकांश सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि आपने इंटरनेशनल लेवल पर कराटे का मैच जीता है, किसी देश को हराया है, कैसा लगता है किसी विदेशी को अपनी धरती पर हराना?
5: बहुत अच्छा लगता है किसी विदेशी को अपनी धरती पर हराना, पर थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि वो भी कुछ सपने लेके आए थे यहाँ पे। पर जब आप इंडिया की तरफ से खेलते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, काश जीत जाऊं, और अगर वो हो जाता है तो इतनी खुशी प्राप्त होती है कि आप समझ नहीं पाओगे।
4: अच्छा एकांश, सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई परिवार में?
5: ज्यादा खुशी तो मेरे मम्मी पापा दोनों को हुई थी, और दादू तो बहुत ज्यादा ही खुश हो गए थे।
4: सबने मेहनत करी होगी आपको सपोर्ट करने में।
5: सबने मेहनत करी थी, अगर आज मम्मी पापा की मदद नहीं होती या सर की मदद नहीं होती तो आज मैं भी यहाँ पे नहीं होता।
4: अच्छा एकांश, कराटे खेल के बारे में मेरी जानकारी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा बताओ इसमें किस तरह से ये खेल खेला जाता है, क्या इसमें भी कोई कैटेगरी होती है?
5: कराटे गेम में बहुत सारी कैटेगरी होती है, पर एक खेल का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि खुद को अगर आप पे कभी भी हमला हो जाए तो आप खुद को कैसे बचाओगे, और अगर हमला हो जाए तो सामने वाले को भी कैसे मतलब अटैक करोगे। तो कराटे गेम में दोनों होते हैं, सेल्फ डिफेंस और अटैकिंग। कराटे गेम में बहुत सारी कैटेगरियां भी होती है, जैसे कि अंडर 35, अंडर 45, अंडर 55, और अंडर 12, अंडर 15, अंडर 18, अंडर 21।
4: आपने अंडर 12 कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। अच्छा तैयारी बहुत करनी होती है, इससे पहले भी कई तरह के टूर्नामेंट आपने जीते होंगे।
5: हाँ, इससे पहले भी मैंने बहुत टूर्नामेंट जीते हैं, मैं पिछले 2 साल से लगातार नेशनल चैंपियनशिप जीतते आ रहा हूँ। 2024 में मैंने नेशनल हेपकिडो चैंपियनशिप जीती थी, 2025 में मैंने ऑल इंडिया रांची नेशनल जीता था।
4: अच्छा कितने सारे मेडल आपके पास में हो चुके हैं?

0: मेरे पास फिलहाल अभी 4 सिल्वर मेडल है, 3 ब्रोंज है और 10 गोल्ड मेडल है।
1: इंडियन चैलेंजर्स कप जो कि पिछले दिनों कोलकाता में हुआ था, आपने जीता। कहाँ कहाँ के खिलाड़ियों के साथ में आपके मैच हुए?
0: पहला मैच तो मेरा वहाँ के कोलकाता के खिलाड़ी के साथ ही हुआ था और दूसरा मैच भी मेरा रांची के खिलाड़ी के साथ। तीसरे मैच के दौरान मेरे सामने एक नेपाल का प्लेयर आया था, उसको हराने में बहुत मुश्किल आई पर हरा जरूर दिया।
1: स्कोर की बात करें तो स्कोर क्या रहा?
0: सबसे पहले मैच में तो मेरा स्कोर था 3-0, दूसरे मैच में 2-4 था, मतलब 4 मेरे और 2 उसके, और तीसरे मैच में तो मैं 2-0 से जीता।
1: अच्छा, ये 2-0 और 4-2, ये किस तरह से मिलते हैं? क्या करना होता है कराटे के खिलाड़ी को उसको अंक मिल जाते हैं?
0: कराटे के खिलाड़ी को अगर अंक चाहिए तो उसको जो अपना मुक्का होता है उसको आप उसके पेट पे मारते हो तो आपको 1 अंक मिलता है, और अगर आप मुक्के को आप उसके सर पे मारते हो तो भी 1 अंक मिलता है। लेकिन अगर आप लात जो आपकी किक होती है अगर वो आप पीठ पे मारते हो तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, और अगर आप किक सर पे मारते हो सामने वाले के तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं।
1: कई बार चोट गलत जगह भी लग जाती है, आपकी किक चेहरे पर लग जाती है, क्या उसके अंक काट लिए जाते हैं?
0: कराटे में अंक बहुत कम काटे जाते हैं, लेकिन सामने वाले को चुई दिया जाता है, चुई मतलब फाउल होता है।
1: अच्छा, तो फाउल का मतलब ये हुआ कि मैच समाप्त हो गया या इसको अवसर मिलता है?
0: फाउल का मतलब ये होता है कि अगर मतलब किसी ने आपको बहुत जोर से मारा या तो फिर आपको गलत जगह मारा, और अगर आपके सामने वाले खिलाड़ी के कभी भी 4 फाउल हो जाते हैं, चौथे फाउल पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और आप जीत जाते हो।
1: अच्छा, और कभी ऐसा हुआ आपके साथ मैच खेलने के दौरान आपको या आपके विपक्ष में जिस खिलाड़ी ने खेला है उसको फाउल मिले हो, चेतावनी दी गई हो?
0: फाउल तो मेरे मैच में जब भी कोई खिलाड़ी आता है हर बार होते हैं, और ऐसा नहीं है कि मेरे विपक्ष वाली खिलाड़ी से ही होते हैं, कभी कभी मेरे से भी होते हैं, अनजाने में कभी कभी हो जाते हैं।
1: सॉरी वगैरह फिर बोलते हैं क्या?
0: सॉरी वगैरह नहीं बोलते हैं उसमें, आप मैच के बाद ही बोल सकते हो। अगर आप मैच के दौरान में सॉरी बोलते हो या कुछ भी शब्द का प्रयोग करते हो तो आपको फाउल मिला जाता है, आप सिर्फ उसके सामने हाथ मिला सकते हो।
1: अच्छा, एकांशित तैयारी किस तरह से आप करते हैं और रोजाना कितना अभ्यास इसके लिए करना होता है?
0: अगर आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आपको रोजाना कम से कम 2 से 3 घंटे की अभ्यास करना पड़ता है, और वो भी निश्चित है कि मतलब अगर आपके कोच आप पे बहुत ध्यान दे रहे हैं तभी ये सब मुमकिन हो पाता है।
1: अच्छा, एकांश, पहली बार जब आपने खेलना शुरू किया, खेल का चुनाव आपने किया होगा, कैसे आपने कराटे खेल का चुनाव किया कि मुझे कराटे में अच्छा परफॉर्म करना है और मेडल भी हासिल करने हैं?
0: जब मैं 5 साल का था तब मैं यूं ही जैसे सारे बच्चे टीवी देखते हैं ऐसे ही टीवी देख रहा था, तभी बहुत सारी मूवीज में बहुत बार हमला हो जाता है और न्यूज़ में भी दिखाया जाता है कि इन बच्चों पे हमला हो गया और उन बच्चों पे हमला हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई गेम ढूंढूं जिसमें सेल्फ डिफेंस भी होता है साथ में अटैकिंग भी होती है। ऐसे बहुत कम गेम होते हैं जिनमें सेल्फ डिफेंस और अटैकिंग दोनों होती है, कुछ गेम में बस सेल्फ डिफेंस होता है और कुछ गेम में बस अटैकिंग होती है, पर कराटे में ये दोनों है।
1: सेल्फ डिफेंस यानी कि अकेला खिलाड़ी भी मैच को जीत सकता है?
0: सेल्फ डिफेंस मतलब ये होता है कि अगर आप पे कोई कभी हमला करेगा तो आप उससे कैसे बचोगे, आप अपने हाथों को कैसे चलाओगे और खुद उससे बचोगे कैसे।
1: जैसे आपके साथ में किसी का मैच हुआ, क्या कराटे में ऐसे भी मैच होते हैं जिसमें स्वयं को परफॉर्म करना होता है?
0: कराटे में भी ऐसे मैच होते हैं जिसमें आपको अकेले को परफॉर्म करना होता है, जैसे कि कराटे में एक चीज होती है उसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में आपको किसी को ले जाना होता है और वो आप पे हमला करेगा और आपको मतलब उसके हाथों से बच के उसको गिरा के स्कोर लेना होता है। और एक और चीज होती है काता, जिसमें आपको आपके जो मूव्स होते हैं ना उसका एक सेट बना के आपको यूज करना होता है, वो दिखाना होता है, वो अकेले करते हो आप, और अगर रेफरी को अच्छा लगा तो आप जीत जाते हो।
1: एकांश, इस समय आपकी उम्र करीब 12 वर्ष के आसपास है और 5 साल से आपने आरंभ कर दिया था। कराटे में कई बार चोट लगने की संभावनाएं हो जाती है।
0: हाँ ये भी सही है क्योंकि कराटे में चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप कोई सा भी गेम खेलोगे जिसमें हाथ या पैर का प्रयोग होता है तो उसमें चोट तो पक्का ही लगेगी, भले सामने वाला चाहे कि नहीं चाहे।
1: कभी आपके साथ ऐसा हुआ?
0: मेरे साथ जब मैं रांची गया था तब मेरे सामने पहले ही एक मेरा विपक्ष

0: खिलाड़ी जो आया था वो लात उठा रहा था मेरे सर के लिए, लेकिन मैं थोड़ा पास चले गया था तो उसके घुटने की मेरे कान की तरफ लगी और मेरे को उस वक्त बहुत ज्यादा लगी है। मैं उस वक्त मैच नहीं खेल पाया पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
1: अच्छा, एकांश तैयारी किस तरह से आप करते हैं मैच से पहले? अपने विपक्षी खिलाड़ी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की जाती है?
0: जब आपका मैच होता है तब आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि उसकी शक्ल दिखती है खिलाड़ी, तो मतलब आपको पहचानना है कि कहाँ का है। उसका आपको नाम नहीं पता होता है, आपको उसकी कंट्री या स्टेट नहीं पता होती है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है।
1: अच्छा, फाइनल मैच से पहले क्या चल रहा था दिमाग में कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा मूव मेरा होना चाहिए? कोच ने, मम्मी पापा ने कुछ सलाह दी थी?
0: कोच ने और मम्मी पापा ने एक ही सलाह दी थी कि कभी भी डर के मत खेलना, जितना आज तक आपने सीखा है, जो भी सीखा है, सारा एक बार मैं आपको जोर लगाना था। और एक और सपना था कि एक बार मैं अपने इंडिया के फ्लैग को अपने कंधों पर रख के इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल लाऊं, और उस सपने ने ही मुझे मोटिवेट किया और मेरे मम्मी पापा और कोच के सपोर्ट के कारण आज मैं जीत पाया हूँ।
1: एकांश, इस समय आपके हाथ में गोल्ड मेडल आ चुका है कराटे का, आपने कप जीता है अंडर 12 कैटेगरी में, 35 केजी कैटेगरी में। लक्ष्य किस तरह से आपने तय किया हुआ है कि मुझे अब कराटे में ये करना है?
0: मेरा पहला जो लक्ष्य है अभी फिलहाल वो है कि मैं अपने देश को परदेश में ले जाऊं और परदेश वालों को उनकी जमीन पे हरा के अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊं।
1: आत्मविश्वास कितना बढ़ चुका है आपका?
0: अब मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि खुद पे भरोसा रख पाता हूँ और सामने वाले से बिना डरे खेल पाता हूँ।
1: जब आपको मेडल मिलते हैं, विद्यार्थी आपके कक्षा के किस तरह की बातें करते हैं?
0: जब मैं स्कूल जाता हूँ टूर्नामेंट के बाद, क्योंकि 8 या 10 दिन का टूर्नामेंट होता है, तो सारे लोग बहुत शौक में हो जाते हैं, क्योंकि मेरे जो दोस्त होते हैं उनको ही पता चलता है कि मतलब ये जीता है कि नहीं जीता है, तो बात पूरे स्कूल में फैलाई जाती है। मैं जैसे ही घुसता हूँ मेरी कक्षा में, वैसे ही, अरे तू गोल्ड मेडल जीत गया, अरे तू कहाँ पे जीता, अरे तू गोल्ड मेडल कैसे जीता, तेरे सामने कहाँ कहाँ के लोग आए थे और कैसे खेलते थे।
1: आस पड़ोस के कई लोगों के कमेंट्स हमें याद रह जाते हैं, किसी ने सबसे अच्छी बात बोली हो, एकांश बहुत अच्छा किया तूने, ऐसा किसी ने कहा?
0: मेरे आस पड़ोस के लोग हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आज तक कुछ भी बुरा नहीं बोला है, वो बस मोटिवेट करते हैं। मान लो अगर मेरा कोई दोस्त रहता है तो जैसे मैं उसको बुलाने जाता हूँ उसके घर पे खेलने के लिए, सबसे पहले उसकी मम्मी के पाँव छूता हूँ और उनको पता चलता है कि ये जीत चुका है, वो गले मिलती है और बोलती है कि बस अब और जीत के आ जा।
1: वाह, अच्छा, परिवार में जब हम रहते हैं तो खिलाड़ी को कई तरह की रेस्ट्रिक्शन का सामना करना होता है, कई चीजें करनी होती है, कई चीजें हम नहीं कर पाते, हमें विशेष तरह के खाने खाने पड़ते हैं खिलाड़ी को। एक खिलाड़ी के रूप में अपनी दिनचर्या किस तरह से आप रखते हैं?
0: अगर आप एक खिलाड़ी हो तो कम से कम अपने टूर्नामेंट से 30 दिन पहले आपको कोई भी बाहर का सामान नहीं खाना चाहिए। अब मान लो आपने अपना नाम वेट अंडर 35 डलवाया है, क्योंकि जैसे ही आप टूर्नामेंट खेलने जाते हो आपका सबसे पहले वेट चेक होता है, अगर आपका वेट अंडर 35 है तभी आप खेल सकते हो, अगर आप 40 किलो के हो तो आपको मना कर दिया जाता है और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
1: एकांश, यदि कोई दूसरा बालक खेलना चाहता हो कराटे और वो भी चाहता हो कि वह जिले को, राज्य को, देश को रिप्रेजेंट करें, सिलेक्शन किस तरह से होता है?
0: सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट खेलना होता है जो कि अपने बस जिले में होता है, और दूसरा आपको अपना स्टेट टूर्नामेंट खेलना होता है जिसमें सारे राजस्थान के लोग आते हैं, फिर तीसरा आपका नेशनल होता है जिसमें सारे इंडिया के लोग आते हैं, फिर आखिरी में सबसे अच्छा और सबसे मनचाहा इंटरनेशनल होता है जिसमें सारे देश विदेश के लोग आते हैं।
1: बहुत मेहनत तपस्या करने की आवश्यकता रहती है वहां तक पहुंचने के लिए।
0: हाँ, ये सच बात है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं 5 दिन पहले जाऊंगा और इंटरनेशनल जीत के आ जाऊंगा तो ये कभी संभव नहीं हो पाता है। आपको अगर कोई सा भी टूर्नामेंट हो, भले वो डिस्ट्रिक्ट हो भले वो इंटरनेशनल हो, आपको अकेडमी जाना बहुत जरूरी होता है, हर रोज प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी होता है।
1: एकांश, यदि श्रेय देना हो जीत का, किसे आप देना चाहेंगे?
0: सबसे ज्यादा तो मैं अपने मम्मी पापा और अपने कोच को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर उनका आज सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं भी हैप्पी नहीं होता। बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा ऐसे होते हैं कि बस पढ़ाई कर, बस पढ़ाई कर, पर कुछ लोगों के मम्मी पापा ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं पढ़ाई तो करनी ही है।

0: पर साथ में कुछ और भी करना है।
1: ऐसे मम्मी पापा जो केवल अपने बच्चों को पढ़ाई करने को कहते हैं, कोई सलाह देनी हो, कुछ बात कहनी हो?
0: ये सलाह देनी चाहिए मुझे उनको कि बच्चे पढ़ाई कर तो लेंगे, करनी तो है ही, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन क्यों ना बच्चों को जो सीखना चाहते हैं, जो उनकी चाह है, क्यों ना उनको वो सीखने दो। क्या पता वो पढ़ाई से ज्यादा उसमें कामयाब हो जाए, और क्या पता कुछ अच्छा कर पाए, क्या पता वो इंटरनेशनल जीत के आ जाए मेरी तरह।
1: एकांश, आपका भविष्य उज्जवल हो और जीवन में सफलता हासिल करें, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कराटे खिलाड़ी एकांश अग्नानी से बातचीत, यह आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का अंशदान था। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनिए हिमेश रेशमिया की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम है फिर हेरा फेरी।

अब सुनिए सोनू निगम और हेमा सरदेसाई, और साथ में है शंकर महादेवन। फिल्म का नाम है परदेस।

सुना अभी आपने गीत अलीशा चिन्नई और शंकर महादेवन जावेद अली की आवाज़ में। फिल्म का नाम बंटी और बबली। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम है आशिकी 2।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली के अंदर से। समाचार पहले अंग्रेज़ी में, माफ़ कीजिएगा, समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेज़ी में रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त